100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 15 जून 2026। प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना भक्ति संगीत की साधना। कार्यक्रम पुष्पांजलि।

नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च। मद्भक्ता यत्र गायन्त्री तत्र तिष्ठामि। प्रभु कहते हैं कि ना मैं तो वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में। मैं तो वहीं पे रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त प्रेमाकुल होकर मेरे नाम का गुणगान करते हैं। अर्थात भगवान को पाने के लिए किसी विशेष स्थान या कठिन योग साधना की आवश्यकता से ज्यादा सच्चे प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। आइए प्रभु को स्मरण कर प्रारंभ करते हैं भक्तिमय कार्यक्रम पुष्पांजलि। आकांक्षा आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर। पुष्पांजलि का प्रथम पुष्प अर्पित है श्री गणेश के चरणों में।

शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लच्छनेहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं होती, वे राम को भी स्वप्न में अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्ति का लक्षण है। अर्थात यदि आपको श्री राम का परम भक्त बनना है, तो आपके हृदय में भगवान शिव के लिए भी अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं, महादेव की भक्ति ही राम भक्ति का प्रवेश द्वार है।

हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुबिधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता। उनकी कथा भी अनंत है, सभी संत लोग उस कथा को बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। साथ ही प्रभु श्री रामचंद्र के सुंदर चरित्र का कोई भी बखान नहीं कर सकता, क्योंकि सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते।

प्रभु की शरणागति में वह शक्ति है जो आपके प्रारब्ध को भी बदलने का सामर्थ्य रखती है। विश्वास रखिए, जो आपके पास है वह उनकी कृपा है, और जो आपको नहीं मिला उसमें प्रभु की कोई न कोई बड़ी योजना जरूर होगी।

हमारे वेदों पुराणों में भी नारी को प्रथम स्थान दिया गया है, उसे शक्ति का रूप माना गया है, वह जननी भी है, सभी विश्व का संचार करने वाली भी है, वह माँ भी है और हम सभी का कल्याण करने वाली भी है। तभी तो कहते हैं यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफला क्रियाः। जिस घर में जिस देश में स्त्रियों का आदर होता है उस घर में देवता रमण करते हैं, निवास करते हैं, और जहां स्त्रियों का आदर नहीं होता वहां सभी कर्म सभी पुण्य निष्फल हो जाते हैं।

भजन रूपी पुष्प आप अर्पित कर रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि में। आकांक्षा आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर।

प्रेम प्रतीत ही कपि भजे सदा धरे उर ध्यान ते ही के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जो मनुष्य पूर्ण प्रेम और अटूट विश्वास के साथ वानर राज श्री हनुमान जी का भजन करते हैं

और सदा अपने हृदय में उनका ध्यान बनाए रखते हैं। उनके सभी कल्याणकारी और शुभ कार्यों को हनुमान जी स्वयं अपनी कृपा से पुकार देते हैं। अर्थात हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग कोई कठिन कर्मकांड नहीं, बल्कि मन में उनके प्रति सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास होना चाहिए। जिसके मन में ये है, उसके जीवन के सारे संकट प्रभु स्वयं हर लेते हैं।

यदि कर्म अच्छे हैं तो किस्मत दासी है, यदि नियत अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। इस जीवन में दुख तब बड़े लगते हैं जब आपकी सोच छोटी होने लग जाती है। आप दुख सुख की तुलना करने लग जाते हैं, आप कम ज्यादा की तुलना करने लग जाते हैं। यदि प्रभु श्री राम का यही भाव होता तो वो लंका विजय कभी ना कर पाते। इस नश्वर संसार में मात्र आपके कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए।

प्रभु की कृपा सदैव हम पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं यानी कि आकांक्षा चाहेगी अनुमति कार्यक्रम पुष्पांजलि से।

गुड मॉर्निंग कानपुर, वेलकम ऑन 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। आज मंडे है, साल 2026 का 166वां दिन यानी कि 15 जून 2026 और टाइम भी चेक कर लीजिए, सुबह के 7:01 हुए हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि कानपुर की ब्यूटीफुल मॉर्निंग हो चुकी है और स्टूडियो से मैं आरजे फरहान आप सभी के लिए शुरू करता हूं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर।

और गुड मॉर्निंग कानपुर से। अब आज का विचार, महात्मा गांधी ने कहा था, जो समाज अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता वो समाज अपनी जड़ों नैतिक मूल्यों को भी खो देता है। गांधी महात्मा का ये विचार आज के दिन और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम आज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे यानी कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मना रहे हैं। 102.2 FM रेनबो कानपुर पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग कानपुर, आरजे फरहान के साथ।

0: Beat your heart. Be on the floor of music. Music. Only on FM Rainbow Garden. Garden di Telkikarga. You are listening to FM 102.2 Rainbow Garden.
1: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

कर्तिस बेट पर कुछ चटपटी गपशप के साथ म्यूजिकल प्रोग्राम रसबहार सुबह 9 बजे। विविधा प्रोग्राम सुबह 9:45 पर, इसमें आज आप सुनेंगे चित्रपट से। सुबह 11 बजे हम नवा स्टूडियो में, तब हमारे साथ होंगी आरजे आरती, साथ होगी कुछ बातचीत, कुछ जानकारी और सॉन्ग्स भी। और हाँ, आप भी साथ रहिएगा उन बातों में अपने विचारों के साथ। म्यूजिक आर्ट प्रोग्राम दिन 3 बजे और 4 बजे फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर। तो ये थी हाइलाइट्स उन प्रोग्राम्स की जिन्हें आप सुनेंगे 102.2 FM रेनबो कानपुर से। नाउ एंजॉय द नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी बजरंगी भाईजान।

और अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर से ब्रॉडकास्ट होने वाले प्रोग्राम्स पर। सुरों की पुरानी महफिल सजेगी रेनबो कानपुर पर सुबह 8 बज

0: और अब कुछ ट्वीट्स लिए लेते हैं या सोशल मीडिया पे जो हमारे सेलिब्रिटी एक्टिव रहते हैं उनकी बात करते हैं। शाहरुख खान की फिल्म किंग की रिलीज डेट 24 दिसंबर तय कर दी गई है। शाहरुख ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस फिल्म का ट्रेलर पोस्ट करते हुए लिखा कि फिल्म किंग 24 दिसंबर 2026 को सिनेमा घरों में दहाड़ने के लिए तैयार है। इधर बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स हैंडल पर एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है, काम पे आराम नहीं यार, काम का आराम। और बताऊं आपको, बिग बी के पोस्ट कुछ ऐसे ही होते हैं, एक लाइन के या दो तीन शब्दों के। अब समझने वाले क्या समझते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। 102.2 FM रेनबो कानपुर से आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर।
1: Valentine's Day.

0: पहले प्यार का पहला खुमार, दिल को करता है बेकरार, आंखें ढूंढती हैं उसी को हर पल, कानों को रहता है उसकी आहट का इंतजार। आप सुन रहे हैं कानपुर का पहला पहला प्यार, FM रेनबो 102.2, कानपुर की दिल की धड़कन।
1: हाँ जी, आप ट्यून इन हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर से, और अब डालते हैं इतिहास के पन्नों पर आज का दिन कैसा रहा था। इतिहास के पन्नों पर जब हम आज 15 जून पर नज़र डालते हैं तो आज का दिन हमें बताता है कि 1908 में आज कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, यहाँ पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाकर यह साबित किया था कि आकाशीय बिजली भी एक प्रकार की बिजली ही है। फिल्मों की बात करें तो आज 15 जून को अपने ज़माने की मशहूर अदाकारा और गायिका सुरैया का जन्मदिन भी है। दिवसों की बात करें तो आज पवन दिवस, इंटरनेशनल फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। 102.2 FM रेनबो पर आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर अपने आरजे फरहान के साथ।

और अब आज के अखबारों की मुख्य खबर पर नज़र डाल लेते हैं। आज के हिंदुस्तान अखबार ने कानपुर का मेट्रो दायरा बढ़ाए जाने को मुख्य पृष्ठ पर छापा है। न्यूज़पेपर लिखता है कि कानपुर मेट्रो का दायरा बढ़ा, नोएडा के लिए उड़ान आज से। अखबार के मुताबिक कानपुर मेट्रो का विस्तार करके अधिकतर हिस्से कवर किए जाएंगे, तो कुल मिलाकर कानपुर के लिए एक अच्छी खबर है। और इधर दैनिक जागरण ने विमेन क्रिकेट में भारत की पाकिस्तान पर जीत को टॉप स्टोरी बनाया है। 102.2 FM रेनबो कानपुर से आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर, आरजे फरहान के साथ।

और अब स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ हाइलाइट्स और सबसे पहले स्पोर्ट के सबसे बड़े महाकुंभ वर्ल्ड कप फुटबॉल पर नज़र डालें तो कल जर्मनी ने कुराकाओ को 1-7 गोल से हरा दिया। यानी कि जर्मनी ने खेल नहीं खिलवा

कर दिया। और इधर महिला T20 वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए पाकिस्तान को 64 रनों से करारी शिकस्त दी। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए और इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 102.2 FM रेनबो कानपुर से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर, RJ फरहान के साथ।

उतर ना पाए। म्यूजिक ऐसा जो सीधे आपके दिल में समाए। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.2 कानपुर की दिल की धड़कन।

और कानपुर का मौसम अभी वैसा ही बना हुआ है। हाँ, मैं आपको अलर्ट ज़रूर कर सकता हूँ क्योंकि आज जब आप वर्क पर बाहर निकलें तो थोड़ी तैयारी के साथ रहें। तो जनाब, मौसम की जानकारी जो कि हमें प्राप्त हुई है सीएसए कानपुर से, इनके अकॉर्डिंग अभी बादल छाए रह सकते हैं लेकिन बारिश की कोई भी उम्मीद नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हीट वेव अभी चलती रहेगी, यानी कि आप अब जब भी घर से बाहर निकलें तो इसका ध्यान रखें कि लू से आपको बचना है। 102.2 FM रेनबो कानपुर से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर।

तो ये था आज का गुड मॉर्निंग कानपुर, जिसे आपने एंजॉय किया 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से आरजे फरहान के साथ। और अब दीजिए इजाजत, लेकिन हम अभी फिर मिलेंगे ठीक 8:30 पर सुरों की पुरानी महफिल के साथ। नाउ एंजॉय दिस सॉन्ग कंटिन्यू।

0: घर खर्च के पैसे 2000 जी,
1: सब्जियों के 2000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
5: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड

0: ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
0: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
4: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी

0: नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही

बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है, आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा, विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है, एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच। हिंदू

0: कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच। हिंदुस्तान लिखता है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। यूएस एंड ईरान रीच अग्रीमेंट टू एंड मिलिट्री ऑपरेशंस, ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड लिफ्ट यूएस नेवल ब्लॉकेड ऑफ इरानियन पोर्ट्स। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
3: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Oil prices fell on the news. Brent crude futures fell 4% in early trading today, while U.S. West Texas Intermediate slid more than 4.6%. Stock markets in Asia jumped. Kaumudi Parekh for Akashwani News, Delhi.
2: Leaders across the world have welcomed the peace deal announced between the United States and Iran, describing it as a major diplomatic breakthrough that could help restore stability in West Asia. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said that this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said that he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The visit by Mr. Modi follows President Draupadi Murmu's state visit to Slovakia in April last year and Slovak President Peter Pellegrini's visit to India for the AI

दूर गगन की छांव में, ये सॉन्ग आप सुने जा रहे हैं। और ख़ास बात इस सॉन्ग की ये है कि इसमें गीत संगीत और आवाज़ सब किशोर कुमार का है।

लीजिए अब सुनिए जिंदगी की फिलॉसफी को डिफाइन करता है ये सॉन्ग। आवाज मुकेश की, फिल्म का नाम अनाड़ी, लिरिक है शैलेंद्र की और कंपोज किया है शंकर जय किशन ने।

किशोरदा की आवाज़ में आप सुन रहे थे बुढ़ा मिल गया फिल्म का ये गीत। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और आर डी बर्मन ने इसको सजाया था अपनी धुनों से। आगे बढ़ते हैं सुरों की पुरानी महफिल में और अब हम आपको सुनवाते हैं हेमलता की आवाज़ में अखियों के झरोके फिल्म से ये टाइटल ट्रैक। और इस गीत को लिखा है रवींद्र जैन ने और साथ ही इसको कंपोज भी किया है रवींद्र जैन ने।

याराना फिल्म से ये गीत, आवाज किशोर कुमार की, अनजान के बोल और संगीत राजेश रोशन का।

0: पहले प्यार का पहला खुमार, दिल को करता है बेकरार, आंखें ढूंढती हैं उसी को हर पल, कानों को रहता है उसकी आहट का इंतजार। आप सुन रहे हैं कानपुर का पहला पहला प्यार, FM रेनबो 102.2, कानपुर की दिल की धड़कन।
1: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होंठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
2: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
1: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद।

0: FM Rainbow, the musical heartbeat.
1: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com।
0: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।
2: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू।
3: और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
4: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
3: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
4: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
3: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
5: Bless your heart. Beat on the floor of music. Only on 102.2. FM Rainbow Garden. Kanpur ki dil ki dhadkan.

वेलकम अगेन ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर। और इस स्कॉचिंग हीट के बारे में बाहर जब भी आना होगी तब आएंगी, लेकिन आरजे फरहान हाजिर है लेकर प्रोग्राम रस बहार। आज फर्स्ट वर्किंग डे है, नेचुरल है कि थोड़ा टेंस तो होगा ही, पर फिर भी हर काम को एंजॉय करना अगर हैबिट में है तो बस फिर आप जिंदगी से आंख मिलाकर कुछ यूं कह सकते हैं,

अच्छा कानपुर किसी को भूलना आसान होता तो कितना अच्छा होता, जैसे लाइट का स्विच ऑफ तो लाइट ऑफ, ऐसा ही यादों के साथ होता काश, बस स्विच ऑफ करते और यादें खत्म। पर यार ऐसा होता नहीं, बस याद आती है तो आती है, अभी नहीं तो कुछ टाइम के बाद ही सही, पर आती ज़रूर है। 102.2 FM रेनबो कानपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रस बहार आरजे फरहान के साथ।

लव मोहब्बत प्रीति प्यार जिंदगी के ये फलसफे अच्छे तो बहुत महसूस होते हैं पर होते बहुत कठिन हैं। ये वो रास्ते हैं जहां पर संभल कर चलने के बावजूद लड़खड़ाने का डर बना रहता है। लेकिन साहब इतना भी ना डरो कि चलना ही बंद कर दो। चलना बहुत ज़रूरी है जिंदगी के लिए और मोहब्बत भी बहुत ज़रूरी है जीने के लिए।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।

0: जब खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में है।
1: ओ नो कानपुर, आप लोग तो सीरियस हो गए। अरे सब सही है यार, जिंदगी के अलग अलग टास्क, अलग अलग एग्जाम होते हैं, इनको क्वालिफाई किए बिना आप आगे बढ़ भी तो नहीं सकते। सो डोंट वरी अबाउट डिफिकल्टीज एंड नाउ एंजॉय द नेक्स्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।

और मेट्रो चालू होने के दो फायदे हमें दिखते हैं कानपुर। अब आप ये सोचेंगे कि ये दो कौन से हैं। पहला ये कि आप कानपुर मेट्रो पर सफ़र करके कूल बिना जाम में फंसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, और अगर आप मेट्रो पर नहीं हैं, बाइक से हैं, तो बस फिर आप उस मेट्रो ब्रिज के नीचे छाए में बहुत दूर तक चल सकते हैं। और यकीन मानिए, सारे समझदार यही कर रहे हैं। FM रेनबो कानपुर से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रस बहार, RJ फरहान के साथ।

और धीरे धीरे स्कूल खुलने का काउंट डाउन शुरू हो गया। यूपी के कुछ स्कूल कल से खुल रहे हैं और अदर बोर्ड के स्कूल शायद कुछ और दिनों के बाद। कुल मिला के मम्मी पापा के भी बिजी रहने का वक्त शुरू हो गया है। वही सुबह, वही बैग, वही बच्चे की उंगली और वही रास्ते, कुछ भी तो नहीं बदला। अगर कुछ बदला तो वो है बच्चे का क्लास। 102.2 FM रेनबो कानपुर से आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम रस बहार। मैं हूं आरजे फरहान।

और सब कुछ वक्त के हिसाब से चलता है, शायद इसीलिए स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है प्रोग्राम रसबहार को समाप्त करने का। पर अभी इतना समय है कि मैं एक लास्ट सॉन्ग आप तक जरूर पहुंचा सकूं, तो आप एंजॉय कीजिए ये लास्ट ट्रैक और हम मिलते हैं इस सॉन्ग के उस पार जहां आपके लिए तैयार रहेंगे लेकर प्रोग्राम चित्रपट से।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब रेनबो कानपुर से शुरू हो रहा है प्रोग्राम विविधा, और विविधा में आज बारी है चित्रपट से। आइए सुनाते हैं आपको ये पहला सॉन्ग।

लव स्टोरी फिल्म का ये सॉन्ग था अमित कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में, आनंद बख्शी का गीत और आर डी बर्मन का संगीत। प्रोग्राम चित्रपट से में अब समय है आज के लास्ट सॉन्ग का। आवाज़ लता मंगेशकर की, गीत रचना सावन कुमार की और कंपोज किया है उषा खन्ना ने।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 के 74 से बढ़कर अब 165 हो गई है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। इस खबर के बाद तेल के दाम नीचे गए। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित कर लेने की सलाह दी है। योग की गंगा गंगोत्री से निकलकर प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों से गुजरते हुए गंगा सागर तक जाएगी। 13 जून को गंगोत्री से निकली योग की धारा 17 जून को वाराणसी पहुंचेगी। केंद्र सरकार के गंगोत्री से गंगा सागर अभियान के अंतर्गत काशी में योग का कार्यक्रम गंगा के तट पर रविदास घाट पर आयोजित किया जाएगा। देश के विभिन्न प्रमुख शहरों से होते हुए योग की धारा 20 जून को गंगा सागर पहुंचेगी। क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा काशी के प्रसिद्ध अर्धचंद्राकार घाटों की श्रृंखला पर भी 15 से 21 जून तक अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। योग सप्ताह का औपचारिक शुभारंभ आज नमो घाट से हुआ। आज विश्व वायु दिवस मनाया जा रहा है। पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी भूमिका रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है। भारत आज गोवा में विश्व वायु दिवस 2026 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस वर्ष की थीम है पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से गतिशीलता की ओर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप एफएम रेनबो।
4: हमारी जनगणना हमारा विकास।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
7: भाई अब मैच का क्या होगा,
6: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
8: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
9: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
8: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
10: 4-4-4 मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
11: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

दस बज के 5 मिनट हो रहे हैं और आपके साथ वापस से जुड़ चुकी हूँ मैं आयुषी, लेकर आ गई हूँ आपके मन पसंद दिल की धड़कन वाला प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग। सुनेंगे अब आप आयुषी के साथ। और देखिए ना, आपके साथ बात करते करते किस तरह से हमारा वक्त बीत जाता है मैं मालूम नहीं चलता, और नए वक्त के साथ हम नया प्रोग्राम ले आते हैं और सुपर हिट सॉन्ग्स पे आपके लिए बिना देरी के बहुत ही प्यारा सा गाना यादों के पिटारों में से जो यादें ताजा कर देगा।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ।
4: दस बज के 17 मिनट हो रहे हैं और सुपर हिट सॉन्ग सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ। और ये जो सफर है ना पुराने गानों का, उन गानों का जो हमारे दिल में अभी भी बसे हैं, और वो फिल्में, उसके गाने, उसकी वो जितने भी स्टोरी, एक्टर्स, कपड़े, स्टाइल, कभी पुराना नहीं होता। एवरग्रीन गानों का यही सिलसिला।

0: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक।
1: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
5: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
4: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

10:29 यानी 10:30 बजने में बस कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं और आप सुन रहे हैं सुपर हिट सॉन्ग्स आयुषी के साथ 100.7 FM पर। और अगर आप अपने अपने ऑफिसेस के लिए, अपने कार्यालयों के लिए, अपने दिन के कामों के लिए घर से निकल चुके हैं या रास्ते में हैं और इन्जॉय कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम, तो आपके लिए बस कहूँगी हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी, यातायात नियमों का पालन करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और आज का दिन आपका ब्यूटिफुल सा गुजरे एकदम इन ब्यूटिफुल सॉन्ग्स की तरह।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सुपर हिट सॉन्ग सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ और 100.7 FM पर ये पुराने गानों का सिलसिला जारी है जो कभी बस रेडियो पे ही सुनने को मिल जाते थे ये गाने, या फिर हम जाकर इनके लिए वो कैसेट्स खरीदा करते थे, पैसे बचा बचा कर सीडी खरीदा करते थे। और ये गाने आज भी उतने ही हमारे दिलों में जिंदा हैं जितने आज भी उनका चार्म, उनका जादू हम पर चढ़ा रहता है। वैसे ही ये प्यारे प्यारे पुराने यादों के पिटारे से गाने

10:55 का समय और सुपर हिट सॉन्ग्स का सिलसिला जो ये चल रहा था और हम इस सफर में कहीं खो से गए थे, पर अब स्टूडियो के टिक टिक करती क्लॉक को देखकर लग रहा है कि विदा लेने का समय आ गया है इस कार्यक्रम से। लेकिन ये कार्यक्रम खत्म होगा तभी तो हम आपके लिए अगला लेकर आएंगे एक और इंटरेस्टिंग कार्यक्रम जिसका नाम है संदेश आपके गीत हमारे, जहाँ पे आप अपने प्यारे प्यारे संदेश देते हैं और हम आपसे बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने सुनते हैं। फिलहाल सुपर हिट सॉन्ग से आयुषी को दीजिए इजाजत, ऐसे ही नहीं छोड़कर जाऊंगी, सफर ऐसे कहां पूरा होगा। एक और प्यारा सा गाना आपके लिए, गाने के पार और न्यूज ब्रेक के पार हम मिलेंगे आपसे संदेश आपके गीत हमारे लेकर। एंजॉय द ट्रैक 100.7 FM पर धड़कन लखनऊ की।

0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार माय डियर लिसनर्स, मैं हूँ आरजे आरती आपके साथ और हमनवा प्रोग्राम में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से बहुत स्वागत है और आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज का हमनवा प्रोग्राम सुनकर मेरे ख्याल से और भी अच्छे हो जाने वाले हैं, क्योंकि आज हैं हमारे साथ हमारे हमनवा आरजे फरहान। फरहान गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: गुड मॉर्निंग आरती, तुम कैसी हो?
0: बिल्कुल, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और लिसनर्स भी जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तुम्हारी वॉइस जानना चाहते हैं कि कैसे हैं आप?
1: आज लिसनर से हम मॉर्निंग से ही बात कर रहे हैं और तुम अगर यहाँ पर आई हो तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो यही जानेंगे कि कैसा रहा बाहर का मौसम।
0: बाहर का मौसम तो बहुत अच्छा है, खुशनुमा है, हालांकि अब धूप धीरे धीरे अपनी उड़ान भर रही है, यानी तेज होती जा रही है। और मौसम की अगर बात करें तो हवा में नमी है और ये जो हवा है ना, ये कहीं ना कहीं एक खूबसूरत सा एहसास भी दिला रही है मौसम का। और मौसम भी देखो ना, बदलता जा रहा है, कभी लगता है कि बादल आ गए, कभी लगता है वर्षा होने लगी, और लगता क्या है, आ ही जाते हैं अचानक से, है ना?
1: बिल्कुल। और अब धीरे धीरे जो है जो मौसम है वो बरसात की तरफ जाएगा ही, मानसून का इंतजार है, जब भी मानसून आएगा। हालांकि आज के हम अपने इस प्रोग्राम में बात भी करेंगे मानसून के ऊपर, लेकिन मानसून का इंतजार सबको बेसब्री से रहता है, क्योंकि जब धरती के ऊपर इतनी गर्मी पड़ती है तब बारिश ही एक सहारा होता है आरती।
0: बिल्कुल फरहान, बातें तो होंगी काम की और साथ ही बातों का अंदाज भी होने वाला है दिल से, जो पहुंचेगा हमारे लिसनर्स तक अपनी बातों के जरिए। और इस प्रोग्राम में मिलता है ना सभी को जानकारियों का खजाना,
1: बिल्कुल
0: है?
1: जानकारियों का खजाना होता है और जो मुख्तलिफ बातें हम लोग करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, वो दरअसल उसका मकसद भी होता है कि हम लोगों तक जानकारी भी पहुंचा सकें, बात भी कर सकें और अपने जो लिसनर हैं उनके विचार भी जान सकें।
0: बिल्कुल, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, ये बता देते हैं अपने लिसनर्स को।
1: तो आरती, आज हम सबसे पहले बात करेंगे, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे आज मनाया जा रहा है, 15 जून को मनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आज बात की शुरुआत हम वहीं से करेंगे। इसके अलावा हम नशा मुक्त भारत अभियान पर बात करेंगे, जो बोया वही पाया, इस पर भी बात करनी है। और एक ख़ास बात आती और भी है, और वो ये है कि हम लोग जो फिल्में देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज ज़रूर छुपा होता है, तो आज हमने एक अच्छा सा टॉपिक लिया है जिस पर है, जो खेलों पर बनी हुई फिल्में हैं तो उनका मैसेज क्या होता है।
0: क्या बात है फरहान, यानी बातचीत होने वाली है बेहद इंटरेस्टिंग।
1: बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है
0: और साथ ही साथ रेसिपी तो होगी ही,
1: बिल्कुल होगी
0: तो
1: रेसिपी।
0: फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम।
1: हाँ, एक और हम अपने जो लिसनर हैं, जो श्रोता हैं, उनको हम बता भी चुके हैं कि मानसून पर भी बात जरूर करेंगे।
0: हाँ, तो जो भी लिसनर्स हमसे जुड़े हैं, हमें मेल करना चाहते हैं, तो वो हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है, जो सभी जानते हैं वैसे,
1: AIR Consol Media,
0: हाँ,
1: @gmail.com पर आप हमारे मेल करिए और क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप हमको जरूर बताइए।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ झूमते रहिए सॉन्ग के साथ।

0: आरती, क्या बात है, तो कि तुमने आज जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी से सॉन्ग से करी, वेरी वेल। और तुमको ये बताएं कि आज कौन सी तारीख है, क्या तुमको मालूम है?
1: फरहान, आज की तारीख तो सभी को पता है, आज है 15 जून।
0: एक्चुअली तुम सोच रही होगी कि आज ये सवाल हमने ऐसा क्यों कर दिया, तारीख तो सभी को पता होता
1: है। बिल्कुल फरहान, मैं ये सोच रही थी कि आप तो मॉर्निंग से हैं यहाँ पर और आप इस टाइम पे मेरे से तारीख पूछ रहे हैं, आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई?
0: नहीं, तारीख पूछने का कुछ दूसरा अर्थ था, क्योंकि हम तुमको ये भी बताना चाहते थे कि जो आज 15 जून है ना, तो हर वर्ष 15 जून को विश्व भर में विश्व जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, तो इनके लिए एक डे मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ठीक है ना। इस दिवस की शुरुआत जो हुई थी वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा समाज में बुजुर्गों के प्रति जो बढ़ रहे दुर्व्यवहार हैं और उपेक्षा है और शोषण है, इसके प्रति जो जागरूकता है उसको फैलाने के उद्देश्य की गई थी। और आरती, ये दिन हमें याद दिलाता है कि जिन बुजुर्गों ने अपना पूरा जीवन, पूरी जिंदगी समाज और देश के निर्माण में लगाया, उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मान, सुरक्षा और अपनापन मिलना ही चाहिए।
1: बिल्कुल फरहान, आज की तेज रफ्तार जीवन शैली में कई बार बुजुर्ग स्वयं को अकेला और उपेक्षित महसूस करते हैं और कुछ मामलों में ना उन्हें मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और शारीरिक शोषण का भी सामना करना पड़ता है। उनकी बातों को अनसुना करना, सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर वो अपनी बात कह रहे हैं या कुछ बता रहे हैं तो उसे अनसुना करना, उनकी भावनाओं की उपेक्षा करना या उन्हें परिवार पर समझना भी एक प्रकार का ये दुर्व्यवहार ही होता है।
0: बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल सही कह रहे हो। और बुजुर्ग जो है आरती, केवल उम्र में बड़े नहीं होते हैं। बुजुर्ग, जब कोई बुजुर्ग कहता है तो इसके मतलब ही ये होता है कि वो हमसे बड़े हैं, ठीक है ना, और वो अनुभव और जीवन जो जीते हैं उसके, उनके पास उसके ज्ञान का भंडार होता है, उनके पास जीवन के संघर्षों और जो सफलता है उनके तमाम जो सीख होती हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, वो उनके पास होता है, और ऐसी जो बातें होती हैं वो नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बन सकती हैं। इसलिए उनका सम्मान मिलना न केवल संस्कार है बल्कि एक सभ्य समाज की पहचान भी है। और तुमको बताएं कि हमें एक हमारे लिसनर है, उन्होंने ये संदेश भेजा है, हम चाहते हैं कि तुम हमारे जो श्रोता हैं उनको ये जरा सुनवाओ।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धि मिश्रा है और आज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के मौके पर मैं आप सबसे कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ। हमारे बुजुर्ग हमारे परिवार की नींव है, उन्होंने अपना पूरा जीवन हमें प्यार, मार्गदर्शन और संस्कार देने में लगाया है, इसलिए उनके साथ सम्मान, स्नेह और धैर्य से पेश आना हमारी ही जिम्मेदारी है। आइए आज हम एक संकल्प लें कि अपने बुजुर्गों को कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे और उनके अधिकारों का सदा सम्मान करेंगे। एक छोटा सा प्यार और अपनापन उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकता है। धन्यवाद।
1: कितनी अच्छी बात कही फरहान सिद्धि ने, और ये बच्ची है छोटी, और जब बच्चे अपने बुजुर्गों के सम्मान की बात करते हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो ये बड़ी बात होती है, क्योंकि परिवार का जो माहौल होता है वो बच्चों से ही स्टार्ट होता है, और ये भावनाएं जो होती हैं ये हमारे संस्कारों से आती हैं जब बच्चे इस तरह की बात करते हैं। और फरहान, आज का दिवस हमें यही संदेश देता है कि हम अपने घर और समाज में ऐसा वातावरण बनाएं जहां बुजुर्ग खुद को सुरक्षित, सम्मानित और प्रिय महसूस करें, और उनके साथ समय बिताना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, उन्हें निर्णयों में हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं, उनसे बता के करना, जब हम इस तरह का काम करते हैं तो ये उनके प्रति सच्चे सम्मान का प्रतीक होता है।
0: बिल्कुल आरती, बिल्कुल सही बात कही, और ये हमारे संस्कार होना चाहिए और ऐसे ही संस्कार होना चाहिए जिसमें हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर सकें। एक संदेश हमें और मिला है, हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं कि निकिता हमारे साथ हैं, वो क्या कहना चाहती हैं।
3: नमस्ते, मैं कानपुर से निक्की बोल रही हूँ। हमारे साथ हमारे बुजुर्ग फादर इन लॉ, मदर इन लॉ रहते हैं और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में, लेकिन कभी कभी हमारी किसी बात से वो दुखी हो जाते हैं, उन्हें लगता है

है कि हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो इस तरह करें तो हमें भी नाराज होने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही इस स्थिति में प्यार से हमें उन्हें हैंडल करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे और बूढ़े दोनों एक समान होते हैं, और हमेशा अपने बुजुर्गों को मान सम्मान दें, क्योंकि जब हम छोटे थे तो उंगली पकड़ के चलना, हमें इस मुकाम तक पहुंचाना, ये उनका बहुत बड़ा योगदान है और जिसको कभी किसी भी सहायता या पैसे से चुकाया नहीं जा सकती। और एक बात याद रखें कि हम उनके साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही जब हम इस उम्र में आएंगे तो हमारे साथ भी होगा, क्योंकि ये तो नेचर का नियम है कि हम जैसा अपने बड़ों को देंगे, जैसा व्यवहार उनके साथ करेंगे

0: भी बुजुर्ग हैं उनको खुश रखें और नाराज ना होने दें।
1: बहुत अच्छा विचार था आरती इनका। तो आरती आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि अपने बुजुर्गों को केवल देखभाल ही नहीं करेंगे बल्कि वो प्यार और सम्मान भी देंगे जिसके वो वास्तविक हकदार हैं, क्योंकि किसी भी समाज की महानता इस बात से आंकी जाती है कि वहाँ जो अपने बुजुर्ग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है।
2: बिल्कुल, बुजुर्ग हमारे जीवन की वो छाया है जिनके अनुभव की ठंडक में परिवार और समाज फलता फूलता है। उनका सम्मान करें क्योंकि आज वे हैं और कल हम होंगे।
1: बिल्कुल, एक बढ़िया सा सॉन्ग हम सुनवाते हैं अपने लिसनर्स को।

0: और भाई फरहान बहुत मीठा मीठा प्यारा प्यारा गीत था, और तुमने इशारा भी किया कि बस इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का जो नया टॉपिक है, यानी नशा मुक्त भारत अभियान, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कहते हैं ना, किसी भी देश का जो भविष्य है वो उसके युवाओं के हाथों में होता है, और यदि युवा स्वस्थ, जागरूक और सकारात्मक सोच वाले हों तो राष्ट्र प्रगति के नए आयाम स्थापित करता है।
1: बिल्कुल आरती, जब बात हो रही है कि एक ऐसे अभियान की जो न केवल युवाओं को बल्कि पूरे समाज के उज्जवल भविष्य से जुड़ा हो, तो उसको हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे कि वो अभियान नशा मुक्त भारत अभियान हो सकता है।
0: फरहान, नशा एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति की सेहत, परिवार और समाज तीनों को प्रभावित करती है। यही कारण है कि देश भर में लोगों को जागरूक करने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है।
1: और इसकी सबसे अच्छी बात ये है आरती कि इसमें युवाओं, शिक्षण संस्थाओं, स्वयंसेवी जो संगठन हैं और आम नागरिकों की जो सक्रिय भागीदारी है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और उनको इस कार्यक्रम की मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है।
0: बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना, जब सभी लोग इस जो अभियान चलाया जा रहा है, यानी जन जन की जब भागीदारी होगी तभी ये जो अभियान है ये सफल होगा। और अक्सर लोग ये सोचते हैं ना कि नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या है, एक व्यक्ति की प्रॉब्लम है।

0: है, लेकिन इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। स्वास्थ्य बिगड़ता है, आर्थिक समस्याएं भी बढ़ती हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे रिलेशन होते हैं, रिश्ते होते हैं, उनमें भी दूरियां आने लगती हैं।
1: ऐसा ही कहा आपने, इसीलिए जरूरी है कि हम समय रहते जागरूक हो जाएं। अगर कोई नशे की लत से जूझ रहा है तो उसे सहयोग करें और सही परामर्श की आवश्यकता अगर उसको है तो वो दें और किसी की उपेक्षा ना करें। और सच बात तो ये है कि इसको एक चुनौती की तरह लें, इसका सामना करें और इसको जो है इनका जो सामाजिक बहिष्कार है वो बिल्कुल भी ना करें।
0: बिल्कुल, और इसी वजह से जैसा कि तुमने कहा अभी फरहान की इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए सभी को, तो इसी वजह से भारत सरकार ने सामाजिक न्याय एवं

0: नशे से दूर ले जा सकेंगे।
1: बिल्कुल, यानी उनका जो कनेक्शन है उसको हटाने के लिए नशे से, ये सारी जो गतिविधियां हैं जब हम उनको अपनाएंगे और उनको भी जोड़ेंगे तो नशे से दूरी बनेगी, स्वस्थ जीवन होगा, स्वस्थ जीवन वो भी अपनाएंगे और इससे हम ये कह सकते हैं कि स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक बनाएं।
0: जागरूकता आरती कुल मिलाकर बहुत जरूरी है ना, अगर

0: बिल्कुल, जो भी होता है वो सब खेल है। और देखो ना फरहान, इस टॉपिक पर हमारे पास जो मेल्स हैं वो भी आ गई हैं। स्नेहा सोनी रूपपुर चंदेला से लिख रही हैं, फरहान भैया और आरती मैम को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। आपको भी हमारा नमस्कार। और इन्होंने साथ ही लिखा है, आज का हमनवा सुनकर मुझे दो लाइनें याद आ गईं। शक्ल से सुंदर होना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वक्त के साथ चेहरे की चमक बदल जाती है, पर इंसान का कैरेक्टर ही उसकी असली पहचान होती है। और ये उन्होंने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं। साथ ही लिखा है शैलेश कुमार ने, मैं अक्सर देखती हूँ आज की जनरेशन की जो नई युवा पीढ़ी है, जो हमारे घर के बुजुर्ग इंसान होते हैं, उनके पास बैठना पसंद नहीं करते। मैं तो यही सबसे बोलती हूँ, अपने बुजुर्गों की बात मानना, उनका सम्मान करना और उनके मार्गदर्शन पर चलना, आने वाले समय में बहुत कुछ सीख जो है वो इन्होंने लिखा है कि हमें मिलती है। और मैं अपनी दादी का आदर सम्मान करती हूँ। कितनी अच्छी बात फरहान उन्होंने लिखी है ना। और इसके साथ एक और मेल आई है फरहान,
1: और ये भेजी है गीता सेठ ने, और परिवार के वृद्धजनों को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता की अत्यंत आवश्यकता होती है, ताकि वे अकेलेपन या अवसाद की स्थिति में ना आ पाए। वृद्ध लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। बुजुर्ग हमारे धरोहर हैं और उनका सम्मान, उनका ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य है। कुछ घरों में बुजुर्गों के साथ बहुत अन्याय होता है। एक दिन हम सबका भी बूढ़ा होना है, उनका ये मतलब कहने का है कि एक दिन हम सबको भी बूढ़ा होना है, तो जैसा करोगे वैसा पाओगे।
0: बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना है। लेकिन जैसा कि फरहान हम लोग बात कर रहे थे कि बुजुर्गों का सम्मान करना है, तभी हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़ती है। और देखो ना, एक मैजिक और होने लगा है, और वो किया है हमारी भारत की विमेंस T20 वर्ल्ड कप में विमेंस की टीम ने।
1: और बड़ा अच्छा, कल की बात कर रहे हो जो, हाँ, बहुत शानदार मैच था, एक तरफा
0: बिल्कुल। और इस

0: गुजर गई, इसका एक सॉन्ग है और हम चाहते हैं कि इस हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने जो लिसनर हैं उनको जो है हम ये सॉन्ग सुनवा दें। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जरूर कह सकते हो।
1: बिल्कुल कहना चाहेंगे फरहान। और इसी तरह की जब हम फिल्मों की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही एक फिल्म दंगल भी है। दंगल में भी बेटियों को अवसर की प्रेरणा मिलती है। ये फिल्म केवल कुश्ती की कहानी नहीं कहती बल्कि सामाजिक सोच में बदलाव की कहानी भी कहती है। और इसमें तुमने देखा था ना, महावीर सिंह फोगाट का जो कैरेक्टर था वो कितना अच्छा मतलब होता है कि बेटियों को किस तरह से अवसर देता है, जो समाज अक्सर बेटों के लिए सुरक्षित मानता था कि इस फील्ड में सिर्फ बेटे जा सकते हैं, उस फील्ड में भी फिल्म का ये जो संदेश है कि प्रतिभा किसी लिंग की मोहताज नहीं होती।
0: बिल्कुल आरती, जो अब अगर तुम जब कंटिन्यू बात कर रहे हो फिल्मों पर, तो देख लो उसका एग्जांपल लेते हैं भाग मिल्खा भाग का। उसमें संघर्ष की सफलता तक की एक कितनी अच्छी कहानी छुपी हुई है। मिल्खा सिंह के जीवन जो है वो विभाजन की त्रासदी और गरीबी उसके अंदर कितनी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो ये एक संदेश है जो लोगों तक जाता है। और एक और भी क्रिकेट पर जो बनी थी फिल्म वो थी
1: मुझे ध्यान आ रही है कि द अनटोल्ड स्टोरी,
0: एमएस धोनी पर बनी थी। धैर्य और विश्वास की एक मिसाल है वो फिल्म आरती। धोनी का जीवन हमको ये बताता है कि सफलता पाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ सकता है। एक साधारण परिवार से निकलकर विश्व क्रिकेट के महान कप्तानों में शामिल होना उनकी मेहनत और आत्मविश्वास जो था उसका परिणाम था। फिल्म युवाओं को अपने सपनों में विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती है। और क्रिकेट पे बनी दो फिल्में और भी थी जो आमिर खान ने अभी हमने बताया कि लगान फिल्म थी, याद आया मुझे, लगान फिल्म थी।
1: और फरहान फिल्में तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम अपनी विमेंस टीम को भी
0: बहुत बहुत बधाई
1: देते हैं और साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि आगे वाला जो वर्ल्ड कप होने
0: होगा और इससे और ये तो बहुत जरूरी बात है।
1: तो इसी बात के साथ सुनवाते हैं एक बेहतरीन सा सॉन्ग,
0: चक दे इंडिया से मगर।

0: चक दे इंडिया, और बस हम इंडिया के लिए यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड कप है फरहान, वो बस देश के नाम हो जाए। और नीलू शर्मा भी कुछ ऐसा ही कह रही हैं, और इनकी मेल आई है अनूपपुर चंदेल से। फरहान सर लिख रही हैं, फरहान सर आरती मैम को मेरा नमस्कार। जो कल विमेन टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 64 रन से हार का सामना कराया, टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई दे रही है ये। और दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, मतलब इन्होंने पूरी बात अपनी लिखी है। और मेरी अग्रिम शुभकामनाएं, विश्व कप भी हमारे देश की बेटियां लेकर आएंगी।
1: बिल्कुल, हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि हमारी देश की बेटियां ये वर्ल्ड कप लेकर के आएं। और हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से हमारी जो विमेन टीम गई भी है, उन सभी को जो है हमारा बहुत बेस्ट ऑफ लक।
0: फरहान तुमने बेस्ट ऑफ लक तो बोल दिया, लेकिन कहते हैं ये जो खेल होते हैं ना, या जीवन में हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी लगन, ये सारी चीजें लगी होती हैं। और कहते हैं ना कि जो हम बोते हैं वही काटते हैं, और ये हमारी आज की जो कहावत है इस पर भी बात सिद्ध होती है। यानी अब बात हम करने जा रहे हैं कैसी कहावत की जो जीवन का शाश्वत सत्य है कि जो बोया वो काटा।
1: ये तो बिल्कुल सच बात है कि आज हम जो बोएंगे कल हमें वही काटना भी पड़ेगा।
0: और ये केवल कहावत नहीं है बल्कि प्रकृति और जीवन का अटल नियम है। फरहान, किसान जब खेत में बीज बोता है ना, तो उसी के अनुसार फसल प्राप्त करता है। यदि वह गेहूं बोएगा तो गेहूं ही उगेगा, और यदि वो काटे बोएगा तो फूलों की उम्मीद कैसे कर सकता है।
1: वो तो है आरती, बिल्कुल सच बात है, और यही सिद्धांत हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार वही बीज हैं जिनकी तुम अभी बात करनी थी, जिन्हें हम प्रतिदिन बोते हैं। यदि हम प्रेम, सद्भाव, ईमानदारी और परिश्रम के बीज बोएंगे, और अगर ये नहीं करेंगे तो आप फिर इससे अच्छे फल की उम्मीद कैसे कर सकते।
0: बिल्कुल,
1: और अगर हम आज ये करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कल जो हमारा पेड़ तैयार होगा, जो पौधे तैयार होंगे, उसमें भी यही सब कुछ हमें मिलने वाला।
0: बिल्कुल, ये यानी हमारा जो जीवन है वो हमारे कर्म के आधारित है। कर्म जैसा हम करेंगे,
1: जो आज हम बोएंगे, हाँ, कल वो हम पाएंगे,
0: वही पाएंगे। और आज के समय में ना बहुत से लोग फास्ट रिजल्ट पाना चाहते हैं कि सफलता हमें तुरंत मिल जाए, तो हमें ये समझना और भी आवश्यक हो जाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है।
1: वो तो बिल्कुल सच बात है कि अगर सफलता का शॉर्टकट होता तो सभी लोग जो है सफल होते, ठीक है ना। उसके लिए मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, और मेहनत के लिए अच्छी शिक्षा, अनुशासन, मेहनत के साथ साथ सकारात्मक जो सोच है, वो ऐसे ही वो बीज हैं जो उज्जवल भविष्य के जो फसल है उसको तैयार करते हैं।
0: और समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी यही सिद्धांत लागू होता है कि यदि हम स्वच्छता है, पर्यावरण संरक्षण है, सामाजिक सद्भाव और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देंगे, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो एक बेहतर और समृद्ध समाज को गढ़ेंगी। और इससे रिलेटेड एक मुझे स्टोरी जो है वो भी याद आ रही है।
1: स्टोरी राइटर बन गए हो
0: अगर
1: लेकिन जरूर स्टोरी सुनाओ।
0: हाँ, एक गांव था, वहां पर हरिराम नाम का एक व्यक्ति रहता था, और वो स्वभाव

0: से बहुत कड़वा था। बात बात पर लोगों को अपमानित करना, झूठ बोलना, दूसरों का नुकसान करना उसकी आदत बन चुकी थी। और कहते हैं ना कि गांव के लोग, जब ऐसी आदत किसी की होती है तो उससे लोग दूरी बना लेते हैं, ऐसा होता है। और एक दिन उसके घर के सामने साधु आए। उन्होंने देखा कि हरिराम अकेला और परेशान रहता था। साधु ने उसे एक नीम का पौधा देते हुए कहा कि इसे अपने आंगन में लगाना और रोज देखभाल करना। हरिराम ने वैसा ही किया। कुछ वर्षों में नीम का पौधा बड़ा पेड़ बन गया, एक विशाल वृक्ष बन गया।
1: अच्छा।
0: और उसने देखा कि वो वृक्ष तो बहुत बड़ा विशाल बन गया है, लेकिन उसके जो फल हैं वो कड़वे हैं। तो उसने साधु से शिकायत की कि महाराज, मैंने इतनी सेवा की, इसको पौधे से वृक्ष बनाया, हाँ, लेकिन इसका जो रिजल्ट हमें मिला वो क्या मिल रहा है, कड़वा। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, नीम का जो बीज है वो आपने बोया, तो नीम का बीज बोकर आम की उम्मीद नहीं की जा सकती। जैसे पेड़ अपने बीज के अनुसार फल देता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। यदि तुम लोगों के साथ कटुता, छल और स्वार्थ का व्यवहार करोगे तो बदले में प्रेम और सम्मान कैसे मिलेगा।
1: बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सही बात कही ना। वो पूरी की पूरी जो है, जो स्टोरी है, जो हम लोगों ने बात करने की शुरुआत करी थी, वो तो वही है ना कि जो आज हम बो रहे हैं कल वही काटेंगे। इसके कहने का मतलब सिर्फ बीज और पेड़ तक के सीमित नहीं है, बल्कि ये है कि आज हम जो समाज को दे रहे हैं कल खुद भी उसके लिए हमें तैयार रहना होगा।
0: बिल्कुल, यानी हमारे अच्छे विचार, अच्छे कर्म से ही हमें सुख, सम्मान और प्रेम की फसल मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: है ना?

0: देखा फरहान, जो बीज होता है ना वही फल होता है।
1: एक्चुअली क्या था आरती कि जब तुम बीज और फल की बात कर रही थी तब मुझे याद आ रहा था मौसम और मौसम में भी ये याद आ रहा था कि आखिर मानसून कब तक आएगा। और चलो थोड़ा सा हम लोग इस पर बात करते हैं, ठीक है। और आरती तुमको ये बताएं कि मानसून जो है वो भारत पहुंच चुका है और बस अब इंतजार है अपने शहर तक आने का। और इसके बारे में हम तुमको ये बताएं कि भारत में मानसून केवल एक मौसम नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन, कृषि और अर्थव्यवस्था का आधार है। गर्मी के लंबे और तपते दिनों के बाद जब आसमान में काले घने बादल छाते हैं और वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं और जमीन को भिगोती हैं तो प्रकृति जैसे नई ऊर्जा से भर उठती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मानसून आता कैसे है, इसके पीछे कौन कौन सा विज्ञान है जो काम करता है, क्या तुम बता सकती हो हमें?
0: फरहान, हर चीज़ के पीछे विज्ञान तो होता ही है। और जब बात चल रही है मानसून की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो वर्ड है ना, शब्द, ये अरबी भाषा के मौसम से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून उन मौसमी हवाओं को कहते हैं जो वर्ष के अलग अलग समय में अपनी दिशा को बदलता है और वर्षा को लेकर के आता है। गर्मियों में सूर्य की तीव्र गर्मी के कारण भारतीय जो उपमहाद्वीप की जो भूमि है वो बहुत तेजी से गर्म हो जाती है और इसके विपरीत समुद्र जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है। भूमि के अधिक गर्म होने से वहाँ निम्न वायुदाब का एक क्षेत्र बन जाता है।
1: जी, अरे आरती तुम्हें तो बड़ी अच्छी जानकारी है और हम तुमको ये भी इसमें जोड़ते चलें कि जो ये तो पहला था और जो दूसरी ओर हिंद महासागर और अरब सागर के जो ऊपर अपेक्षाकृत उच्च वायु दाब, यानी तुमने अभी जो लो प्रेशर की बात करी ये हाई प्रेशर बन जाता है। और वायु दाब के इस अंतर के कारण समुद्र में नमी से भरी हवाएं भूमि की ओर बढ़ने लगती हैं। जब ये हवाएं भारतीय तटों और पर्वतों से टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं और ठंड होकर जब ये ठंडी होती है तो बादलों का निर्माण करती है और उसका रिजल्ट ये होता है कि बारिश होने लगती है।
0: बिल्कुल फरहान, तुमने तो मतलब पूरा जो विज्ञान था इसका सामने ला दिया। और ऐसा ही होता है ना कि जब मानसून, प्रकृति और विज्ञान का जो ये अद्भुत संगम होता है, या सूर्य की गर्मी, वायुदाब के अंतर, समुद्री नमी और भौगोलिक संरचना के संयुक्त प्रभाव से बनता है। यानी हर वर्ष आने वाला ये जो मानसून है ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के जटिल वैज्ञानिक नियम किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी वर्षा की हर बूंद के पीछे विज्ञान की एक रोचक कहानी होती है।
1: और आरती तुमको ये भी बताएं कि जो जब गर्मी में मानसून आता है तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है और जब ये लौटता है, यानी कि सर्दी में जब ये लौटता है तो उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है।
0: बिल्कुल, तुमने सही बात कही क्योंकि ये वहीं से आता है। और अब फरहान, जो वक्त है वो हमसे कह रहा है कि एक रेसिपी की बात कर ली जाए क्योंकि बहुत स्पीड में वक्त आ जा रहा है। तो आज की रेसिपी है आम श्रीखंड रेसिपी और इसके लिए जो सामग्री है वो बता देते हैं। सबसे पहले सामग्री लेना है 500 ग्राम गाढ़ा दही, 2 पके आम, पिसी चीनी स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और 2 इलायची, 8 से 10 केसर के धागे वैकल्पिक हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं वरना इग्नोर कर सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच कटे पिस्ता, बादाम, 1 बड़ा चम्मच दूध केसर भिगोने के लिए। और इसकी विधि बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है।
1: बता दही दो, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि तुम ये जल्दी से बता दो तो एक लिस्ट में हमारी रेसिपी बढ़ जाए।
0: बिल्कुल, दही को मलमल के कपड़े में बांध कर 4 से 5 घंटे के लिए लटका दे ताकि अतिरिक्त जो पानी है वो निकल जाए, इससे गाढ़ा हंग कर्ड तैयार हो जाएगा। और आम का जो गूदा है वो निकाल कर मिक्सी में पीस लेते हैं। एक बड़े बर्तन में हंग कर्ड, आम का

0: गूदा, पिसी चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से फेंट लेना है। केसर को एक बड़े चम्मच दूध में भिगोकर जो मिक्सचर है उसमें मिला देना है। देन मिक्सचर को 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखना है। परोसते समय ऊपर से कटे हुए पिस्ता और बादाम को बस डाल देना है और इस तरह से ठंडा ठंडा आम श्रीखंड, पूरी, पराठे या ऐसे ही मिठाई के साथ परोसा जा सकता है।
1: आरती मैं बनाऊंगी जरूर।
0: तो बिल्कुल बनाइएगा फरहान। और जो
1: भी वक्त देख लो आरती, एक बार घड़ी की तरफ नजर मार लेते।
0: बिल्कुल तो। घड़ी बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रही कि अब हम आगे बढ़े। तो इसी के साथ मुझे यानी आरजे आरती
1: और आरजे फरहान को अब दीजिए हम नवा प्रोग्राम से इजाजत।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि आज घर सूने हो रहे हैं और वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, यह तथ्य मन को व्यथित करता है। आज विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते हमें इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है कि सनातन संस्कृति में माता पिता और गुरु को साक्षात ईश्वर माना जाता है। वृद्धजनों का सम्मान केवल संस्कार नहीं बल्कि हमारी गौरवशाली सभ्यता की पहचान है। वृद्धजनों और निराश्रित महिलाओं का सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए ही प्रदेश सरकार ने 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन देने का निर्णय लिया है। उन्होंने लिखा है कि संयोग से इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम भी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग अवश्य अपनाएं। अयोध्या में राम मंदिर के दान घोटाले को लेकर चल रही जांच के बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने एक बार फिर एसआईटी जांच पर भरोसा जताया है। अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिस तेजी से एसआईटी का गठन किया वह अपने आप में प्रशंसनीय कदम है। उन्होंने बताया कि एसआईटी के तीनों सदस्य शीर्ष स्तर पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अयोध्या पहुंचेंगे और जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि उन्हें नहीं लगता कि अब जांच में किसी प्रकार की ढिलाई बरती जाएगी। नृपेंद्र मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि एसआईटी को राम मंदिर प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग दिया जाएगा, साथ ही जिला प्रशासन ने भी जांच में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। फतेहपुर जिले के बहुआ ब्लॉक की घमहरी ग्राम पंचायत में सोमवार रात ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के तहत प्रभारी मंत्री एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, सुझावों एवं शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में स्वास्थ्य, आईसीडीएस, शिक्षा, कृषि, उद्यान व पशुपालन विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान आईसीडीएस विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया गया। मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिले में आज भी कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: क्या बात है, आजकल टाइम से घर?
1: हाँ हाँ, बस एक फटाफट से अब मसाले वाली चाय जल्दी से पिला दो।
0: अरे ठीक है बाबा, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों है?
1: अरे 7 बजे FM रेनबो पर कॉल जो करनी है।
2: जी हाँ, FM रेनबो लेकर आया है हर रोज शाम 7 बजे से हेलो FM कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए। तो कर डालिए अपने दिल की बात अपने पसंदीदा गाने के साथ।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो,
6: धड़कन लखनऊ की।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: दोस्तों 12:05 और 15 सेकंड हो चले हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रु पर, जिसमें शालिनी आ चुकी है लेकर आपकी हेल्थ की बात। जी हाँ, वैसे जिसको ज्यादा किसी की फिक्र होती है ना, वही हमारी सेहत की बात करता है और हमारे FM रेनबो की को आपकी बहुत बहुत बहुत से ज्यादा फिक्र रहती है। भाई हमारा काम है आपको जानकारी देना, आपको आगाह करना, आपके हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें एक्सपर्ट के द्वारा आप तक पहुंचाना, और उसके बाद आपका क्या काम है, हमारी बात को एकदम गांठ बांध लेना और उसे समझना, सोचना और उस पर काम करने की कोशिश करना। हाँ, हम जानते हैं थोड़ा सा बदलने में वक्त लगता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है ना। तो आज क्या खास है, क्या बात है और क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं प्यारे से ट्रैक के बाद। तो जो जो लोग कहीं इधर उधर बिजी हैं, थोड़ा सा फ्री हो जाएं ताकि ये जो एक घंटा है बहुत अच्छी वाली जानकारी का, तो वो उस पर ध्यान दे सके। हाँ, साइट वाला काम सारा करते रहें और कहीं ऐसा ना हो कि हमें सुनने के चक्कर में आपको डांट खानी पड़ जाए, ये भी नहीं करना है। और आज का जो प्रोग्राम है खासकर महिलाओं के लिए है, जो उनके अंदर डर है, परेशानी है, झिझक है, सब कुछ आज हम दूर करने वाले हैं। क्या है क्या नहीं, ये सब पता चलेगा इस प्यारे से ट्रैक के बाद।

12:13 और 10 सेकंड का वक्त शालिनी आपके साथ लेकर आज है बात क्या। अच्छा बताइए कल क्या तारीख थी, जो बीत गया है कल उसकी बात करते हैं। जी हाँ, कल थी 14 जून तारीख। हाँ, और 14 जून को हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया बताइए तो जरा थोड़ा सा। हाँ, हमारे अगर आपने एफएम रेनबो सुना होगा तो सारी चीजें आपको पता होंगी। जी हाँ, कल हमने विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड डोनर डे, ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया।

0: किया था। जी हाँ, जिसमें बहुत सारी चीजें बताई गई। हमारा जो इस बार का थीम थी वो थी मानवता की एक बूंद रक्तदान करे जीवन बचाएं। बिल्कुल, और बहुत सारी चीजें कही जाती हैं इसके बारे में। दोस्तों पता है रक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ब्लड ना मिलने की वजह से अपनों से दूर भी जाना पड़ जाता है। ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स तब फेस करनी पड़ती हैं जब आप अपने आसपास के हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर जाएं देखें, या कोई हमारा करीबी हमारे परिवार का व्यक्ति बीमार पड़ता है। भगवान न करे ऐसा कभी आपके साथ हो, लेकिन कहते हैं ना कि जिसके पांव पड़ी ना बेवाई वो का जाने पीर पर आई। ये कहावत सुनी है ना, तो सेम इस पर बिल्कुल फिट पड़ती है। तो बस इसीलिए बहुत सारी जानकारी देने के लिए आज हम हैं आपके साथ, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं। वो क्या बताने वाले हैं आपको पता है? जब ब्लड डोनेट करने की बात होती है तो अक्सर देखा गया है कि हमारी महिलाएं थोड़ा सा पीछे रहती हैं। हाँ, जब लेकिन अपने घर की बात आती है तो वो युद्ध करने के लिए क्या आग में भी कूदने के लिए तैयार रहती है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि महिलाएं सोचती हैं कि उनका हीमोग्लोबिन कम होगा, उनको वीकनेस है, उनको पैरों में दर्द है, फिर हम घर का काम कैसे करेंगे, और साथ ही साथ जो मासिक धर्म होता है महीने का, उस समय और सोचा जाता है कि इस समय तो हम रक्तदान कर ही नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं, मेनोपॉज के बाद क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, और इन सारी बातों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट हैं। कौन है? प्रोफेसर तुलिका चंद्रा जी। जी हाँ, और वो हमें बताने वाली हैं ढेर सारी जानकारी कि किस तरह से महिलाएं भी हमारी आगे आ सकती हैं इस नए काम के लिए। और पता है तुलिका चंद्रा मैम कहाँ से हैं? ये डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से हैं, और हमें इसके बारे में आज जागरूक करने वाली हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडियो में डॉक्टर तुलिका चंद्रा का स्वागत करते हैं।
1: एफएम रेनबो के समस्त श्रोताओं को बहुत बहुत उनका सत्कार और स्वागत, और शालिनी जी आपका बहुत धन्यवाद कि

0: समाज में स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में मैं कुछ अपनी धारणाएं उनको बता सकूं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ रहने के लिए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। सबसे पहले मैम ये जानेंगे कि महिलाओं के लिए रक्तदान कितना सुरक्षित है। जैसे कि अभी हमने बात करी ना कि महिलाएं हमें हमारी ज्यादा घबराती हैं, उसके बारे में बताएं।
0: बहुत जरूरी सवाल है ये शालिनी जी। महिलाओं को रक्तदान की बहुत ज्यादा जरूरत है। रक्तदान सुरक्षित है कि असुरक्षित ये तो दूसरी बात है, लेकिन पहली बात है इमरजेंसी जरूरत, क्योंकि महिलाएं एक ऐसी महिलाएं जो होती हैं अपनी प्रसव के थ्रू गुजरती हैं जिसमें उनकी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और अक्सर हिंदुस्तान में देखा जाता है कि जो गांव की महिलाएं होती हैं वो पहले अपने परिवार का ख्याल रखती हैं और फिर अपना ख्याल रखती हैं, और जब वो प्रेग्नेंट भी होती हैं तब भी शायद अपने स्वास्थ्य का इतना ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से एक नॉर्मल रूटीन में उनकी हीमोग्लोबिन कम हो रहा बहुत कम हो जाता है, और प्रसव के समय उनको रक्तदान की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उनकी जीवन की सुरक्षा रक्तदान पे ही डिपेंडेंट है। आज के देखिए कि जहाँ पे मैटर्नल मोर्टैलिटी रेट, मतलब प्रसव के समय महिलाओं की जो मृत्यु हो जाती है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको उचित मात्रा में रक्त नहीं मिल पाता और उनके अंदर शरीर में इतनी ताकत नहीं होती है कि बिना रक्त के वो अपने और अपने बच्चे की जान बचा पाए।
1: तो इसका मतलब समझे कि महिलाओं को रक्तदान अपने लिए खुद के लिए करना है कि जब जरूरत पड़े तो उन्हें समय पर रक्त मिल सके। मैम महिलाएं पुरुषों की तरह नियमित मतलब रेगुलर रूप से रक्तदान कर सकती हैं या उनके लिए कुछ अलग विशेष इंस्ट्रक्शंस होते हैं?
0: जब पूरा संसार में महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती वो गलत है। महिलाएं नियमित रूप से रक्तदान कर सकती हैं, बस फर्क यह है कि वो हर 4 महीने में करती हैं और पुरुष हर 3 महीने में नियमित रूप से रक्तदान कर सकते हैं। और जो महिलाएं नियमित रूप से रक्तदान करती हैं सौभाग्यशाली होती हैं कि रक्तदान के योग्य होती हैं, वो सदा स्वस्थ रहती हैं क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन हर वक्त सही रहता है।
1: अच्छा, कहा जाता है कि मैम एक कोई व्यक्ति रक्तदान जब करता है वो कई लोगों की हेल्प करता है, उससे कई लोगों को मदद मिलती है, वो कैसे? दोस्तों 12:18 हो चले हैं और हमारे साथ हैं प्रोफेसर तुलिका चंद्रा मैम, और जो कि बताने जा रही हैं कि एक व्यक्ति के रक्तदान करने से कितने लोगों को मदद मिलती है।
0: शालिनी जी, आपको पता है कि ये रक्तदान जो है आज की ब्लड कंपोनेंट्स का जमाना है, और आपके एक रक्तदान से 3 या 4 लोगों की जान पड़ जाती है। प्लेटलेट्स के बारे में तो आप जानते हैं, जब डेंगू होता है तो कितने ज्यादा प्लेटलेट्स की जरूरत होती है, हर आदमी के प्लेटलेट्स की कमी होती है। प्लाज्मा, जब आपको कोई लिवर डिजीज होती है, कोई फैक्टर्स की कमी होती है तो प्लाज्मा की जरूरत होती है, और हीमोग्लोबिन की कमी में तो आपको PRBC की जरूरत होती होती है। और इन 3 कंपोनेंट से केवल एक रक्तदान से बन जाते तो आप 3 लोगों के 3 परिवारों के बुझते हुए चिरागों को जला देते हैं, क्या उस अन्नदाता को बचा लेते हैं। तो एक रक्तदान 3 लोगों की जान बचाता है और इससे बड़ा पुण्य का कार्य नहीं हो सकता।
1: तो दोस्तों सुना ना, है छोटी सी चीज लेकिन समझने में बड़ी लगती है, लेकिन जब आप समझ जाते हैं ना तो आप खुद जागरूक होते हैं और अपने आसपास लोगों को भी जागरूक करते हैं। मैम तो आप अब बताइए ना किस तरह के लोग रक्तदान कर सकते हैं और कौन कौन नहीं कर सकता है, इसके बारे में भी हमारे लिसनर्स को बताएं।
0: बहुत जरूरी सवाल है जो कि शालिनी जी, ये चीज जो पूछी जाती है बहुत सारे लोगों के मन में मिथ्या है, भ्रम है, और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हम रक्तदान कर सकते हैं कि नहीं। पहली बात है कि रक्तदान करने के लिए प्रेरित होना, फिर ये सोचना कि हम उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं। जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी कैटेगरी है, 18 से 65 वर्ष के मध्य कोई भी रक्तदान कर सकता है। 60 वर्ष तक अगर एक बार रक्तदान नहीं किया है तो 60 वर्ष तक कर सकते हैं, अगर एक बार भी जिंदगी में रक्तदान किया है तो आप 65 वर्ष तक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका वजन 50 किलो से ज्यादा होना चाहिए, आपकी हीमोग्लोबिन 12.5% से ज्यादा होनी चाहिए जिसकी जांच ब्लड बैंक में ही होती है। इसके अलावा आपको कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, आप खाली पेट नहीं होना चाहिए, कुछ खा के आना चाहिए। रक्तदान करने से 2 दिन पहले आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, 3 दिन पहले कोई दर्द की दवा ना खाएं जिससे कि आपकी प्लेटलेट्स जो जाए वो किसी मरीज को उसका फायदा हो। और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो जब आप रक्तदान करने जाएंगे तो पूरा एक चिकित्सीय परीक्षण होगा, आपको सब कुछ देखा जाएगा। अगर आप रक्तदान करने योग्य हैं तभी आपसे रक्तदान कराया जाएगा, और अगर योग्य नहीं है तो आपको थोड़े से सुझाव दिए जाएंगे कि आप कैसे अपना स्वास्थ्य और इम्प्रूव करके

0: पुनः रक्तदान कर सकते हैं।
1: मामा, ये रक्तदान की कितना समय लगता है रक्तदान करने में?
0: रक्तदान करने में मात्र 5 से 6 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर आप कभी भी ब्लड बैंक में जाते हैं तो आपको पूरा अपना नाम, डिटेल, फॉर्म भरते हैं, आपकी जांचें होती हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में 1 घंटा लगता है। तो किसी की जान बचाने के लिए 24 घंटे में 1 घंटा देना, वो भी 4 या 3 महीने में एक बार, बहुत बड़ी बात नहीं होती।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। मैम, ये रक्तदान की जो प्रक्रिया होती है वो कितनी सुरक्षित होती है?
0: रक्तदान की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सुरक्षित होती है। बहुत सारे लोग उस नीडल को देख के कहते हैं कि, जैसे आप सुनते हैं कि भाई संक्रमण ना हो जाए हमें सुई से, तो पहली बात, जो सुई होती है जो बैग में यूज होती है रक्तदान के लिए, वो ट्यूब से अटैच होती है, कोई चाह के भी उसको रियूज नहीं कर सकता, और उसी वक्त उसकी जो ब्रेकिंग है, जो कवर है, वो खोला जाता है और वो बिल्कुल सेफ होती है। और अगर साइज जरूर बड़ा होता है लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं होता। चींटियां तो सबको काटी होंगी अपनी जिंदगी भर, तो एक दर्द जितना चींटी ने काटा होता है उतना ही दर्द होता है जब आपने लगती है, उसके बाद कोई दर्द नहीं होता 5-6 मिनट। और उसके रक्तदान करने के बाद आपको थोड़े रिफ्रेशमेंट्स भी मिलते हैं, 10 मिनट रोका भी जाता है, उसके बाद पूर्ण सम्मान के साथ आप जा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात का, रिफ्रेशमेंट मिलता है मैम। लेकिन रक्तदान के बाद कौन सी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी बताएं।
0: रक्तदान के बाद जैसे बहुत जरूरी बातें हैं ये सब आप जो पूछ रही हैं, क्योंकि मन के लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, शायद उनको कभी जवाब नहीं मिलता, तो इस बहाने उनको ये शायद जवाब मिल जाए, आशा करती हूँ, जिससे वो प्रेरित होकर रक्तदान करने के लिए आए। रक्तदान करने के पास जो कहते हैं 4 घंटे तक थोड़ा पानी ज्यादा पीना चाहिए, और 4 घंटे तक बहुत धूप में काम नहीं करना चाहिए, या बहुत लंबी ड्राइव में नहीं जाना चाहिए, या जिस हाथ से रक्तदान किया है 4 घंटे तक उससे बहुत भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, आप सुरक्षित और आराम से रक्तदान कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों, जो मन का डर है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है और हम अवेयर हो रहे हैं, खासकर हमारी महिलाएं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, और जो नहीं जुड़ी हैं वो जो महिलाएं हैं वो उनको ये बातें बताने वाली हैं। दोस्तों, अब बारी है प्यारे से ट्रैक की, लेकिन इसके बाद ढेर सारी बातें अभी भी जानना है हमें प्रोफेसर तुलिका चंद्रा मैम से, जो कि बताने वाली है कि किन परिस्थितियों में महिलाओं को रक्तदान नहीं करना चाहिए, और हीमोग्लोबिन का रक्तदान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या पीरियड्स के दौरान या तुरंत बाद हमारी महिलाएं रक्तदान कर सकती हैं या नहीं, ये सारे प्रश्नों के उत्तर अभी हम जानेंगे इस प्यारे से ट्रैक के बाद।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

0: 12:30 हो चले हैं दोस्तों, और ये वक्त अच्छा 30 सेकंड बता दिया हमने भाई, 12:30 हो चले हैं और 3 सेकंड हैं, और प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा, जिसमें शालिनी है आपके साथ, आज प्रोफेसर तुलिका चंद्रा मैम के साथ में, जो कि कहाँ से हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से हैं, और आज हमारी महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, उनके अंदर जोश भरने का काम हो रहा है, और बहुत सारी जानकारी हमने मैम से ले ली है कि महिलाओं के लिए रक्तदान कितना सुरक्षित है, वो कब कैसे करें, रक्तदान की प्रक्रिया क्या होती है, और रक्तदान करने के बाद हमें क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं, और अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे दिमाग में बहुत सारा मिथ रहता है कि हमें तो रक्तदान करना ही नहीं है, तो वो खास परिस्थितियां मैम बताने वाली हैं कि हम कब, यानी कि महिलाएं कब रक्तदान ना करें।
1: जो महिलाएं जो होती हैं, जब रक्तदान, जब उनके मासिक धर्म चल रहा होता है तब वो रक्तदान नहीं कर सकती हैं, या प्रेग्नेंट होती हैं तब नहीं कर सकती हैं, या लैक्टेशन अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं तब नहीं कर सकती हैं, अन्यथा और सब टाइप में वो वैसे ही रक्तदान कर सकती हैं जैसे एक पुरुष कर सकता है।
0: तो समझ के ना, खास परिस्थितियां, और इन परिस्थितियों को आपको ध्यान में रखना है। मैम, ये जो हीमोग्लोबिन के बारे में आपने बताया ना, इसका

0: बताया। तो हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो रक्तदान में क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये भी जरा बताएं।
1: देखिए, जब आप रक्तदान करने जाते हैं तो 12.5% हीमोग्लोबिन करते हैं, इसके ऊपर है तो स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। और ये तो रक्तदाता का फायदा है, और कोई स्वस्थ आदमी है, उसके ब्लड में भी कोई कमी नहीं है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है। और जो यूनिट वो रक्तदान करता है तो उसके 12.5% हीमोग्लोबिन होती है जो किसी मरीज को जाती है। अब किसी मरीज के हीमोग्लोबिन 9 है और उसको हम 8 ग्राम हीमोग्लोबिन का ब्लड चढ़ा लेते हैं तो उसको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। लेकिन अगर उसको हम 12.5% हीमोग्लोबिन का ब्लड चढ़ाते हैं तो उसका हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी से 8 की जगह 9 हो जाएगा। तो मरीज को फायदा तभी होगा जब उसको जो रक्त यूनिट मिल रही है उसका हीमोग्लोबिन सही है और वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है।
0: तो दोस्तों, अब ये जो आपका भ्रम है कि हमारा हीमोग्लोबिन कम है तो हम नहीं दे सकते हैं, हम वीक हो जाएंगे, तो ये भ्रम थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, क्योंकि अगर कम हीमोग्लोबिन पर आप रक्तदान करते हैं तो जिसको फायदा होना है उसको रक्त चढ़ाने पर कोई भी फायदा नहीं होगा। मैम, जैसा कि आपने बताया कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती हैं, क्या उसके तुरंत बाद रक्तदान किया जा सकता है?
1: ये भी जरूरी है महिलाओं के लिए कि जब मासिक धर्म खत्म हो जाए तो वो रक्तदान कर सकती हैं। लेकिन याद रखिए, तब भी आपकी हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी। तो मासिक धर्म का मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे अंदर से थोड़ा खून जा रहा है तो हमारी हीमोग्लोबिन कम हो जाए। आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा होना चाहिए, आपको उसके लिए, महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के लिए इतना सजग होना चाहिए कि मासिक धर्म के बाद भी 12.5% से नीचे ना जाए और उसके तुरंत बाद आप रक्तदान करने में सक्षम हो।
0: बिल्कुल सही बात बताई है, आपको इतना जागरूक रहना है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि हेल्थ अगर आप अच्छी रहेंगी तो हर तरह से आप सबकी मदद कर सकती हैं। मैम, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन की बात बताई ना, तो गर्भ अवस्था और प्रसव के बाद रक्तदान को लेकर क्या सलाह दी जाती है ऐसी स्त्रियों को?
1: गर्भावस्था में आप रक्तदान नहीं कर सकते, जैसे पहले भी बताया आपको, और प्रसव के बाद भी 1 साल तक आप नहीं कर सकते हैं, और बच्चे को अगर आप दूध पिला रही हैं तब भी आप रक्तदान नहीं कर सकती हैं। लेकिन देखिए, ये टेम्पररी फेज है, उस वक्त शायद आपको खुद ही ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है इसलिए आप रक्तदान नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो रक्तदान की वजह से ही जिंदा रहती हैं, उनका प्रसव ठीक रहे, सजग रहें और रक्तदान के लिए योग्य बनाएं अपने को और नियमित रूप से रक्तदान करें।
0: देखिए, हर बात पर मैम एकदम जोर देकर कह रही हैं कि हाँ, आप स्वस्थ रहें ताकि आप रक्तदान कर सकें और इस नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैम, महिलाओं में जो एनीमिया की एक प्रॉब्लम होती है ना, खून की कमी, और रक्तदान के बीच का क्या संबंध है? क्योंकि सभी कहते हैं अक्सर, अरे हम महिलाएं हैं, हमारे शरीर में तो खून की कमी होगी ही, इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक करें हमारी महिलाओं को।
1: महिलाओं में जैसे हमने पहले कहा, अनीमिया बहुत कारण होते हैं। पहली बात है, जो यंग लड़कियां होती हैं वो ज्यादातर डाइटिंग या पतला रहने के चक्कर में हेल्दी फूड नहीं खाती हैं और उसकी वजह से उनकी हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, जिसे हम अनीमिया कहते हैं। अनीमिया देखिए एक सिम्टम है, एक बीमारी का सिम्टम है, वो बीमारी खुद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। तो जब भी आपको हीमोग्लोबिन कम हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका हीमोग्लोबिन कम है और उसको बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। जब आप रक्तदान करने आते हैं तो आपकी हीमोग्लोबिन की जांच होती है, और जैसे मैंने बताया कि आज आपकी हीमोग्लोबिन की जांच हुई, आपका कभी हीमोग्लोबिन कम है तो आप ऐसे तो शायद कभी जाते ही नहीं है, लोग 6, 7, 8 हीमोग्लोबिन आराम से घूमते रहते हैं, कभी जांच भी नहीं कराते। अब आपको पता है, अब रक्तदान नहीं कर सकते क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है, तो आप अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल, अपना आहार सब कुछ इम्प्रूव करेंगे कि आप उस लेवल तक पहुंच जाएं और स्वस्थ कहलाएं। ये आपके लिए एक मोटिवेटर है कि अगर आप रक्तदान करने जाते हैं और आपका हीमोग्लोबिन कम है तो इसके मतलब अनीमिया है, तो अनीमिया को पूरी करने और ठीक होने की जिम्मेदारी और जो फोर्स है वो रक्तदान ही आपको देता है, जिससे कि आप स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए लाइक हो सके।
0: तो दोस्तों, सारी चीजें क्लियर हो गई ना। जब हम कहते हैं ना हमारे अंदर खून की कमी है, क्यों ही ऐसी चीजें रहें कि हम ये शब्द बोले, तो खुद को हेल्दी रखना है। और दोस्तों, पता है हेल्दी रखने के लिए क्या करना है? हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है, और हेल्दी लाइफस्टाइल हमारी सुबह से शाम तक के किए गए क्रियाकलापों पर डिपेंड करती है। लेकिन और उसके लिए पता है योग बहुत जरूरी है। अब आप ये कहेंगे कि ये योग की बात कहां से आ गई? अगर महिलाएं प्रॉपर योग करें ना, तो उनका पीठ दर्द, उनका पैरों का दर्द, उनका कम

सर दर्द, सारी चीजें फुर हो जाती हैं, लेकिन करें कब। बहुत सारी महिलाओं को कहना है भाई दिन भर किचन में हो गया, कुछ ऑफिस में समय चला गया, कब समय निकालें। लेकिन जो ये शब्द है इसी को बदलना है दोस्तों, कहना है कि अपने लिए समय निकालना है, और वो भी इंपॉर्टेंट समय, मॉर्निंग का या इवनिंग का, जब भी आपको समय मिले अपने लिए निकालिए 10 से 15 मिनट। योग जरूरी है और बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि इस बार स्वस्थ आयु के लिए योग, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये थीम है इस पर योग का, जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग मनाते हैं 21 जून को। उस दिन सभी लोग फोटो डालेंगे, पिक्चर डालेंगे, स्टेटस लगाएंगे, लेकिन क्या हम प्रॉपर कर रहे हैं योग? अगर आप करते हैं तो हमें क्या कर सकते हैं, ईमेल करिए fmakashwani@gmail.com पर। और साथ ही साथ सुनते रहिए शालिनी को प्रोग्राम सतरूपा में। हेल्थ की कर रहे हैं हम बात आज, जिसके लिए प्रोफेसर तुलिका चंद्रा मैम हमारे साथ हैं।

0: 12:41 हो चले हैं और हम आज बात कर रहे हैं सुरक्षित रक्तदान की, और वो महिलाओं के द्वारा कैसे किया जा सकता है। उसके लिए हमारे साथ प्रोफेसर तुलिका चंद्रा मैम है, जो कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन से हैं। और मैम अब जानना चाहेंगे कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं या जो स्टूडेंट्स छात्राएं होती हैं, वो सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास वर्क बहुत होता है, उसके बारे में जरा बताएं।
1: बिल्कुल कर सकती हैं। कामकाजी महिलाएं आप हैं, हम हैं, और छात्राएं भी हम लोग रहे हैं, और हम लोग बचपन जहां आपने 18 क्रॉस किया आप रक्तदान के लिए योग्य हो जाती हैं। तो आप देखिए, अगर आपने जिंदगी भर रक्तदान किया है 3-3 महीना या 4-4 महीने में, तो 1 साल में आप 3 बार रक्तदान कर सकती हैं, और आप समझिए कि बिल्कुल ही स्वस्थ जिंदगी जिएंगी, क्योंकि इसके मतलब आपका हीमोग्लोबिन 12.5% के ऊपर ही रहेगा, जो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। आपको कोई बीमारी नहीं है और आप हर वक्त सजग रहती हैं अपना पूरा 4-4 महीने में पूरा चिकित्सीय परीक्षण कराने के लिए। तो उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है जो छात्राएं और कामकाजी महिला रेगुलरली, और टाइम भी अगर देखें, टाइम मुश्किल से 1 घंटा पूरे 4 महीने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है निकालना।
0: बिल्कुल सही बात है। और ये जब नेक काम कोई हम करते हैं, कोई सेवा भावना से किया गया काम, उसके लिए समय निकालना अपने आप में समय निकल आता है। अच्छा मैम, ये बताइए, जो पहली बार अगर महिलाएं रक्तदान कर रही हैं, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: पहली बार रक्तदान करने की महिलाओं को अपने मन से डर निकाल देना चाहिए, क्योंकि शालिनी जी हमने देखा है कि डर और एक जो फीलिंग होती है कि मुझे रक्तदान करने के बाद कमजोरी आ जाएगी, वो आपके स्वास्थ्य के ऊपर हो जाता है। तो आप सुनते हैं ना, इनको चक्कर आ गया देख के, वो गिर गई, वो इसलिए क्योंकि मन में डर है कि मेरे अंदर का खून निकला जा रहा है, क्योंकि पहली बार हमने रक्तदान कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि क्या होगा, हमारे मन में बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी मिथ्या बातें हैं। इसका एग्जांपल बताती हूँ कि जब छात्राएं हमारे यहाँ रक्तदान करने आई, तो जो छात्राएं रक्तदान कर रही थी तो बिल्कुल ठीक थी, उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। और बेहोश कौन हुई जी? वो छात्राएं जो दूर में से देख रही थी रक्तदान होते हुए, वो डर के मारे बेहोश हो गई। तो देखिए, कहते हैं डर के आगे ही जीत है, पहला कदम बढ़ाइए। जिस दिन आप 1 रक्तदान कर लेंगे, आपके मन से रक्तदान का डर हर वक्त के लिए हट जाएगा।
0: मैम, आप तो कई सारी चीजें देखती होंगी आपके साथ, जो अभी एक स्टोरी बताई छोटी सी, कैसे हम अपने परिवार और हमारे समाज के महिलाओं को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं? और ये बात हमारे स्टूडियो से, हमारे एफएम रेनबो से जाएगी, तो तमाम सारे श्रोता सुन रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा।
1: बहुत जरूरी काम है, क्योंकि हम बहुत कम महिलाएं हैं जो आती हैं। अगर हमारे पास 100 रक्तदाता आते हैं, हमने सोचा ऐसा क्यों? अगर हम महिलाओं के स्कूल में जाते हैं तब भी डरती हैं, मन में जैसे कहते हैं साइकोलॉजिकल डर है, ये कहीं ना कहीं ये समाज ने एक कमजोरी का एहसास महिलाओं को कराया है कि भाई तुम कमजोर हो, ऐसा कहीं नहीं है। वहीं में जो एनसीसी की महिलाएं होती हैं, जो एनएसएस में काम करती हैं, वो आराम से रक्तदान करती हैं, फिट होती हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता, वो भी तो एक समाज का हिस्सा है, वो भी तो एक महिलाएं हैं। तो जो समाज ने उनके अंदर डर बैठा दिया है कि तुम कमजोर हो, तुम रक्तदान नहीं कर सकती, उससे वो उनके स्वास्थ्य के साथ स्वयं ही खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं पैदा होता कि मुझे रक्तदान करना है, मुझे स्वस्थ रहना है। और हमारा काम है कि हर महिलाओं को प्रोत्साहित करें कि वो ताकतवर हैं, उनके अंदर मानसिक स्टेबिलिटी है, उनके अंदर कोई भ्रम नहीं है, और उनकी हिम्मत बनाए कि जाके रक्तदान करें। घर में काम करने वाली, एक चूल्हा बर्तन करने वाली, बाहर काम करने वाली महिलाएं, सब में से कोई कमजोर ना हो, और सभी रक्तदान के लिए अपने आगे आए और समाज को दिखा दें कि हम भी आपके साथ कंधे से कंधा चला के, और स्वस्थ रहने का हक हमें भी है।
0: बिल्कुल सही बात कही मैम आपने। और मैम, आप तो तमाम सारी चीजें सुनती होंगी, आपके पास लोग आते होंगे, महिलाओं में रक्तदान को लेकर और भी कई सारे मिथक होंगे कि नहीं करना चाहिए, तो सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है आपको?
1: रक्तदान में महिलाओं को बस ये कहते हैं कि हमें ब्लड को देखने से डर लगता है, हमें सुई से डर लगता है, जो बहुत सारी लड़कियां, यंग लड़कियां कहती हैं। मैंने बार बार बता दिया आपको, सबको एक छोटी सी चींटी काटनी होती है, वो तो आपको ऐसे भी काट चुकी होती है, आपको पता ही नहीं चलता। एक बार जब आप रक्तदान कर देंगे, जो वो डर अपने आप निकलेगा, जो भय निकलेगा कि मुझे, मेरा क्या होगा, मुझे कमजोरी आ जाएगी, नहीं। अगर आप रक्तदान करने के योग्य हैं, तो आपको कभी कोई कमजोरी नहीं आएगी, आप ज्यादा सुरती, ज्यादा ऊर्जावान होंगी, और आप ज्यादा अच्छी तरह से काम कर पाएंगी। इसलिए एक बार रक्तदान करके जरूर दें।

0: मैम, अब हमारी महिलाएं एकदम जागरूक हो चुकी हैं और रक्तदान करने के लिए एकदम प्रेरित हैं। कब, कैसे, कहाँ जाना है ये सोच रही हैं। तो हम बता दें, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट में आप जाएं और आप कभी भी किसी भी समय रक्तदान कर सकती हैं। मैम, अब बताइए, जो महिलाएं रेडी हैं रक्तदान करने के लिए, उन महिलाओं का खान पान और जीवन शैली, कहते हैं ना लाइफ स्टाइल, के लिए क्या ध्यान रखना है उन्हें?
1: महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि अपने खाने में जो हरी सब्जियों का सेवन करें, अगर वो नॉनवेज नहीं खाती, मांसाहारी नहीं, तो शाकाहारी में खूब हरी सब्जियां खाएं, मांसाहारी भी हरी सब्जियां खाएं, जिससे कि उनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रचुर रहे, उनके अंदर जो उनका GIT एंड कोई प्रॉब्लम ना हो, स्ट्रेस ना लें जिससे ब्लड प्रेशर ना रहे, मीठा कम करें जिससे डायबिटीज ना रहे। तो अगर इन सब चीजों का पालन करेंगी तो उनका वो किसी पुरुष से कम नहीं है, उन वो रक्तदान करने में सदैव सक्षम होंगी। और अपने खान पान के लिए और अपने जो खाना दूसरों को खिलाती हैं, साथ में अपने को भी खाना और अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाना उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी।
0: अच्छा मैम, एक चीज आपने ये कहा कि जब महिलाएं हर 3rd-4th महीने पर जब रक्तदान करती हैं तो अपनी नियमित जांच करा लेती हैं, तो ये जो नियमित जांच कराना है ना, महिलाओं को कैसे सुरक्षित रक्तदान करने में मदद करता है?
1: जो नियमित स्वास्थ्य जांच महिलाओं को रक्तदान में बहुत मदद करता है। जैसे मैंने बताया कि उन्हें पता हीमोग्लोबिन कम है, उनको रियलाइजेशन ही नहीं होता है कि हम कम अनीमिया है हमें। वो तो जब आप रक्तदान करने जाते हैं, आपकी जांच होती है, एक परीक्षण, पूरी परीक्षण, निशुल्क परीक्षण होता है, तब आप समझ में आते हैं कि मुझे ये बीमारियां हैं और मुझे ये ठीक करनी है। क्योंकि कहते हैं कि अज्ञानता की वजह से आप अपने स्वास्थ्य को जो नुकसान कर रहे हैं, वो रक्तदान की वजह से आप सजग हो जाते हैं और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कार्य करने लगते हैं।
0: देखा दोस्तों, कई सारे फायदे हैं और बहुत अच्छी जानकारी प्रोफेसर तुलिका चंद्रा मैम से हमें मिल रही है। और अब भी हम जानेंगे मैम से एक प्यारा सा संदेश, लेकिन इस प्यारे से गाने के बाद सुनिए और एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों 12:53 का वक्त हो चला है और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी प्रोग्राम शत्रुपा को करना होगा यहीं पर वाइंड अप। लेकिन इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले आज के प्रोग्राम से रिलेटेड महिलाओं के लिए खास संदेश प्रोफेसर तुलिका चंद्रा मैम की तरफ से।
1: शालिनी जी, आप भी महिलाएं और मैं भी महिला हूं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें, आपने बहुत सही बात की कि एक संदेश जाना चाहिए हम सबका, आपका मिलके महिलाओं को, कि महिलाएं जो हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, रक्तदान करने आइए, कर पाएं या ना कर पाएं, अगर कर पाती हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, सजग हैं, आप किसी से कम नहीं हैं, और अगर नहीं भी कर पाती हैं तो कारण जानिए और उसके ऊपर ओवरकम करिए, क्योंकि उसके लड़ने की कोशिश करिए और आगे इतनी स्वस्थ एंड सजग हो जाइए कि स्वैच्छिक रक्तदान में एक समय ऐसा है जब महिलाएं जब आधी आबादी हैं तो आधे लोग रक्तदान करने वाले 2-3% नहीं 50% महिलाएं हों, और तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा।
0: बहुत बढ़िया बात। और अब मैम होने वाला है, देखिएगा आपका प्रतिशत बढ़ेगा क्योंकि हमारे FM रेनबो के जरिए तमाम सारी महिलाएं सुन रही हैं और वो जरूर आएंगी कहीं ना कहीं कभी ना कभी और अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगी। और दोस्तों हेल्थ कैसे अच्छी होगी, योग करके, और योग के लिए आपको समय निकालना है। बहुत सारे आसन होते हैं, उसमें से आपको शुरुआत करनी है धीरे धीरे धीरे करके और एक दिन आप पक्का योग के मास्टर भी बन जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि एक महिला जब घर पर योग करना शुरू करेगी तो उसे देखकर बच्चे करेंगे और बुजुर्गों को भी आपको कराने हैं, घर के जो वृद्ध जन हैं उनको, उनका भी खास ख्याल रखना है। क्योंकि जब, पता है, जब हड्डियों के दर्द के लिए, पीठ के दर्द के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करिए, और अब क्या कहते हैं, योग करिए। जी हाँ, आपको जब समय मिले, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम दोपहर में भी कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं, मॉर्निंग और इवनिंग का जो सही समय है आपके लिए, कैसे क्या करना है, खाना खाया है तो क्या करना है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। और 21 जून को करने वाले हैं ना योग, जी बिल्कुल रेडी हो जाइए। और अब प्रोग्राम शत्रुपा को यहीं पर करते हैं वाइंड अप इस प्यारे से ट्रैक के बाद, लेकिन शालिनी रहेगी आपके साथ अभी नेक्स्ट प्रोग्राम ओ छुपे तेरी बात में। आज क्या होने वाला है खास, ये तो पता चलेगा उसी प्रोग्राम में।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। वित्त मंत्री ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवंबर से शुरू होगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के बैठक के तीसरे दिन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और लगभग 90% निर्माण कार्य पूरा कर ट्रस्ट को हैंडओवर किया जा चुका है। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक अपना कार्य पूर्ण कर वापस चली जाएंगी। इसके बाद परिसर के संचालन और प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट के पास होगी। बैठक में रामकथा संग्रहालय को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि वर्तमान गति से कार्य चलता रहा तो इस वर्ष दिसंबर तक श्रद्धालुओं के लिए संग्रहालय भी खोल दिया जाएगा। वाराणसी में नमो घाट पर आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके

पर आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, दयालु व लघु एवं सूक्ष्म उद्योग राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री समेत सैकड़ों की संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने योग प्रोटोकॉल के तहत योग किया। आयुष मंत्री ने योग के स्वस्थ जीवन, मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच का आधार बताते हुए सभी नागरिकों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत जैसे कार्यक्रमों ने नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुलभ बनाई हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इन उपायों से मध्यम वर्ग सशक्त बनकर देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान दे रहा है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

1:04 हो चले हैं। प्रोग्राम ओठों पे तेरी बात की हो चुकी है शुरुआत, और आज हम लेकर आए हैं आपकी ही आवाज को कैद करके, जी हाँ, आप तक ही पहुंचाएंगे, क्योंकि आज है सोमवार। और आप भी हमें ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास लोगों की बातें हैं आप तक पहुंचानी है। और क्या वो बात है कि आपकी खुशी किस चीज में है, इस बात के लिए आपको हमें मेल करना है, और लोगों की बात भी आप तक पहुंचेगी। अभी सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक।

ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। गौतम बुद्ध नगर के जेवर वाक़े नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से कॉमर्शियल परवाज खिदमात आज से शुरू हो गईं। पहले मरहले में 1.2 करोड़ मुसाफिरों की कुव्वत वाला ये एयरपोर्ट मुस्तकबिल में 22.5 करोड़ मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। आखिरी मरहले में 5 रनवे होंगे जो इसे दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल करेंगे। मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और आसपास की रियासतों के लिए ये एविएशन गेट बनेगा। इंडिगो मरहलेवार तरीके से लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 16 से ज़्यादा शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसके साथ दीगर उड़ान कंपनियां भी अपनी खिदमात फराहम करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले मरहले का इफ्तिताह 28 मार्च 2026 को किया था।

0: इस हवाई अड्डे की बुनियाद भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को रखी थी। वज़ीराला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 226 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीराला ने रियासत के न्यूट्रिशन मिशन के दूसरे मरहले का भी आगाज़ किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश एक बीमार रियासत से मुल्क की तरक्की के इंजन में तब्दील हो गया है।
1: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही है और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
0: वज़ीराला ने कल गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ डिवीजनों में महकमा तामीरात आमा के काम का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका ओहदेदारान को हिदायत दी कि तमाम तामीराती कामों में तेजी लाई जाए और उन्हें मेयार के साथ वक्त पर मुकम्मल किया जाए। वज़ीराला ने कल शाम गोरखपुर मंदिर के मीटिंग हॉल में महाराणा प्रताप एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को जदीद मजामीन में महारत से आरास्ता करने और किसानों को खुद इन्हिसार बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल आगरा के शमसाबाद में महाराणा प्रताप के 15 फुट ऊंचे मुजस्मे की नकाब कुशाई की। महाराणा प्रताप की बहादुरी, कुर्बानी और जद्दोजहद को याद करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 बरसों में हिंदुस्तान की आलमी शिनाख्त बदल गई है।
2: आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहनों भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरसों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों के तहत नुमाया तरक्की की है। इस सिलसिले की मुनासबत से ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ तरक्की और अवामी बहबूद के 12 साल के उनवान से एक खसूसी सीरीज़ नशर कर रहा है। आज हम 2047 तक भारत के एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के हदफ को हासिल करने के लिए जदीद ढांचे की तामीर के लिए हुकूमत की कोशिशों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं।
3: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है। बड़ा सुधार हुआ है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इसे NTA की वेबसाइट neet.nta। साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: सफर की हमारी यूं शुरुआत होती है, सुबह 6 बजे पुष्पांजलि से पहली मुलाकात होती है, दिन भर का समय कैसे बीत जाता है, रेनबो अपना हर रंग मानो बिखेरता जाता है,
6: रंग दे तुम है गेरुआ।
5: रात में तब सुकून आता है जब सदाबहार गीत कोई हमारे कानों में गुनगुनाता है। मन क्यों?

सारी जानकारी मनोरंजन के संग सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर। सुनना ना भूलें सुबह 6 से रात 12 बजे तक।

0: 1:22 हो चले हैं और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम ओठों पे तेरी बात की। भाई प्रोग्राम तो शुरू हो चुका था, ढेर सारे ईमेल्स भी आ चुके हैं और तो क्या किया जाए बताओ, अक्कड़ बक्कड़ करें, कौन सा पहले लिया जाए। नहीं, सबसे पहले हम जिन लोगों की आवाज लेकर आए हैं उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं, तो सुनिए इनकी खुशी किस बात में है।
1: हेलो, मैं अभिजीत, मैं लखनऊ का निवासी हूँ और मुझे जैसे पढ़ के जब थोड़ी बहुत थकान होती है तो अपने कमरे पे जाके सोना और फिर शाम में थोड़ा बहुत ग्राउंड पे टाइम स्पेंड करना ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो सके, वो सबसे अच्छा लगता है। और दोस्तों के साथ भी घूमना फिरना वो तो चलता ही रहता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है।
0: और शिव पूजन लाल जी का मेल आ चुका है लखीमपुर खीरी से और इनका कहना है कि मेरी खुशी तो मेरे परिवार में है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊं लिखाऊं काबिल बनाऊं और परिवार को मैनेज करते हुए मस्ती के साथ जिंदगी बीते, इन लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। क्या बात है शिव पूजन जी, बहुत अच्छी बात लिखी है आपने। और ये मेल एक और आ चुका है रायबरेली से, पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, अखिलेश, नन्हू, बबलू, पप्पू, नीरज, मनीष, मधु की तरफ से है और हमारी खुशी सबसे ज्यादा रेडियो सुनने में है, रेडियो के बिना हम नहीं रह सकते। थैंक यू, थैंक यू। और अब सुनिए प्यारा से ट्रैक।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

आपको खुशी किस बात में ज्यादा होती है, इसके बारे में हमें मेल करना है। कई सारे लोगों का हमारे पास में मेल आया है कि आज का मुद्दा नहीं सुन पाए। भाई मुद्दा नहीं है, ये तो खुशी की बात है कि आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि आपको खुशी किस बात में सबसे ज्यादा मिलती है। और देखिए मेल आया है विनीत कुमार जी का, और इन्होंने कहाँ से लिखा है हमें, सीतापुर से ये हमें लिखकर भेज रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि हम लोग क्या खाते हैं जो इतना मीठा बोलते हैं। खाने का तो नहीं पता है विनीत जी, लेकिन आपका जो प्यार है उसका एहसास जरूर करते हैं और उसी एहसास से हम बात हो रही है। अगर आप उसका भी मेल करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। और सुल्तान रजा जी का मेल आ चुका है, इन्होंने बरेली से कुतुब खाना सब्जी मंडी से मेल किया है और इनके साथ में बहुत सारे लोगों के नाम हैं, रजा, जिशान, अफजाल, मोहसिन, सादिक, इकबाल। और मम्मी, इनका कहना है कि इन्हें सबसे ज्यादा तब खुशी मिलती है जब इनके सामने इनकी मम्मी पापा रहते हैं और आते हैं। सही बात है, माँ पापा से बढ़कर खुशी क्या है। हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, यही हमारी दुआ है। और मेल हमारे बीच में आ चुका है मोहम्मद आसिफ, आपको बता दिया हमने कि हमारा आज का मुद्दा क्या है। और नाजिम उस्मानी जी, आप हमें सुन रहे हैं तो हमसे जुड़िए और हमारे प्रोग्राम में जो बात हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ फरमाइए। और पिंकू सोनी जी का मेल आया है टिकैत नगर बाराबंकी से, आप हमें सुन रहे हैं तो भाई सुन रहे हैं तो हमें एक बढ़िया से मेल करिए ना कि आपकी खुशी किस बात में है। और

0: सुधाकर जाधव जी का मराठवाड़ा से मेल आया है और ये योग के लिए कह रहे हैं, भाई व्यायाम बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, लेकिन इस प्रोग्राम में उससे ज्यादा जरूरी है जो हम बात कह रहे हैं उससे आप जुड़ें और बताएं आपकी खुशी किस बात में है। और आसिफ जी का मेल आ चुका है, इन्होंने लिखा है कि मेरी खुशी दूसरों की खुशी देख कर आती है। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, तेलंगाना से आप हमारे साथ जुड़े हैं। और रामेश्वर जी का भी मेल आया हुआ है, इन्होंने मुंगसापुर कानपुर देहात से भेजा है, उमा कांति कमलेश निशा प्रज्ञा प्रतिमा वेद बाबू के साथ में, और आपने लिखा है कि अच्छा आपने हमारे प्रोग्राम का जो विषय है उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। रामेश्वर जी आप जरा बताइए आपकी खुशी किस बात में है, और अब इनकी भी सुन लेते हैं कि इनकी सबकी खुशी किस बात में है।
1: मेरा नाम अमित सिंह लुधियाल है, मैं नैनीताल का निवासी हूँ। आपने जो सवाल पूछा है कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है, तो वो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अब पूरे दिन हम लोग अपना मतलब काम वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, लाइब्रेरी या रीडिंग रूम में पढ़ने के लिए आ जाते हैं, तो उस सबके बीच में जो समय निकाल के जो अपने दोस्तों के साथ यहाँ शाम को बैठ के साथ बैठ के चाय पीते हैं, हंसी ठिठोली होती है, जो अपनी बातें होती हैं, सबसे बढ़िया समय दिन का यही रहता है। इसके बाद तो आगे पीछे फिर सब हर चीज़ एक फॉर्मेलिटी की तरह रहती है कि हाँ उठना है, जाना है, बैठना है, पढ़ने जाना है, वाकई जो काम जो मतलब जिसमें मन से रहता है, वाकई मज़ा आता है, वो ये वाला काम रहता है कि चार लोग बैठ के 15-20-25 मिनट आधा घंटा बात करते हैं आपस में।
2: नमस्कार, मैं दुर्गेश शुक्ला, मैं यहीं लखनऊ का निवासी हूँ। मैं लगभग मतलब व्यस्तता में जब परेशान रहता हूँ तो मतलब यहाँ से थोड़ा दूर जाना, ट्रैवलिंग करना और दोस्तों के साथ पैदल चलते रहना, 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, फिर वहाँ चाय ढूंढ करके पीना, ये सब बहुत मतलब मन को खुशी और प्रसन्नता देता है। धन्यवाद।
0: सबके अपने मन की बात, किसी की खुशी हंसी ठिठोली में है, किसी की खुशी किसी के साथ में है, किसी की खुशी मम्मी पापा में है, तो किसी की खुशी उसके परिवार में है। तो बता डालिए आपकी खुशी कहां पर है और हमें मेल कर दीजिए fmakashwani@gmail.com पर और जुड़ जाइए FM रेनबो के साथ। शालिनी है आपके साथ और अब सुनते हैं ये प्यारा से ट्रैक और उसके बाद होंगी और भी बातें।

0: दोस्तों बताइए ना कि आपकी खुशी किस बात में है। और ये बाबू अंसारी जी का भी मेल आया है, देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से है और ये कहना चाहते हैं कि मुझे अपना काम करने में बहुत खुशी मिलती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं भाई, ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक में करंट कभी भी लग सकती है। अच्छा, आपको कभी प्यार की करंट लगी है कि नहीं, ये जरूर बताइएगा। किसी और प्रोग्राम में अभी इस बात की बात नहीं कर रहे हैं। और सतीश अनेजा जी का विमला के साथ में चंडीगढ़ सिटी से मेल आ चुका है और इन्होंने बहुत अच्छी ऐसा मेल लिखा है। हमारी खुशी मोहब्बतें बांटने और मोहब्बतें बटोरने में होती है, बहुत सुकून मिलता है। और हमारा परमेश्वर भी कहता है कि सबको प्यार करो, आपकी दुख तकलीफ के लिए मैं बैठा हूं। और हमें जब भी कोई दोस्त रिश्तेदार या आकाशवाणी से मिलने आता है तो हमें बहुत आनंद आता है। मतलब आकाशवाणी से मिलने आता है, ये बात कुछ जमी नहीं, रूह तक महक जाती है। परमात्मा सबको खुश रखे, बिल्कुल सबको खुश रखे। और आपकी जो मोहब्बत वाली बात है ना, एकदम दिल को छू गई है। और किसका मेल है, बसंत कुमार जी का भी आ चुका है मेल, लेकिन हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है बसंत जी। और किसका है मेल, ये आ चुका है, खुश रहने का सबसे आसान तरीका जो मेरे पास है, बुजुर्गों के पास बैठना, बेजुबानों को रोटी खिलाना, बच्चों के साथ खेलना, झील के किनारे बैठकर ठंडी हवा लेना। गेस करिए कौन हो सकता है भाई, ये मोनू सेठ जी हैं। और किसका मेल है, आलोक साहू जी का मेल, आलोक साहू जी का मेल आ चुका है और रायबरेली ऊंचाहार से ये मेल कर रहे हैं। और इनका कहना है कि मुझे तब खुशी मिलती है जब मेरा मेल शामिल हो जाता है, खुशी की कोई वजह नहीं होती है, आप चाहें तो खुश ऐसे भी रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो बेवजह में भी वजह खोज ले खुश रहने की, वही तो असली खुशी है आलोक जी। और अब इनकी भी सुन लेते हैं कि इनका क्या कहना है।
1: हेलो एवरीवन, आई एम गार्गी वाजने एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम आगरा, बट राइट नाउ

0: आई एम लिविंग इन लखनऊ सिंस पास्ट 5 years. एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है किताबें पढ़ने से, नॉवेल्स पढ़ने से. मतलब वो एक टाइम है पूरे दिन का, मतलब जानबूझकर वो एक टाइम निकालती हूँ नॉवेल्स पढ़ने के लिए, अपने कितना भी बिजी शेड्यूल हो, क्योंकि मुझे उससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है. क्योंकि उससे मुझे ये समझ आता है कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, सिर्फ दूसरों के लिए ही मैं कुछ सारी चीज़ें नहीं कर रही हूँ. और एक चीज़ और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, वो है वर्कआउट करने से. जब मैं अपनी बॉडी को मूव करती हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, तो मेरे पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ और जब मैं वर्कआउट करती हूँ. मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ दूसरों के लिए सारा काम कर रही हूँ, और दूसरों के साथ भी मुझे अच्छा ही लगता है, बट अपने साथ सबसे ज़्यादा मुझे टाइम इंजॉयबल लगता है.
1: So hello everyone, my name is Dr. Khush Vaishne. I am currently living in Lucknow and I belong to Aligarh. And as the question asked by the Deki ki aapko kis cheez se sabse zyada khushi milti hai, I cannot name a single thing, but I have collectively as a that something which gives me more closer to my goal. जो मुझे किसी भी चीज़, मतलब अपने गोल के पास बहुत ज़्यादा करीब ला सके. जैसे कि मुझे अपने बॉडी पे काम करना, मुझे खेलना बहुत पसंद है, एंड आई माई गोल इन द लाइफ इज़ टू बिकम अ न्यूरोसर्जन. और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ, एंड दीज थिंग्स विच जो चीज़ मुझे मेरे गोल के पास ज़्यादा क्लोज लेके जाती है, आई एम मोर हैप्पी टू टेक इट.
2: मेरा नाम ओम सिंह है, मैं गोंडा का रहने वाला हूँ, और मैं अभी यहाँ लखनऊ में रहता हूँ. तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है, क्या ऐसा क्या है जो करके अच्छा लगता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कभी हम लोगों को एक मूवी देख ली, या कभी जो है अपने आप से खाना बनाकर खाना हुआ तो 3-4 लोग मिलकर खाना बनाए, तो वो सबसे अच्छा लगता है. जैसे कि पूरे दिन बिजी शेड्यूल में ये करने में अच्छा लगता है.
3: हेलो, मेरा नाम सागरिका है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ. मुझे बेसिकली दिन में लाइब्रेरी के एसी में बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, और शाम में ग्राउंड जाके थोड़ी एक्सरसाइज करना.
4: सुना ना दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज करना भी एक खुशी के बराबर होती है, और एक्सरसाइज करनी चाहिए. देखिए, योग दिवस भी 21 जून को मनाया जा रहा है, और हम सबसे बस एक ही गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई योग को अपने लाइफ में अपनाएं, और सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले योग जरूर करें. और सुधाकर जाधव जी का भी मेल दोबारा से आ चुका है. इन्होंने लिखा है कि हमारी खुशी है कि दुखी लोगों को मदद करने में, पशु पक्षियों को अनाज पानी देने में इनको बड़ा आनंद आता है. सुधाकर के साथ में प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद, सानवी, सभी का नाम आया हुआ है. और ये राधेश्याम जी का भी मेल कासगंज से आया हुआ है, और इन्होंने लिखा है कि इनको सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब घर पर सब लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं. क्या बात है, खुशी तो परिवार की खुशी तो इसी बात में है कि सभी लोग एक साथ रहें और एक साथ खाएं पिएं और मस्ती करें. और ये तालिबान सारी जी का भी मेल आ चुका है, और इन्होंने लिखा है कि अच्छा, इनका मन पसंदीदा जब खाना बनता है उससे इन्हें बहुत खुशी मिलती है, और इन्होंने उसकी फोटो भी भेजी है. भाई मुंह में पानी आ गए हैं, ये फरे है ना, ये मेरे हमें भी बहुत पसंद है. और क्या ही कर सकते हैं भाई, आप खाइए और आप खुश रहिए, मस्त रहिए. और ये मेल आ चुका है वकील अहमद जी का सीतापुर से. इन्होंने लिखा है कि हम आपकी बाग, जब हम सब आम की बाग में होते हैं और कोई हंसी वाली बात कहता है तो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है. और इसके साथ ही अब इस प्यारे से ट्रैक को करते हैं, पहुंचाते हैं आप तक, और इसके बाद लेंगे और भी ढेर सारी बातें.

1:54 हो चले हैं और इस वक्त पर बस यही कहना होता है कि इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय हो चला है। और चलते चलते दो तीन लोगों के और भी मेल आए हैं। रायबरेली उचाहार से आलोक साहू जी का कहना है कि इन्हें कुछ कुछ खाने की चीजें जब होती तब भी इन्हें खुशी मिलती है, जैसे समोसे, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठा पकौड़े, मिठाइयाँ और भी बहुत सारे पकवान है। और किसका, नरेंद्र सुधाकर का मेल आया है। नरेंद्र सुथार है, मनोज है, हिमांशु और पवन है, सभी लोग हनुमानगढ़ से, राजस्थान से इन्होंने मेल किया है। और इनका लिखना है कि इन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब आपके प्रोग्राम रेनबो लखनऊ मैं सुनता हूँ और इनका मेल शामिल हो जाता है। तो भाई आपको खुशी मिल गई ना, और सुनते सुनते ये फर्नीचर का भी काम करते हैं तो भी इन्हें और खुशी मिलती है। वारिस अली जी का मेल आ चुका है और ये हमें ऐशबाग लखनऊ से भेजते हैं मेल। और इनका कहना है कि जब कोई मेरे सामने एफएम के सभी कार्यक्रम और एंकर्स की तारीफ करता है तो मुझे वास्तविक खुशी मिलती है। और कई लोगों का कहना है कि शालिनी आपकी खुशी कहाँ है, हमारी खुशी आपकी खुशी में, आप खुश तो शालिनी खुश। और इसी के साथ इस प्रोग्राम को करते हैं यहीं पर वाइंड अप। ये प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए सुनिए और इंजॉय कीजिए। 2 बजे से शुरू होगा प्रोग्राम हॉच मेल, जिसमें आपकी मेल्स का हमें इंतजार है। प्यारे से गाने की करिएगा फरमाइश, और एक से ज्यादा नहीं जी। ओके okay.

0: नमस्कार, दोपहर के 2 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं शुरू हो गई हैं। यहां से पहली उड़ान को केंद्रीय उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहली फ्लाइट से इस एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 170 किसानों को लखनऊ भेजा गया। इन किसानों ने लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत भी की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद और अमृतसर के लिए उड़ान शुरू हो गई है, जबकि 1 जुलाई के बाद 16 शहरों के लिए नियमित उड़ानें शुरू होंगी।
1: He holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit set to begin in French city of Evian this evening. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1,100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. Prime Minister Narendra Modi is currently holding talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia. Both the leaders met at the Bratislava Castle for their bilateral engagement. Earlier, Prime Minister Modi was accorded a guard of honour in presence of his Slovak counterpart. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation.

0: opening ceremony will be held at Mumbai's Ravindranatya Mandir in the evening. This year, the competition section comprises 144 films, including 52 international and 92 national entries, representing filmmakers from 13 countries. More from our correspondent.
1: MIFF, the much-awaited biennial film festival for non-feature films, will open with the animated work Good Luck to You All, directed by Caudal Barker, the short fiction Agapito, directed by Arvind Bellarmino and Kayla Daniel Romero, and the documentary Time and Water, directed by Sara Dosa. Master filmmaker David Attenborough will be honored with the screening of his two films under Centenary Tribute. The 19th MIFF will also feature 10 masterclasses and 5 open forum discussions. The festival will confer 18 awards across international and national competition categories. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
0: The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal till tomorrow. The weather agency has issued an orange colour warning for thunder-squall conditions over Rajasthan, East Uttar Pradesh, Odisha and West Madhya Pradesh today. IMD said conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into more parts of Maharashtra, some parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Bihar and South Chhattisgarh during the next 4 to 5 days. India's Wholesale Price Index, WPI-based inflation, accelerated to 9.68% year-on-year in May under the newly released WPI series, compared with 8.26% in April under the old series. The release marks the first major revision of India's wholesale inflation series in over a decade, with the base year updated from 2012 to 2023. Data released by the Ministry of Commerce and Industry showed that the rise in inflation last month was primarily driven by higher prices of mineral oils. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit set to begin in French city of Avignon this evening. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1,100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री

0: श्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र

0: उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियान पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियान, फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
4: जैसा कि हम

का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर पहले चरण में इसकी

0: आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है, जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनिशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है।

राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

उत्तर प्रदेश के प्रथम नैक ए प्लस प्लस मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

0: 107 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: तुमको मुझसे प्यार है।
1: बहुत ही प्यारा सा गाना पसंद किया था भाई। आज सोमवार है और उसी बात बात में प्यार की रजामंदी, ये बड़ा अच्छा बहाना पसंद आया। और आप कहाँ कहाँ से गाने खोज कर लाते हैं पसंद करके और हम आप तक पहुँचा भी देते हैं। देखिए, राजू मेघलानी का मेल आ चुका है दुर्गा कॉलोनी हांसी से बबीता सुभाष योगी और टप्पू बबलू के साथ में। रविन्द्र मोहनदास जी का भी मेल आशा के साथ किशनगंज बिहार से आ चुका है। दीपेश वर्मा का भी मेल आया हुआ है और इन्होंने आज पूनम ज्योति शिवांश के साथ पिपरलोड सरगवा छत्तीसगढ़ से हमें मेल किया है। और न्यू दिल्ली से कमलेश मुकुल सचिन दीपांशु का भी मेल आ चुका है और एक बार नहीं कई कई बार आया है भाई, ऐसा मत करिए बस करिए। और मेल आ चुका है, किसका है ये? हाँ, हम अभी अभी खेत से आ रहे हैं, बहुत तेज धूप है भाई, ध्यान रखिए, पानी पीजिए।

और बहुत सारी जो प्रिकॉशंस हैं सब बताते हैं, और आप खुद समझदार हैं, और आपने लिखा है कि आपके सेलेक्ट किए गाने सुन रहे हैं, मजा आ रहा है। हम आपको बता दें ये हमारे पसंद के एक भी गाने नहीं है, ये आप लोगों में से ही सबकी पसंद है। और मुश्किल होता है ना सबकी पसंद पहुंचा पाना, तो जितने पहुंचते हैं उतनी पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और ये हमें विशेष नितिन और युवराज लोधी जी मलिहाबाद से हमें मेल कर रहे हैं, और मैंगो भाई बना के भेजा है आपने। और मेल आया है ओम, ये नारायण गायकवाड़ दयानंद ओमकार और साई जी का नादेंड महाराष्ट्र से इन्होंने हमें मेल किया हुआ है। साहिब आलम जी का भी मेल आ गया है समीर अहमद के साथ मुरादाबादी, या अच्छा ये ऐशबाग लखनऊ से हमें मेल कर रहे हैं। हीरामणि वर्मा का मेल, पुष्पेंद्र मणि नोखेलाल के साथ में पारस मणि भी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से मेल कर रहे हैं। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

कितने प्यार से भेजा गया है नजराना, और देखिए उसी नजराने से वापस ही मेल भी आ चुका है, बाबू अंसारी जी का है और ये बाराबंकी से हमें मेल कर रहे हैं और कई लोगों के नाम भी इन्होंने लिखे हैं, कुलदीप, महेंद्र, फैज और गौस मोहम्मद अंसारी का नाम लिखा है, और उत्तम कुमार भगत जी का भी मेल आ चुका है। बिल्कुल मेल शामिल करेंगे, लेकिन आप देखिए ना सभी के एक के बाद एक मेल आते जाते हैं और जैसे ही समय मिलता है मेल जरूर शामिल किया जाता है। और इन्होंने हमें कहां से मेल किया है, ये झारखंड से हमें मेल कर रहे हैं, श्वेता भगत, केसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम और मुन्ना और गुड्डी के साथ में ये मेल कर रहे हैं। अजमत अली जी का भी मेल आ चुका है और सुल्तानपुर जिला सीतापुर से ये हमें मेल कर रहे हैं, और मेल असम से आया हुआ है, हितेंद्र दास जी का मेल है। भाई थैंक यू मेल करने के लिए। और संजय डिंगिया जी का भी मेल नमन अपार के साथ बागपत उत्तर प्रदेश से आ चुका है, तेज बहादुर यादव, ममता और रोनीत और वामिका के साथ हमें मेल कर रहे हैं, और रायबरेली इन्होंने हमें वीना चैतन्य के साथ में बिहारी का नजमा और रियाज रिफाकत हुसैन के साथ उत्तराखंड से हमें मेल कर रहे हैं, रामराज जी का भी मेल आ चुका है, रायबरेली से ये हैं, और शंकर भैया, पप्पू, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका सभी ने मेल किया है एक साथ। विनीत जी का भी मेल सीतापुर से आया हुआ है और बहुत लंबा सा मेल लिखा है और हमने पढ़ लिया है। और दिलीप कुमार सोनी का भागलपुर बिहार से मेल आ चुका है, जाकिर जी का मेल कहाँ से आया है, मुंगिसापुर से इन्होंने हमें मेल किया है, और अब्बासी परिवार का भी मेल आ चुका है, चौखंडी बुलंदशहर से ये हमें मेल कर रहे हैं, शेख मूसा मोहसिन सनावत से मेल कर रहे हैं हमें, और भाई ढेर सारे लोगों ने बिल्कुल मेल कर दिया है दोस्तों। और अब बारी है इस प्यारे ट्रैक की।

दोस्तों 2:54, बिल्कुल किसी का भी मेल गायब नहीं हुआ है और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी, निमित का मेल आ चुका है, सुरेश नांगरंग और आशा सोनाली के साथ सहारनपुर से मेल आया हुआ है। अब्बासी जी आपका पूरा मेल पढ़ा, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत, परवीन, शहनाज, सरफराज, फरीदीन, सुहान, अरजान, अबान के साथ में आपने हमें मेल किया है। और कमलकांत गुप्ता जी पिपरिया से हमें मेल कर रहे हैं, दीपा रिमझिम के साथ, समझी लमापारा से मुकेश, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकू के साथ में मेल किया है। बसंत कुमार सिन्हा आपका भी मेल आ गया है और दमदम एयरपोर्ट से आप हमें कलकत्ता से मेल कर रहे हैं। दिलावर खान जी का भी मेल आया हुआ है, हसीना, बानो, एल्जा, नयाब, लड्डू के साथ में, और सीताराम कांगरा का, एकता कॉलोनी रोहतक से निखिल, बबीता, तन्वी बोट के साथ में मेल कर रहे हैं। मोहसिन हासमी का मेल है, ताज मोहम्मद जी का भी मेल आया, मुकेश कश्यप है, सीताराम कांगरा, सुनील पाठक का भी मेल आया हुआ है दोस्तों, और मोहम्मद सादाब खान है, राजेंद्र कुमार और रामराज, जावेद अख्तर का आजमगढ़ से, और संजय डिगिया, मुकेश कश्यप, सभी के मेल दोस्तों शामिल किए जा चुके हैं। टीटी मरहोत्रा का, दारा सिंह का, अब्दुल गफ्फार है, अशोक कुमार है, नरेंद्र सुथार और कोमल तिवारी और शिव प्रकाश, मेहर अरोरा, विट्टू गगनेजा और सफरुद्दीन अंसारी, अहमद भाई फूलवाले और सरिता अभिजीत का भी मेल है, और दुर्गा साहू का मेल है, भागवत वर्मा है, बमलेश पवार है, आर कुमार, शिव पूजन लाल, मशहूर हसन, मोहम्मद सबीर अंसारी, राजेश वर्मा, राधे श्याम शर्मा और सोम दत्त, दीपेश, पंकज शर्मा, तालिब अंसारी, गगनदीप थांदी और सभी के नाम, सुदर्शन साह का भी मेल आया हुआ है और कीर्तिपुरी गोस्वामी जी का मेल है। और इसी के साथ शालिनी इस प्रोग्राम को करती है यहीं पर वाइंड अप। नेक्स्ट प्रोग्राम सतरंगी दुनिया, और इसके अलावा आप 3:30 से 4 बजे तक सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी के द्वारा।

102.2 की फ्रीक्वेंसी पर ये है रेनबो कानपुर एंड म्यूजिक आर प्रोग्राम के साथ आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। मैं यानी आरजे आरती और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से नगमे के साथ।

जी हाँ दोस्तों, दीवाना दीवाना ये जो सॉन्ग आपने सुना, फिलहाल ये सॉन्ग हाल ही में रिलीज फिल्म तेरे इश्क में, जी हाँ इस आपने सुना। एंड दिस सॉन्ग इज कंपोज्ड प्रोड्यूस्ड बाय आर रहमान और उन्हीं का म्यूजिक है। एंड इसी के साथ स्टार्ट हो गया है आज का ये सुरीला सफर जो होने वाला है बेहद खूबसूरत। आज पुराने एहसासों के साथ है नए दौर की धुनों का संगम। जी हाँ, बातें बहुत सारी हैं, कनेक्ट रहेगा हमारे साथ म्यूजिक आर्ट प्रोग्राम में।

0: गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: You are listening 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर प्रोग्राम म्यूजिक आर एंड मैं हूँ आपके साथ आरजी आरती ज्योति। और दोस्तों, जब बात होती है ना एहसासों की, तो जिंदगी के खूबसूरत लम्हे जैसे आंखों के आगे आने लगते हैं। कुछ सपने जो हमने देखे, कुछ हुए पूरे, कुछ अधूरे, कुछ वादे भी हुए। जिंदगी फिलहाल बढ़ती जा रही है रफ्तार से। और ये रफ्तार दोस्तों यूं ही बनी रहती है। फिलहाल कहते हैं ना, जागना भी कबूल है तेरी यादों में रात भर, जागना भी कबूल है तेरी यादों में रात भर, तेरे एहसासों में जो सुकून है वो नींद में कहाँ।

सच में दोस्तों कुछ गीत ऐसे ही होते हैं ना जो दिल की बात बिना कहे ही कह जाते हैं, और जब बात हो एहसासों की तो हम भी आपका साथ यूं ही निभाते हैं। और देखिए ना, ये भी एहसास अलग होते हैं जब हमें गर्व होता है अपने देश की महिलाओं पर। फिलहाल पिछले साल पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय यानी इंडियन वीमेन्स टीम अब T20 वर्ल्ड कप के लिए कदम बढ़ा रही है ना, खुशी की बात। और कल तो भारत और पाकिस्तान की विमेंस टीम का जब हमने देखा मुकाबला तो सच में दिल कहते हैं ना कि बस धड़कने लगा, और ये जो धड़क थी वो बस शांत हुई किसके साथ, जीत के साथ। और इसी तरह से हम सबकी बेस्ट विशेज हैं इंडिया की विमेंस टीम के लिए कि वो बस वो दिन आए और उनके हाथ में हो क्या, अरे भाई वर्ल्ड कप। फिलहाल आ रहा है आपके लिए ये बेहतरीन सा सॉन्ग, सो एंजॉय दिस।

यू आर लिसनिंग ब्यूटीफुल म्यूजिकल प्रोग्राम. जी हाँ, म्यूजिक आ रहा है एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली एंड ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो. तो बस यूं ही नाचते रहिए, गाते रहिए और बने रहिए हमारे साथ. दोस्तों, मैदान चाहे क्रिकेट का हो या किसी और खेल का, जब भारतीय टीम परफॉर्म करती है ना, तो एहसास ही कुछ अलग होता है. और कहते हैं ना कि खेल खेलना तो हर बच्चे का शौक होता है. हालांकि बदलते दौर में ज्यादातर बच्चे टीवी और मोबाइल की दुनिया में खोए रहते हैं, तो ऐसे में जब हम परिवार के साथ टीवी या किसी खेल का आनंद लेते हैं ना, एंटरटेन करते हैं, तो बच्चों को भी अगर साथ में रखें, बच्चों को भी खेलों की दुनिया से रूबरू कराएं, तो मेरे ख्याल से या कहें सभी के लिए खेलों के प्रति जो रुझान है बच्चों का, वो बढ़ने लगता है.

उसे और भी बढ़ाना चाहिए, उन्हें घर पर और घर से बाहर भी खेलने के लिए करना चाहिए प्रेरित। बिकॉज खेल हमें सिखाते हैं टीम वर्क, डेडिकेशन एंड कभी ना हार मानने का जज्बा। और इसी जज्बे के साथ हमारी चाहे विमेंस टीम हो या फीफा वर्ल्ड कप की बात, जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं उनके इसी जज्बे को इस ब्यूटीफुल से सॉन्ग के साथ।

0: गर्ल्स लाइक
1: फिल्म है दिल धड़कने दो फिल्म। ये दोस्तों जून के महीने में ही 5 जून 2015 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जिसमें आपका ये जो फेवरेट सॉन्ग है गर्ल्स लाइक टू स्विंग, जी हाँ ये फिल्म आया गया था जिसे गाया था, जैसे कि मैंने अभी बताया, सुनिधि चौहान ने।
2: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
3: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
2: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
3: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी का।

0: कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर। पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर, मेल मिलाप।
2: दोस्तों, आप सुन रहे प्रोग्राम म्यूजिक आर, मेरे यानी आरजे आरती के साथ, और राज का ये जो प्रोग्राम है ये शुरू हो गया है। जी हाँ, और ब्यूटीफुल से जो सॉन्ग्स हैं वो आप लगातार सुनते जा रहे हैं हमारे साथ। और दोस्तों, ये जो बातें होती हैं ना, ये बस चलती ही रहती हैं। और आज का ये जो म्यूजिक आर प्रोग्राम है ये है पुराने एहसासों के साथ नए दौर के धुनों के संगम पर। और ये जो प्रोग्राम है ये आप बस इसी तरह से एंजॉय करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ रेनबो कानपुर पर 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर। वैसे दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया जो है ना फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंगी हुई है, एंड हर मैच के साथ बढ़ रहा है एक्साइटमेंट एंड फन। और दोस्तों, जो फैंस है ना, जो अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप भी किसी टीम के फैन हैं? यदि हाँ तो दोस्तों चीयर कीजिएगा, मैच का मजा लीजिएगा, बिकॉज 2026 के इस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और इसे इस बार तीन देश पहली बार, यानी एक नहीं दो नहीं तीन, जी हाँ थ्री कंट्रीज इसमें पहली बार, कनाडा, मैक्सिको एंड USA होस्ट कर रहे हैं। तो एंजॉय कीजिएगा इस फीफा वर्ल्ड कप के इस मैचेस को। और ये जो चलने वाला है ना लगातार 11 जून से 29 जुलाई तक, फिलहाल आपके लिए आ रहा है ये बेहतरीन सा सॉन्ग।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक कार। जी हाँ, 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर रेनबो कानपुर पर, और आज मैं हूँ आपके साथ आरजे आरती ज्योति।

जी हाँ दोस्तों, कमाल। तो बस हम ये कह सकते हैं कि जब आप जुड़ते हैं ना हमारे साथ, तो कुछ अलग ही बात हो जाती है, क्योंकि जब आप जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं, दिल से कनेक्ट होते हैं रेनबो कानपुर के साथ। फ्रीक्वेंसी वही होती है 102.2। जी हाँ दोस्तों, 102.2 FM पर चल रहा है प्रोग्राम म्यूजिक आर्ट, जिसमें जुड़े हैं आप हमारे साथ। दिल की गहराइयों से, दिल के एहसासों के साथ। दोस्तों वैसे भी ना, जो चाहे बात खेलों की करें, चाहे अपनी डेली लाइफ की करें, रूटीन की करें, यानी रोमांच एंजॉयमेंट भी जो होते हैं ना, वो एहसासों में बदलाव लाते हैं। तभी तो हम कहते हैं ना कि रेनबो के सारे कलर्स आपके लिए लाते हैं नए एहसास अपने विविध रंगी प्रोग्राम्स के जरिए। फिलहाल दोस्तों, ये बदलता मौसम भी होने लगा है खुशनुमा, प्री मॉनसून की जो रिमझिम बूंदे हैं ना, उन्हीं के साथ। लेकिन इंतजार है हमें, यानी हम सभी को मॉनसून का। तो जी हाँ, मॉनसून जब दस्तक देगा हमारे शहर में, हमारे यूपी में। फिलहाल ब्यूटीफुल ट्रैक का इंतजार तो हो रहा है खत्म, क्योंकि आपके लिए आ रहा है एक बेहतरीन सा सॉन्ग।

जी हाँ दोस्तों, हमारी रौनकें आपसे ही है, और कहते हैं ना, बदलाव ही जिंदगी है, तो क्यों ना इस बदलते मौसम में कुछ अच्छा सोचा जाए, कुछ नया सीखा जाए, कुछ नया ऐड किया जाए। एंड ऐड से मुझे ध्यान आया, जैसे कि योग है, आप योग कर रहे हैं ना, क्योंकि आने वाला है 21 जून। जी हाँ, 21 जून को हम मनाते हैं योगा डे, और सिर्फ उसी दिन के इंतज़ार में बिल्कुल भी नहीं बैठना है। अगर आपने नहीं अभी शुरू किया है, नहीं अपनाया है योग को, तो बस देर किस बात की, आज से ही स्टार्ट कर दें योग को करना। और इसके साथ ही जब आप योग करेंगे, कुछ नया ऐड करेंगे, तो रिश्तों में भी तो ना नई हरियाली आएगी ही आएगी। और जब आएगी रिश्तों में हरियाली, तभी तो जीवन में संगीत का रंग कुछ इस तरह से सुर में गाने ही लगेगा।

तो दोस्तों इसी के साथ म्यूजिक आर प्रोग्राम का यह सुरीला सफर यहीं पर हो रहा है समाप्त। इसी के साथ मुझे यानी आरजी आरती को दीजिए इस खुशनुमा महफिल से इजाजत। आप बस यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यानी रेनबो कानपुर के साथ।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम का एक और अंक लेकर आज आपकी सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं दीपशिखा गुप्ता। और आज हमने एक बार फिर से अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है शहर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर युवराज गुलाटी जी को, जो कि GSVM मेडिकल कॉलेज में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियोज में।
1: धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।
0: डॉक्टर साहब, आज हम आपसे एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहेंगे जिसका जिक्र बहुत ज़्यादा आजकल सुनने में आता है, और वो विषय है AKI यानी कि एक्यूट किडनी इंजरी। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को समझाएं कि एक्यूट किडनी इंजरी क्या है।
1: देखिए, एक्यूट किडनी इंजरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आज से 10 साल पहले ये माना जाता था कि अगर आपको किसी भी कारण से किडनी की बीमारी हुई है जो रिकवर कर गई है, एक्यूट का मतलब अचानक से किडनी की बीमारी होना और ठीक हो जाना, तो आज से 10 साल पहले यह माना जाता था कि कोई भी किडनी की बीमारी अगर आपको ठीक हो गई है, वो रिवर्सिबल है, तो दोबारा कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों के रिसर्च ने यह दिखाया है कि जो हम लोग ये यूज करते थे कि एक्यूट किडनी इंजरी रिवर्सिबल है, वो आगे जाके CKD में कन्वर्ट नहीं होगी, तो ये चीज मिथ्या हो गई है, ये चीज गलत साबित हो रही है। तो जहां भी जितने भी नए नए रिसर्चेस हुई हैं, वो ये बता रहे हैं कि अगर आपको एक बार किडनी की दिक्कत हुई है, किसी भी कारणवश अगर आपका क्रिएटिन बढ़ा है और वो नॉर्मल भी आ गया है, तब भी आपको किडनी की सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि किडनी के फिल्टर्स में डैमेज होता है। और करीब 10% लोग जिनको AKI एक्यूट किडनी इंजरी होती है, वो एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर CKD पे कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको किडनी की बीमारी, एक्यूट किडनी इंजरी किसी भी कारणवश, जैसे इन्फेक्शन या डायरिया या कुछ दवाओं की वजह से, और जो रिकवर कर गई है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, अच्छी बात है, पर हर 6 महीने में एक बार या जैसे आपको डॉक्टरी सलाह दें, अपने क्रिएटिनिन की जांच और यूरिन की जांच कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, जरूर करवाएं। और अगर साथ ही साथ किडनी इंजरी रिकवर नहीं कर रही है, तो उसका कारण ढूंढने का भी प्रयास जरूर करें। तो इसीलिए AKI इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको फॉलो करना जरूरी है, उसको लंबे समय तक देखते रहना जरूरी है।
0: डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि एक्यूट किडनी इंजरी जो है वो CKD यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज में भी परिवर्तित हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, और पिछले एपिसोड में हमने बात भी CKD यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में की थी। तो हम चाहेंगे कि आप सरल शब्दों में समझाएं हमारे श्रोताओं को कि AKI और CKD के बीच में क्या अंतर है।
1: देखिए, बहुत आसान है, नाम में आप समझिए, AKI एक्यूट किडनी इंजरी। इंजरी मतलब चोट लगना, एक्यूट मतलब जो कम समय में है। तो कोई भी किडनी की बीमारी अगर 3 महीने के कम समय में हो रही है, तो उसको AKI एक्यूट किडनी इंजरी बोला जाता है, और मोस्टली ज्यादातर ये बीमारी रिकवर कर जाती है। CKD, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, क्रॉनिक किडनी डिसीज, फर्क क्या है? देखिए, इंजरी और डिसीज, इंजरी मतलब चोट लगना और चोट सही हो जाती है, डिसीज मतलब बीमारी। तो CKD क्रॉनिक किडनी डिसीज जो 3 महीने से ऊपर हो जाए और जो रिकवर ना करे, जो रिवर्सिबल ना हो, जो वापस ना आ पाए, उसको CKD बोला जाता है। तो बीमारी अगर 3 महीने के अंदर अंदर है और रिकवर कर गई है, AKI, बीमारी अगर 3 महीने से ऊपर है और रिकवर नहीं कर रही है, या फिर किडनी में कोई उसने चेंजेस कर दी है,

0: किडनी में स्कारिंग ला दी है, किडनी से प्रोटीन लगातार निकल रहा है, तो उसको हम लोग सीकेडी लेबल करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि AKI यानी कि एक्यूट किडनी इंजरी जनरली हील कर जाती है, यानी कि ठीक हो जाती है, हालांकि बाद में भी ये उभर सकती है। तो हम जानना चाहेंगे कि एक्यूट किडनी इंजरी होने के कुछ कॉमन जो कारण है वो क्या होते हैं?
0: देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण, जो अगर हम सबसे टॉप प्रायोरिटी की बात करें, तो सबसे कॉमन कारण है ड्रग्स एंड टॉक्सिंस। आजकल हमारे यहाँ बिल्कुल बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी पर्चों के, लोगों की आदत है कि वो हेल्थ सप्लीमेंट्स, दर्द की दवाइयाँ, या अलग अलग अपने कोई भी छोटे मोटे सिम्टम्स भी होते हैं, तो वो मेडिकल स्टोर पे जा करके बिना किसी डॉक्टरी सलाह के दवाइयाँ लेने लग जाते हैं, या किसी गूगल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा या यूट्यूब पर पढ़ के कि जी ये ताकत की दवाई है, ये कॉन्स्टिपेशन की दवाई है, ये लीजिए इससे आपको एनर्जी मिलेगी, और लंबे समय तक कोई भी दवा अनसुपरवाइज्ड लेना, क्योंकि उसको सफाई लिवर और किडनी ही करते हैं, ये किडनी की भी दिक्कत कर सकता है और लीवर की भी दिक्कत कर सकता है। तो मोस्ट कॉमन कारण एक्यूट किडनी इंजरी का ड्रग्स और टॉक्सिंस, जो हमारे कभी कभार हमने कोई भी दवा मेडिकल स्टोर से, दर्द की दवा ले ली, बुखार की दवा ले ली, ताकत की दवा ले ली, किसी भी कारणवश की कोई भी दवा अनसुपरवाइज बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें, क्योंकि वो किडनी के लिए बहुत घातक हो सकती है। दूसरे कॉजेस पे अगर आए तो इन्फेक्शन होना, कभी कभी कुछ लोगों को पेशाब के रास्ते कुछ कमजोर होते हैं या यूरिन रुक रहा होता है या पथरी की वजह से भी किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये इन्फेक्शन दूसरा कारण है जो एक्यूट किडनी इंजरी की तरफ चला जाता है। तीसरा, डायरिया। मान लीजिए आपको इतना सीवियर डायरिया हुआ कि आपको डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई, इस पानी की कमी से भी कभी कभार किडनी पे असर आ जाता है। चौथा कारण, कभी कभार आप मान लीजिए कोई मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ किसी और कारणवश, पर उनको इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन के समय एंटीबायोटिक्स चले, ड्रग्स चले, वो किडनी पे असर कर सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण और है, कभी आपका किसी भी कारणवश मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया या ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो गया, तो ब्लीडिंग की वजह से अगर आपका बीपी कम हो जाता है तो वो भी किडनी पे चोट डाल सकता है। और एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कारण, जो हम लोग अब आजकल उसका इंसिडेंस बढ़ते हुए देख रहे हैं, प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाएं आती हैं कि बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो रही है बट उनको किडनी की दिक्कत हो रही है, तो वो AKI जो होता है वो कुछ कभी कभार स्पेसिफिक कारणवश, जो कुछ जेनेटिक कारणों की वजह से भी हो जाता है, उस पर खास ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
1: डॉक्टर साहब, काफी विस्तृत रूप से आपने हमें बताया AKI होने के कुछ प्रमुख कारण। क्योंकि आप आकाशवाणी में आए हैं और गीत संगीत का ये एक गढ़ है, तो आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि एक अपनी पसंद का कोई एक गीत आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। तो कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि कुछ गुनगुना कर ही आप फरमाइश करें।

0: डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत सुनने के बाद एक बार वापस लौट आए अपने स्टूडियो में, जहां बात हो रही है आज शहर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर युवराज गुलाटी जी से, और बातचीत का विषय है एक्यूट किडनी इंजरी। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए हम आपसे चाहेंगे कि आप जीवन शैली से जुड़े कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे सुधार हमें बताएं जिनको अपना कर एक्यूट किडनी इंजरी से बचा जा सके।
1: देखिए, जीवन शैली में सबसे पहले हमें अपने खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो हम लोग ये बोलते हैं कि डाइट में अपने फाइबर्स की मात्रा को ज्यादा बढ़ाएं, डाइट में वीट को कम करें, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारा कैलोरी इंटेक बढ़ा करके हमारे शरीर के सारे अंगों पे लोड डाल सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम करें, अच्छे बायोलॉजिकल वैल्यू के प्रोटीन्स लीजिए, नॉनवेज प्रोटीन हो सके जितना कम करें, मिलेट्स का प्रयोग ज्यादा करें, फाइबर्स का प्रयोग ज्यादा करें, पानी की मात्रा जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा कि 30 से 50 ml प्रति किलो पर डे के हिसाब से अपने आप को एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रखें। ये सब डाइट्स में रखेंगे तो डाइट आपकी वेल मैन्योर्ड डाइट रहेगी। सेकेंड ऑप्शन पे आए तो कोई भी नशे से मुक्ति रखें, शराब, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, ये सब चीजें किडनी लीवर दोनों के लिए हानिकारक है, इनसे निजात पाएं। व्यायाम की बात करें तो आप कम से कम 30 मिनट हफ्ते में 5 दिन कम से कम सैर जरूर करें, और अगर इससे ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक रेगुलर लाइफस्टाइल रखें, अगर आपका बैठने का काम है तो हर एक घंटे के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें, थोड़ा सा वॉक करें, इन सबसे आपके बॉडी की मांसपेशियां अच्छे से चलेंगी, ब्लड संचार आपका अच्छा रहेगा, ताकि सब बीमारियों से आपको निजात मिलेगा। तीसरा, ऑयल का प्रयोग थोड़ा सा कम करें। आजकल लोग ऑयल की बात करते हैं कौन सा ऑयल यूज करें, तो ऑयल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग, हम लोग कहते हैं ऑलिव ऑयल बहुत कॉस्टली होता है, सब अफोर्ड नहीं कर सकते, बट एक चीज जिसका ध्यान रखना है कि एक ही तेल को बार बार ना तलें, क्योंकि उसमें ट्रांसफैट की मात्रा बढ़ जाती है और वो ट्रांसफैट हार्ट के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो ऑयल कोई कम मात्रा में लें ताकि वो ज्यादा ना बचे और उसको बार बार तलने में प्रयोग ना करें। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपने खान पान में, लाइफ स्टाइल में लेकर के आएंगे तो किडनी के आपके सारे अंगों का असर अच्छा रहेगा।
0: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने खान पान से जुड़ा, और आपने अभी एक टर्म यूज किया ये सुझाव देते हुए कि अच्छी बायोलॉजिकल वैल्यू वाले प्रोटीन्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, तो इससे आपका क्या तात्पर्य है?
1: देखिए, इससे तात्पर्य मेरा ये है कि प्रोटीन का इंटेक नॉर्मली ऐसा होता है कि जो किडनीज के लिए टॉक्सिक हो सकता है। नॉर्मल प्रोटीन इंटेक, मैंने पहले भी कहा था कि नॉर्मल इंसान के लिए 1 ग्राम पर केजी पर डे होना चाहिए। अगर आपको किडनी की दिक्कत है तो आपका प्रोटीन इंटेक 0.8 ग्राम पर केजी पर डे लेकर के आना चाहिए, और अगर आपकी डायलिसिस चल रही है तो हम लोग 1.2 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन इंटेक, थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन आपको एडवाइस करते हैं। नॉनवेज प्रोटीन, जो एनिमल प्रोटीन होता है, वो जनरली किडनी के लिए टॉक्सिन्स होते हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाए तो चीजें बेहतर रहेंगी। बेसिकली प्लांट प्रोटीन अपने डाइट में इंक्लूड करें, दालों को इंक्लूड करें, पनीर इंक्लूड कर सकते हैं, एग तक इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन एनिमल प्रोटीन किडनी के लिए थोड़ा सा टॉक्सिक होता है। मैं बिल्कुल उसके लिए अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन किडनी के लिए, सफाई के लिए वो यूरिया का प्रोडक्शन ज्यादा करता है, तो जितना हो सके एनिमल प्रोटीन की मात्रा को कम रखें तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा बेहतर रहेंगी।
0: डॉक्टर साहब, आजकल सोशल मीडिया पे तरह तरह की रील्स देखने को मिलती है जिसमें लोग क्लेम करते हैं कि गेहूं का आप कंजम्पशन ना करें या सफेद चावल का कंजम्पशन ना करें, या ऐसे कुछ डाइट्स बताई जाती हैं जिनमें केवल प्रोटीन का ही समावेश होता है, तो इन सब के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, कितना हमें फॉलो करना चाहिए इन चीजों को और कितना नहीं करना चाहिए?
1: देखिए, गेहूं और चावल, वीट और राइस, इस पे आजकल बहुत बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल रिप्लेस करके हमें मिलेट्स की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन देखिए, ये एक स्टेपल फूड है, ये आज से नहीं रहा है, ये सालों से रहा है, तो हम किसी भी स्टेपल फूड को एकदम से नहीं हटा सकते। और जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स भी अकेले अगर आप लेते हैं तो वो भी आपके बॉडी के लिए पूर्णता आपको पौष्टिक आहार नहीं बनेंगे। तो जहां तक के लिए बेस्ट आइडिया है मल्टीग्रेन, जिसमें मिक्सचर हो, वीट्स का मिक्सचर हो, मिलेट्स का मिक्सचर हो, बाजरा, ज्वार, रागी, ये सारी चीजें अगर

0: मिक्सचर में आपके लिए आ रही हैं तो ये चीजें ज्यादा बेहतर रहती हैं। खाली मिलेट्स लेना भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है, और बिल्कुल दिन भर वीट और राइस लेते रहना भी अच्छा नहीं है। मोटा मोटा हमारे जो डाइटिशियंस हैं वो ये कहते हैं कि अगर रात के समय में आप चावल अवॉइड करें तो चीजें बेहतर रहेंगी। रोटी का इंटेक अगर रात में आप कम रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। शाम को 8 बजे के बाद आप कार्ब्स का प्रोडक्शन जो इंटेक है वो आप कम करें तो चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी। ये वीट और बात इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की हो रही है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक हमें कम करना है। अगर हम रात में 6-7 बजे के बाद कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो बॉडी में फैट के रूप में वो स्टोर ज्यादा होता है, और इसीलिए उसको अवॉइड इंटेक उसका रात के बाद कम करना चाहिए। मल्टीग्रेन वाली चीजें आप ज्यादा लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा।
1: मतलब किसी भी चीज को अपनी डाइट से हटाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप कुछ कुछ अमाउंट में यानी मॉडरेशन के साथ
0: ले सकते
1: हर चीज को ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने हमारे साथ साझा करी है इस एपिसोड में, और हम चाहेंगे कि आगे भी आप यूं ही आते रहें हमारे स्टूडियो में, हमसे यूं ही बात करते रहें। फिलहाल आज यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू सो मच।

ऑन ईयर ऑलवेज इन हार्ट, ये है 102.2 FM रेनबो कानपुर की आवाज। हेलो डियर रेनबो लिसनर्स, वेलकम, नमस्कार। मैं हूँ शिप्रा चंद्रा, आपके फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर में आपके साथ।

0: आज 15 जून की इस गर्मी में आपकी चटपटी गपशप के साथ इस टाइम पूरे एक घंटे के लिए चलेंगी शीतल ठंडी हवाएं, गरजेंगे बादल विद रिमझिम फुहार। तो क्या कहेंगे आप बताइए, इस गर्मी में कैसे रखते हैं आप खुद को कूल, कौन कौन से तरीके आजमाते हैं, इस मामले में आप क्या फरमाते हैं, जरा हमें भी तो बताइए। चलिए शुरू करते हैं बातचीत और सुनवाते हैं आपकी पसंद के गीत। हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी भैसौली फतेहपुर से, रजनीकांत।
0: और गर्मी कैसे कट रही है इन दिनों?
1: गर्मियाँ तो बहुत हैं, लेकिन इस समय मौसम अच्छा हो चुका है क्योंकि बारिश हो चुकी है।
0: जी, और ये बताइए, कभी बादल है, कभी बारिश है, तो कभी तेज धूप और लू के थपेड़े है, लेकिन गर्मी, उमस भरी गर्मी का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ ही आपके साथ बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। रजनीकांत, बताइए कि आपको किस दौर की फिल्मों के गीत पसंद हैं?
1: मुझे पुराने समय के जो गीत होते थे उनमें गीतों का मतलब होता था और उनका एक अर्थ होता था, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है।
0: तो आकाशवाणी कानपुर के आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं?
1: मैं आकाशवाणी कानपुर के लगभग सभी प्रोग्राम सुनता हूँ, जैसे सुबह का गुड मॉर्निंग कानपुर जो हमें न्यूज वगैरह सब प्रदान करते हैं, और उसके बाद हमनवा हो गया, ऐसे ही हेलो कानपुर हो गया। विविध भारती का तो सबसे अच्छा प्रोग्राम मुझे हेलो फरमाइश लगता है। आपकी फरमाइश पसंद है?
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रजनीकांत। बताइए गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: आप मैम बारिश के ऊपर कोई गाना सुनवा दीजिएगा।
0: किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं आप ये गीत?
1: जी मैं अपने गांव वालों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: पहुंच रहा है ये गीत आप तक।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हेलो कानपुर।
2: हेलो कानपुर जी बहन, प्रणाम नमस्कार।
1: प्रणाम नमस्कार
2: जी, मैं राजू यादव ग्राम उपरेखा श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज आपका राजू यादव जी।
2: जी बहना जी, हम रेडियो आकाशवाणी कानपुर के पुराने दीवाने आशिक हैं।
1: ये आशिकी कब से है आपकी?
2: ये आशिकी 1993 से है।
1: 1993 से?
2: जी बहन, 23 साल हो चुके हैं।
1: क्या बात है, तो बुंदेलखंड में क्या प्रसिद्ध है ये बताइए आप।
2: बुंदेलखंड में बहना जी, यहाँ चोपड़ा जी का मंदिर है और तीनों नदी

0: बेतवा नदी जमुना नदी जो हमीरपुर जिले में स्थित है।
1: ओके, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
0: ये खूब लड़ी मर्दानी, ये तो झांसी वाली रानी थी हमारी बहन रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, और आल्हा उदल की नगरी महोबा चंद्रका देवी जो आज भी स्थान में दूर दूर से पर्यटन आते हैं देखने के लिए।
1: अच्छा, आल्हा उदल जी के लिए एक मेला लगता है रक्षाबंधन पर।
0: कजली मेला में हम जाते हैं ना बहन, वहाँ
1: हाँ,
0: कजली मेला में
1: जी बिल्कुल। और साथ में महोबा के पान के बारे में क्या फरमाएंगे आप राजू जी?
0: उसकी बात तो निराली है, जो पान खाया जाता है महोबे का पान तो हम भी खाते हैं, मीठा पान पान खाते हैं, बस एक एक ही पान खाते हैं बहना जी।
1: बहुत ही अच्छी बात कही राजू जी, तो बताइए गाना कौन सा सुनेंगे आप?
0: गाना तो बहना जी एक मूवी का नाम रहेगा फूल। फूल फूल पर बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, वो तुझे सलाम।
1: अच्छा अच्छा राजू जी, नाम लेना चाहेंगे आप?
0: हाँ बहन, हमारी पूनम गौतम जी हैं कानपुर से, उन गंगाधर सोनकर जी हैं और राजेंद्र गंगवार जी हैं, राम शरण विश्वकर्मा जी हैं, बलवान सिंह यादव जी हैं, अनूप कुमार राजपूत जी हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो हम आपका कार्यक्रम बहन बगीचे में बैठकर कार्यक्रम सुनते हैं। समय जामुन है, जामुन के पेड़ के नीचे बैठते हैं और दो चार श्रोता आ जाते हैं तो रेडियो पर बैठे बैठे कार्यक्रम सुनते रहते हैं
1: और जामुन टप टप गिरते रहते हैं
0: उसका भी स्वाद लेते हैं और साथ में गीतों का आनंद लेते हैं। इजाजत हो तो दो लाइन कह दें बहन।
1: बिल्कुल इजाजत है आपको।
0: हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं,
1: वाह,
0: सपनों की दौलत हम आप पर लौटाते हैं, ना कोई फूल है आज हमारे दामन में, पर बहना जी आपके आने पर पलकें बिछाती हैं।
1: क्या बात है, बड़ा खूबसूरत राजू यादव जी, बुंदेलखंड से कनेक्ट हुए 102.2 एफएम रेनबो कानपुर के साथ, पहुंच रहा है उनकी पसंद का गीत आपके रेडियो और मोबाइल सेट्स पर। ये रहा

Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्टबीट. दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को.

0: हेलो कानपुर
1: जी। हेलो कानपुर,
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं सोनू बात कर रहा हूँ उन्नाव से।
0: सोनू, क्या करते हैं आप?
1: जी विकलांग आदमी है, छोटा मोटा ऐसे घूमता हूँ।
0: ऐसे ही घूमते हैं मस्त मौला अंदाज में? तो क्या पसंद है आपको ऐसे ही घूमने में?
1: संगीत सुनना ऐसे जी।
0: अच्छा, ऐसे ही घूमने के भी अपने बड़े मजे हैं, लेकिन गर्मी में आप किस तरह से ऐसे ही घूमते हैं?
1: जी गर्मी में शाम और सुबह टहलता हूँ, बाकी बाकी घर में।
0: अच्छा, घर में तो गर्मी में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं खाने की पीने की, तो इस मौसम में आपको कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, पसंद है आपको?
1: जी जूस और पानी पूरी।
0: आम खाते भी हैं?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, कौन सा आम खाते हैं इन दिनों? कौन सा आम आ रहा है आपको पता है? कौन सी वैरायटी चल रही है इस समय?
1: जी मैं खाने में यकीन रखता हूँ, वैरायटीज में नहीं।
0: अरे वाह, क्या बात कही, बिल्कुल दिल को छू गई आपकी बात। वैरायटी में नहीं, खाने में यकीन रखते हैं, यानी जो आम मीठा, वो चाहे लंगड़ा हो, चाहे दशहरी हो, चाहे बादाम हो, सब आप खा लेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है सोनू जी आपसे बात करके। तो यूं ही टहलते टहलते, यूं ही घूमते घूमते, कोई यादगार पल जो आपको याद आता है वो भी हमें बताइए।
1: जी अभी तो कोई भी यादगार पल नहीं।
0: क्या एज है आपकी?
1: 29 ईयर्स।
0: 29 ईयर्स में ऐसा कोई मोड़ नहीं आया कि आपकी यादों में एक अच्छी याद आपकी बसी हो?
1: जी।
0: अच्छा
1: जी,
0: अच्छा,
1: मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा।
0: बिल्कुल पूछिए
1: जी। पर्सनल, आप जब आकाशवाणी पे पहली बार आई, आपको क्या महसूस हुआ?
0: हमें ये महसूस हुआ कि हमारी आवाज यहाँ से जाएगी और कितने लोग उसे सुनेंगे, ये एक बड़ा ही खूबसूरत पल था हमारे लिए।
1: जी नहीं, पहली बार मतलब जब नहीं आई
0: जी, बिल्कुल पहली बार की बात हम कर रहे हैं आपसे, क्योंकि रेडियो का अपना शौक था, जुनून था रेडियो सुनने का, और रेडियो से जुड़कर आज उसी के कार्यक्रम प्रेजेंट करना, ये अपने आप में एक बड़ा ही खूबसूरत एहसास था, और उस दिन को आज तक हम भूले नहीं हैं। आपको बता दें सोनू जी, तो हमने तो अपने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया, आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।
1: जी, अभी तक कोई भी ऐसे ऐसा पल नहीं आया।
0: अच्छा, तो जिंदगी से क्या चाहते हैं आप?
1: जिंदगी से यही चाहता हूँ कि यही ऐसे मजे से कटती रहे।
0: मजे में, यानी कि हर दिन आपका खूबसूरत है मजे में कट रहा है। बहुत अच्छा लगा सोनू जी आपसे बात करके। बताइए गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: जी धुरंधर 2 का आरी आरी।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हेलो कानपुर।
2: हेलो कानपुर दीदी को राधे राधे।
1: राधे राधे, कौन बात कर रहे हैं?
2: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बेरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
1: तो केसरी सिंह जी बताइए, बेरसिया में इस समय गर्मी का क्या आलम है?
2: गर्मी का आलम बढ़िया है दीदी, बारिश भी हो गई है हल्की फुल्की, और फिर उमस की गर्मी भी है दीदी।
1: तो उमस की गर्मी है, तो गर्मी से बचाव के लिए कितने जागरूक हैं?
2: फुल जागरूक हैं, बस काम अपना अपना काम धंधा तो करना पड़ता है दीदी।
1: तो केसरी सिंह जी आप क्या करते हैं ये बताइए?
2: मैं दीदी आर्टिस्ट हूँ, पेंटर।
1: ओहो, क्या बात है, किस तरह की पेंटिंग करते हैं आप?
2: ये दीदी बाल पेंटिंग, दीवार लेखन हुआ, चित्रकारी हुई, राइटिंग वर्क हुआ, यही काम है।
1: राइटिंग वर्क भी करते हैं आप, मतलब लिखते हैं उसको पेंट से?
2: हाँ।
1: तो जब आप ये चित्रकारी करते हैं, वॉल पेंटिंग करते हैं, तो ये शहर की जो खूबसूरती बढ़ाने के लिए वॉल पेंटिंग करी जाती है, उसमें आपका योगदान रहता होगा?
2: जी जी।
1: अच्छा, तो किस तरह से चित्रों का चुनाव करते हैं आप कि ये चित्र हमें बनाना है?
2: चित्र तो दीदी वो सब बता देते हैं कि ऐसे बनेंगे, स्वच्छता से रिलेटेड हुए, या जैसे स्कूलों में हुए तो कार्टून वगैरह हुए, या फिर कहीं भी जैसे पार्क में हुए तो सीनरी वगैरह हुई, ऐसे देते हैं।
1: सुंदर चित्रों से सुंदर जगह और स्वच्छता साथ में जरूरी है, अगर ऐसा हो तो परिवेश बहुत ही सुखद महसूस होता है केसरी जी।
2: बिल्कुल बिल्कुल दीदी, ऐसा लगता है कि जैसे उसमें जान डाल दी हो चित्रों में, ऐसा लगता है देखते ही रहो, झील नदियाँ पेड़ पहाड़ पक्षियाँ।
1: तो ये शौक आपको कब से लगा कि चित्रकारी करनी चाहिए, पेंटिंग करनी चाहिए?
2: ये दीदी मुझे बचपन से ही मेरी हॉबी रही थी, स्कूल टाइम में भी पढ़ने में कम मन था, ये चित्रकारी और लिखा पढ़ी में ज्यादा था, लोग बात कहते थे कि तुम पढ़ो, फिर ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की, 12वीं तक पढ़ाई थी
1: जी।
2: वो फिर इसमें ही इसी लाइन से जुड़ गए, तो धीरे धीरे उसमें सफलता भी मिलती गई दीदी, एकदम तो नहीं मिलती सफलता, टाइम लगता है उसमें भी बहुत ज्यादा।
1: तो रंगों के संसार से केसरी सिंह राजपूत जी कनेक्ट हैं हमसे, एफएम रेनबो कानपुर से। किस तरह से हमारे कार्यक्रम आप सुन पाते हैं ये बताइए?
2: ये दीदी न्यूज ऑन AIRF की मदद से सुनते हैं मोबाइल ऐप पर।
1: जी बिल्कुल, तो बताइए केसरी जी कौन सा गीत सुनेंगे आज आप कार्यक्रम में?
2: आज आप सुनवा दीजिएगा दीदी, मूवी का नाम है बड़े घर की बेटी
1: जी,
2: और गाने के बोले तेरी पायल बजी जहां, मैं वहाँ या मैं घायल हुआ वहाँ या।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर, विजयनगर से बात कर रहा हूँ, अरुण कुमार पांडे।
0: अरुण जी, क्या
1: कुछ नहीं, हम रिटायर हैं।
0: किस तरह से समय आपका कटता है बताइए।
1: बस सुबह चले आते हैं मॉर्निंग में टहलने, रात में खोल लेते हैं अपना FM, सुनते रहते हैं और खाना वाना खा लेते हैं, फिर शाम को घूमने चले आते हैं, ऐसे ही टाइम पास हो जाता है।
0: तो आपके शौक क्या क्या है अरुण जी, बताइए अपने बारे में कुछ।
1: देखिए, अब आंखों में थोड़ी दिक्कत है हमको, तो एक हमारे पास कॉपी रहती है राम राम दिखने वाली,
0: ओके,
1: तो उसी को लिखते रहते हैं, फिर जब हमको थोड़ा बहुत कोई आ गया घर पे तो उससे बातचीत कर लेते हैं, यही बस शौक है हमारा, बस थोड़ा भजन कर लेते हैं भगवान का।
0: बिल्कुल, यानी कि शांति पूर्वक दिन कट रहे हैं आपके जिंदगी के।
1: अकेले ही है घर में।
0: हाँ अकेले हैं, लेकिन आपने तो बहुत सारे काम बता दिए कि आपको लगता है फुर्सत ही नहीं मिलती है अरुण जी।
1: नहीं मिलती है
0: हाँ नहीं
1: फुर्सत,
0: मिलती
1: इसी से नहीं मिलती है। हम ये सुना करते हैं ना,
0: हाँ,
1: तो आपके बहुत से कार्यक्रम आते हैं ना, इसमें यही सब सुनते रहते हैं
0: यानी
1: दोपहर में।
0: कि रेडियो आपका बिल्कुल संगी साथी है, आकाशवाणी कानपुर के साथ आप दिल से कनेक्ट
1: इसलिए
0: हैं।
1: आदत है ना, थोड़ा गाना सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, संगीत का इंटरेस्ट है, तो इसलिए उसको सुनते रहते हैं।
0: गाना सुनने में आपका इंटरेस्ट है, गाना गाने में भी आपका इंटरेस्ट है, कभी मन
1: हाँ हाँ
0: करता
1: गुनगुना लेते
0: होगा।
1: हैं थोड़ा बहुत।
0: अच्छा, तो जो गाना आज आप सुनना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं जिस गाने को सुनने की, वो आप हमें गुनगुना के बताइए।
1: ये समा तो जली रोशनी के लिए,

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर, मैं कल्याणपुर कानपुर से हरीश चंद्र गौतम बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं हरीश जी आप?
1: मैं रेडियो, टीवी, कूलर, पंखे की रिपेयरिंग का काम करता हूँ।
0: रेडियो सेट्स आप तक बनने आते हैं?
1: जी हाँ, देखिए आपके पसारों से मेरा नाम अनाउंसमेंट होता है, उन्नाव बिल्लौर तक का कस्टमर आता है, जो चीज कहीं नहीं बनती मेरे पास बनाता हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं और आपकी ये एक आय का माध्यम भी कहीं ना कहीं लोग जान जाते हैं कि भाई आप रेडियो बनाते हैं, तो कहाँ कहाँ से लोग आप तक पहुँचते हैं। हरिश्चंद्र जी
1: जी, एक वर्मा जी थे बेचारे, प्रोग्राम सुना था तो वो नौ से मियाँ बीवी दोनों आए थे ट्रांसफर लेके बनवाने।
0: क्या बात है, तो ऐसे ही जब श्रोतागण आप तक पहुंचते हैं, लिसनर्स पहुंचते हैं, तो आप उनकी एक यादगार तस्वीर भी रखा करिए अपने पास कि कहाँ कहाँ से हमारे पास आए थे।
1: उनकी यादगार तस्वीर भी रहती है और साथ में वो लोग हमारा नाम भी लेके प्रसारण करते हैं, डेडिकेट करते हैं, मैं भी डेडिकेट करता हूँ उन लोगों को गाने।
0: तो ये तो बहुत अच्छा कनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड है आप लोग आकाशवाणी कानपुर के साथ हैं। हरीश जी,
1: जी जी जी
0: तो हरीश जी अपने शौक के बारे में बताइए, कुछ खट्टी मीठी बातें भी हो जाए आपसे।
1: खट्टी मीठी बातें क्या करेंगे, उम्र के हिसाब से हम क्या खट्टी मीठी बातें।
0: अच्छा ये बताइए, आप उम्र हो जाती है, मान लिया उम्र हो गई, लेकिन क्या एहसास जो होते हैं या जीवन जीने का जो जज्बा होता है वो कहीं से कम हो जाता है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, मेरा तो कम नहीं हुआ, आज भी मैं 30-35-40 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। हर आदमी देखता कहता यार उम्र आपकी बहुत हो गई, लेकिन अभी भी आप पे तो
0: आप देखिए, आप अगर एक नजीर लेना चाहें तो आप अमिताभ बच्चन को देख सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है
0: ना।
1: हाँ
0: उम्र होने के साथ अगर आप अपडेट रहते हैं और

0: यंगस्टर्स के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, तो कहीं भी उम्र बढ़ने का, जो आप कहते हैं ना उम्र बढ़ गई हमारी, तो अरे अब क्या, ये वाली जो फीलिंग है ना वो हो जाती उड़न छू।
1: अब देखिए 74 एज मेरी है
0: जी,
1: ठीक है। अब मैं राजकुमार जी का, अमित जी का, जीतू जी का, इनका मैं पुराना फैन हूँ, इनकी पिक्चर ज्यादा देखता हूँ
0: जी।
1: महमूद साहब थे अपने, अब मुगले आजम जब लगी थी पहले दिन पहला शो देखा था, निशा ठाकुर जी, समझ लीजिए आप।
0: बड़े ही खूबसूरत पल हैं हमारी जिंदगी के, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं एकदम तरोताजा, जब बातों ही बातों में वो बातें बाहर आती है तो खुद को भी अच्छा लगता है। हरीश
1: जी जी जी जी,
0: तो ये गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: मैं तो देखिए जून का महीना चल रहा, गर्मी तो है ही भयंकर
0: जी,
1: तो महमूद अरोरा रानी जी के ऊपर कुएं में गाना फिल्माया गया था, फिल्म का नाम है जवाब
0: जवाब,
1: और हाँ किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में गाना है, गाने के बोल है आ जाए मेरी जान, ये है जून का महीना, गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। अच्छा मैं दो चार लोगों के नाम ले लूँ, प्लीज डेलीगेट कर दूँ
0: जी? बिल्कुल ले लीजिए।
1: हमारे सिंहपुर के टेलर मास्टर हैं बलवान सिंह जी, और हमारे ग्रीस भाई हैं सविता जी, और हमारे बच्चे हैं प्रमोद कुमार गौतम, अनिल कुमार गौतम, सुनीता गौतम बहू हमारी, और हमारा पूरा गौतम परिवार।

0: जी आप?
1: जी हम बहुत अच्छे हैं और आपकी दुआएं हैं, और आप और अच्छे कैसे नहीं होंगे, आप इतने अच्छे से प्रोग्राम लेकर आती हैं, टाइम टू टाइम हर एक चीज का तो ख्याल रखती हैं आप लोग।
0: क्या बात है,
1: हर एक चीज से फिट एंड फाइन रहते हैं, टाइम टू टाइम कहीं हेल्थ के लिए प्रोग्राम आ रहा है, कहीं इंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम आ रहा है, हर चीज तो हमको अवेलेबल मिलती है।
0: हाँ प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं मुजम्मिल जी, हैं?
1: हाँ बिल्कुल, आपके प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, आप लोग का अंदाज स्टाइल तो लाजवाब है, ये आवाज है पेश कर।
0: तारीफ पे तारीफ के सिलसिले तो चलते रहेंगे यूं ही इसी तरह। अब आपसे
1: बिल्कुल
0: एक सवाल, आप ये
1: हाँ,
0: बताइए कि गर्मी के इन दिनों में आप अपने आप को कूल रखने के लिए क्या करते हैं, बताइए?
1: ये करते हैं कि ज्यादा धूप में नहीं निकलते हैं, जब कोई जरूरी अर्जेंटली काम होता है तभी निकलते हैं बाहर, और कुछ ये पेय पदार्थ ज्यादा लेते हैं,
0: जी
1: आजकल तो बाजारों में वाटरमेलन चल रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, वो
0: जी
1: पानी की कमी पूरी करता है, और शिकंजी है और तमाम चीजें हैं, ये सब करना चाहिए। बाहर अगर निकलिए तो अम्ब्रेला वगैरह यूज कर लीजिए अगर आपके पास अवेलेबल हो, इस तरह से अपने आपको बचाना है।
0: हाँ, तो गर्मी को हराने के ये जो कूल आइडियाज हैं आप ये दे रहे
1: हाँ
0: हैं, इसमें आप ये भी पर्यावरण संरक्षण के बारे में कितने जागरूक हैं ये भी आप बता दीजिए।
1: पेड़ पौधे लगाना चाहिए, हमारे घर में एक गुलाब की टाइप पेड़ लगा है, पपीते का पेड़ लगा है, उसको कंटिन्यू पानी भी देते हैं, जिसको लगा के छोड़ देना तो ये तो एकदम बेवकूफी है, जो है सक्सेस हो रही ना
0: जी
1: तो वो देख के तो हमेशा अच्छा ही लगता है।
0: बहुत अच्छी बात बताई मुजम्मिल जी आपने, कुछ और कहना चाहेंगे आप?
1: आपके सारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं दीपशिखा मैम को, मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के लिए कि दोबारा तुमने प्रोग्राम शुरू किया, इस
0: अच्छा
1: प्रोग्राम का हमने बहुत इंतजार किया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: दीपशिखा मैम से हम मैसेज ये कहना चाहते हैं कि वो भी प्रोग्राम करने के लिए आए, वो सिर्फ वो जो हेल्थ का प्रोग्राम आता है उसी को करने आती हैं, हमको वो बहुत अच्छा लगता है, हम चाहते हैं वो हर प्रोग्राम में आए।
0: बहुत अच्छा मैसेज है आपका, वो भी आपका प्रोग्राम के साथ पहुंच रहा है उन तक, ये भी एक अच्छी बात है मुजम्मिल जी।
1: जी थैंक यू आपको।
0: आप गीत बताइए, आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: जी मेरा साथी चल मेरे हाथी, चल मेरे साथी ले चल खटारा खींच के
0: चलिया,
1: चलिया,
0: धक्का मार
1: मार बंद है मोटर
0: मोटर
1: कार
0: कार
1: चल ये गाना ही सुनाइए आप।

आज के हेलो कानपुर प्रोग्राम का सफर बस यहीं तक, टाइम टू से टाटा ओके बाय। पर उससे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप भी कनेक्ट होना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम से, तो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती है वेंसडे और थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे तक। हमारा फोन नंबर है 0512254 1818 और आप फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर से दीजिए अनुमति शिप्रा चंद्रा को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना और सबका ख्याल। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राहुल पाल, तकनीकी सहयोग प्रवीण शर्मा और अन्नपूर्णा जायसवाल का।

0: पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: टू की फ्रीक्वेंसी पर यह है रेनबो कानपुर। अब आपको ले चलते हैं अपने लखनऊ केंद्र की ओर।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक एकता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत को संबोधित याचिका अधिवक्ता अनूप प्रकाश अवस्थी ने दायर की है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय से अपील की गई है कि इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जैसी किसी प्रमुख एजेंसी द्वारा सीधे शीर्ष न्यायालय की निगरानी में कराई जाए। वहीं मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनाई गई विशेष जांच टीम आज अयोध्या पहुंची। टीम में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन शामिल हैं। टीम 15 दिन के अंदर अपनी जांच सौंपेगी। प्रदेश ने स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित विंड प्रोक्योरमेंट चैंपियन सम्मान प्राप्त किया है। यह सम्मान आज गोवा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के ग्लोबल विंड डे 2026 कार्यक्रम में पवन ऊर्जा की खरीद एवं उसके प्रोत्साहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया। इस उपलब्धि पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पर्यावरण अनुकूल तरीके से पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने आज सुल्तानपुर में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं के जिला सम्मेलन में पूरी तैयारी में जुटने को कहा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन ने 2017, 2019 और 2024 के चुनावों में लगातार जीत दर्ज कर अपनी लोकप्रियता सिद्ध की है। श्रीमती पटेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव लाया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

एंजॉय करने वाले हैं, 10 मोस्ट पॉपुलर, सबसे जाने वाले, सबसे सराहे जाने वाले सॉन्ग्स। किसके लिए, किसके बारे में? उस सिंगर के जिनकी आवाज तो जादू बिखरती है मगर उन्हें मोस्ट वर्सटाइल सिंगर के रूप में भी जाना जाता है। तो आज हम लोग एंजॉय करने वाले हैं टॉप 10 सॉन्ग्स हमारे प्यारे सोनू निगम जी के। तो जल्दी से शो की शुरुआत करते हैं सॉन्ग नंबर 10 से, जो कि है जाने मन फिल्म से और सोनू निगम जी को का गाया हुआ और सलमान खान जी पर फिल्माया हुआ है ये प्यारा सा गाना।

गुड इवनिंग, हेलो हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो और मैं यानी कि हर्षा अब आपके साथ हूँ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है FM टॉप 10 जहाँ

जिसने जिसमें वैसे तो बहुत सारे सिंगर हैं मगर हर एक सिंगर की आवाज़ हम डिस्टिंक्टली पहचान पाते हैं और सोनू निगम जी की आवाज़ भी हम सुनते ही, जी हाँ सुनते ही रिकग्नाइज कर लेते हैं। क्या आप भी रिकग्नाइज कर पाएंगे?

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
5: जी अभी अभी आप सुन रहे थे संदेश से आते हैं। इस प्यारे से गाने के बाद जल्दी से चलते हैं नंबर 8 पर। अब जिसे अपने टाइम के यूथ पॉपुलेशन को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया ना, ये वो वाला गाना है। हर किसी की ज़बान पर अपने टाइम पर ये गाना हुआ करता था, और इस गाने ने विवेक ओबराय जी को और सोनू निगम जी को यूथ आइकॉन के रूप में स्टैब्लिश किया था। आई एम श्योर जैसे ही मैं ये गाना प्ले करूँगी ना, वैसे ही आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा गाना है।

जी 5:20 हो रहे हैं और ये प्यारी सी मेलेडी, आई एम श्योर आप सभी लोग अपने अपने नॉस्टैल्जिया में चले गए होंगे। जब हम लोग बचपन में स्कूल जा रहे होते थे तब भी स्कूल जाने से पहले ये सॉन्ग जरूर सुन के जाते थे, क्योंकि टीवी पर ये सॉन्ग इतना फ्रीक्वेंटली प्रसारित किया जाता था। तो इस प्यारे से बहुत ही जाने माने सॉन्ग के बाद अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जब भी इंडस्ट्री में एक दर्द भरी आवाज को अप्रिशिएट करने की बारी आती है ना, तो भी सोनू निगम जी का नाम उनकी आवाज को बहुत ही गर्व से याद किया जाता है। एंड Why is that? I think number 7 पर जो मैं गाना प्ले करने वाली हूं ना, वो उनकी इस इमेज को स्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा मददगार है। देखिए, डू यू अग्री?

वो इमोशनैलिटी जो वो माइक पर लाते हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं। अब आमिर खान जी और काजोल जी पर फिल्माया गया ये गाना अब आ रहा है नंबर 6 पर, जिसे सुनिधि चौहान जी के साथ सोनू निगम जी ने गाया, और ये उनकी रोमांटिक वॉइस में एक्सपर्टीज का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। सो नंबर 6 पर लेट अस ऑल एंजॉय दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग।

जी 5:24 हो चुके हैं। अभी अभी नंबर 7 पर आपने सुना तुम ही देखो ना। जी ये बहुत ही प्यारा दर्द भरा गाना आपने सुना सोनू निगम जी की आवाज में। लेकिन दर्द ही नहीं, रोमांटिक वॉइसेस की जब हम बात करते हैं तो भी सोनू निगम सर हमारे एक्सपर्ट हैं। उनकी सादगी, वो

0: दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: अपनी बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
6: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
5: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
6: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
1: जी 5:30 बज रहे हैं, FM टॉप 10 चल रहा है 100.7 FM रेनबो पर। आप हैं मेरे यानी हर्षा के साथ और आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं।

टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ सोनू निगम। जब मदहोश करने वाले गानों की बात आती है तो सोनू निगम सर की हिप्नोटिक सिंगिंग टेक्निक, उसका लोहा तो हम सभी मानते हैं। नंबर 5 पर है कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ फिल्म बॉम्बे में गाया गया ये गाना, दिस हिप्नोटाइजिंग सॉन्ग, यस दिस वेरी वेरी मेस्मराइजिंग सॉन्ग, जिसका नाम है सतरंगी रे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ सोनू निगम और नंबर 5 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यस, अब बारी आ गई है नंबर 4 की। व्हाट इज नंबर 4? नंबर 4 मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ सोनू निगम, ये एक ऐसा मेलोडियस गाना है जिन्होंने डेब्यूटांट दीपिका पादुकोण जी के लिए बहुत ही मेमोरेबल डेब्यू

सॉन्ग प्रोड्यूस किया था। तो आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल जी और सोनू निगम जी की आवाज में ये बहुत ही ज्यादा प्यारा सा गाना।

0: ये गाना, ओहो, मतलब सभी को, आई एम श्योर सभी को ये गाना मुंह जबानी याद है, सभी को इसकी लिरिक्स याद हैं। तो देखिए ना, इतने सारे आइकॉनिक गाने सोनू निगम जी की आवाज में हम लोगों ने सुने हैं कि टॉप 10 क्या, टॉप 20 क्या, टॉप 100 क्या, इतने सारे गाने हमें सोनू निगम जी के याद हैं कि कभी कभी हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे नंबर 2 पे रखें, किसे नंबर 8 पे रखें, किसे नंबर 20 पर रखें। लेकिन देखिए ना, समय बीतता ही गया, 5:40 हो गए हैं और अब हम लोग आ गए हैं अपने टॉप 3 पर। यस, टॉप 3 मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स ऑफ सोनू निगम पर हम पहुंच गए हैं। और नंबर 3 पर मैंने डिसाइड किया है कि एक ऐसा गाना है जो सोनू निगम जी के लिए, मुझे लगता है, एक रिप्रेजेंटेटिव गाना अगर मैं कहूँ तो। यस, ये वाला गाना मेरे हिसाब से सोनू निगम जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे यादगार गानों की बात करें, मुझे लगता है कि जिस साल ये गाना रिलीज हुआ था उस साल और शायद उसके अगले 2-3 सालों तक लगातार लोग इस गाने को इतना ज़्यादा गाते थे, इतना ज़्यादा अंताक्षरी में हर जगह प्ले करते थे कि सभी को इसकी लिरिक्स एकदम अच्छे से फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश याद है। तो देखिए ना, अब जब मैं इस गाने को प्ले करने वाली हूँ तो आप भी इस गाने के साथ जरूर जरूर गाइएगा। चलिए देखते हैं।
1: घर तक आ गए और हाय रब्बा, वो भी हो गया। अरे, दोस्ती की भी कोई लिमिट शिमिट होती है ना?
2: चुप। दोस्ती के अलावा भी कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ रिश्ते जो हम समझते नहीं, कुछ रिश्ते जो हम समझना नहीं चाहते। चुप तो नहीं रहा। कुछ रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एहसास होता। चुप तो नहीं रहा। कुछ रिश्ते जिनकी कोई दीवार नहीं होती, जरूरत नहीं होती। चुप तो नहीं रहा। ऐसे रिश्ते जो दिल के रिश्ते होते, प्यार के।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
4: Yes, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, क्योंकि इस वक्त आप सुन रहे हैं FM टॉप 10। और हम लोग आज किन के गानों को याद कर रहे हैं? हम लोग याद कर रहे हैं सोनू निगम जी की आवाज को। और अगर अजय अतुल जी का साथ हो और सोनू निगम जी की आवाज हो तो फिर क्या बात हो, क्या बात हो जी। टॉप 10 सॉन्ग्स के नंबर 2 पर अगर हम लोग बात करें तो एक बार फिर से एक ऐसा गाना मैं प्ले करने वाली हूँ जिसे सुनते ही आप लोगों को लगेगा कि ओह, आपने इस गाने को इतनी बार सुना है, इतनी बार सुना है। लेकिन क्या किया जाए, इस गाने की मेलोडी ही इतनी प्यारी है। जब एक बार ये गाना प्ले हो जाता है तो बिल्कुल शुरुआत से लेके अंत तक सुनने का मन करता है, कहीं भी पॉज करने का मन नहीं करता। इसी गाने ने रीसेंट ईयर्स में एक बार फिर से सोनू निगम जी को नेक्स्ट जनरेशन में भी बहुत बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है। तो ये खूबसूरत सा दिल छू लेने वाला गाना इज़ कमिंग अप ऑन नंबर 2।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जी 5:53 हो चुके हैं दोस्तों, देखते ही देखते हम आ गए हैं अपने टॉप 10 FM सॉन्ग्स के एंड पर। इस शो को रैप अप करने का टाइम हो गया है और बस अब एक ही गाना प्ले करने को बचा है, दैट इज द नंबर वन सॉन्ग शीर्ष पर। कौन सा गाना है सोनू निगम जी का? यस, ये वही गाना है जिसने सोनू निगम जी को हाउस होल्ड नेम बनाया, आपको, हमें, हम सबको उनका फैन बनाया। तो शो को रैप अप करते हैं विद दिस मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ सोनू निगम सर, लेट्स एंजॉय ये बेहद खूबसूरत और यादगार गाना ऑन नंबर 1।

नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इसके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए काम करेंगे ताकि उनके उद्योगों, स्टार्टअप्स और व्यापारियों को लाभ मिल सके। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 4 दिनों में 1,84,00,000 सिलेंडर वितरित किए गए हैं। जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री किंजिरापू राम मोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। विमानन क्षेत्र के विकास का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 के 74 से बढ़कर अब 165 हो गई है। उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक हब बनने वाला है। उन्होंने कहा कि यहां अब उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी और एग्रीकल्चर बढ़ेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के तीसरे दिन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगभग 90% निर्माण कार्य पूरा कर ट्रस्ट को हैंडओवर किया जा चुका है। श्री मिश्र ने बताया कि बैठक में राम कथा संग्रहालय को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। कार्यदायी संस्था संग्रहालय में आधुनिक 3D आधारित मॉक डिस्प्ले तैयार करेगी। नृपेंद्र मिश्र ने विश्वास जताया कि यदि वर्तमान गति से कार्य चलता रहा तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं के लिए संग्रहालय भी खोल दिया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: जी शाम के 6:03 हो चुके हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम शाम अवध जो कि शुरू हो चुका है। आपके आप सुन रहे हैं मुझे यानी हर्षा को आज, तो लखनऊ की शाम को प्यारे प्यारे गानों और खूब सारी बातों के साथ, सिटी अपडेट्स के साथ और एंजॉय करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे इस घंटे और शुरुआत करते हैं इस सफर की इस खूबसूरत से गाने के साथ।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो मेरे यानी हर्षा के साथ, और शो चल रहा है शामे अवध। और अगर आप नोएडा से लखनऊ अप डाउन करते हैं तो आज आपके लिए एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी सी खबर है, बिकॉज आज से उद्घाटन हो चुका है 2 सीधी उड़ान सेवाओं का, जो कि जाएंगी फ्रॉम लखनऊ टू नोएडा एंड वाइस वर्सा। यानी कि ये विशेष उड़ान सेवा 6E2278 सुबह, फ्लाइट नंबर 6E2278 सुबह 7:05 पर उड़ान भरेगी और 8:05 नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी, और फिर फ्लाइट 6E2279 जेवर एयरपोर्ट से शाम 6:55 पर रवाना होगी और रात को 8 लखनऊ पहुंच जाएगी। और ये फ्लाइट 1 जुलाई से, यानी कि 1 जुलाई से एवरी सिंगल डे अवेलेबल होने वाली है। तो ऐसी ही खूब सारी सिटी अपडेट्स और नए डेवलपमेंट्स की जानकारी के लिए सुनते रहिए मेरे साथ शामे अवध, एंजॉय करते रहिए और खूब सारे प्यारे प्यारे गाने भी तो साथ साथ में हम लोग एंजॉय करते ही जा रहे हैं ना।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

अजय अतुल जी का बनाया हुआ, कंपोज किया हुआ ये बहुत ही प्यारा सा गाना अभी अभी आप सुन रहे थे अपने रेडियो सेट्स पर ऑन 100.7 एफएम रेनबो। आप में से ज्यादातर लोग इस वक्त आई थिंक शायद ट्रैवल कर रहे होंगे, अपने घर को जा रहे होंगे शहर के अंदर बाय कार, टू व्हीलर एक्सेट्रा, और या फिर कुछ लोग शहर के बाहर भी ट्रैवल कर रहे होंगे थ्रू ट्रेन्स। और अगर आप नकहा जंगल से डालीगंज के बीच पैसेंजर ट्रेन लेते हैं तो आपके लिए एक अपडेट है दोस्तों। आपको बता दूं कि अब ये पैसेंजर ट्रेन ऐशबाग तक जाएगी, साथ ही साथ ऐशबाग गोरखपुर पैसेंजर भी अब संशोधित समय के साथ बादशाह नगर से शाम 5:31 पर और गोमती नगर से शाम 5:48 तक होते हुए संचालित होगी। और ट्रेन्स की ही जब हम बात कर रहे हैं तो लास्टली मैं आपको अपडेट देना चाहूंगी कि डालीगंज मैनाली पैसेंजर आज से 21 जून तक 1.5 घंटा देरी से चलेगी। तो आप उसी तरीके से तैयारी रखिए, उसी तरीके से ट्रैवल कीजिए, और इसी तरह की खूब सारी सिटी अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे यानी हर्षा के साथ। आप सुन रहे हैं शामे अवध।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++

0: मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सुन रहे थे 100.7 FM रेनबो पर। और सिटी अपडेट्स के साथ इतने मेलोडियस और पेपी सॉन्ग्स को आप एंजॉय कर रहे हैं शामे अवध नाम के शो में। और अगर आप म्यूजिक के साथ साथ कॉमेडी, पोएट्री या स्टोरी टेलिंग एंजॉय करते हैं या उसका टैलेंट रखते हैं, तो जरा अपनी गाड़ी कारवां स्टूडियोज लखनऊ की तरफ घुमा लीजिए, जहां आज शाम 5 बजे से शुरू हो चुका है ओपन माइक एक्स्ट्रा वेग्यांजा। जी, तो वहां पर जाकर आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और ओपन माइक इवेंट को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो अगर आप म्यूजिक सुनना लेकिन अगर एंजॉय करते हैं, तो यू ऑलरेडी नो, आपको बस बने रहना है हमारे साथ, जहां पर हम और आप दोनों मिलकर एंजॉय कर रहे हैं इन बहुत ही मेलोडियस गानों को।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं।
2: स्टूडियो क्लॉक में बज चुके हैं 6:53, यानी कि शाम में अवध को रैप अप करने का समय आ चुका है, मगर आप कहीं मत जाइएगा। जी, आप कहीं मत जाइएगा, बिकॉज नेक्स्ट शो आई एम श्योर आप और भी ज्यादा एंजॉय करने वाले, क्योंकि नेक्स्ट शो में आप अपनी पसंद के गाने रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो भी कॉल पर। तो अपनी पसंद के गाने, अपनी फरमाइशों को तैयार रखिए और न्यूज ब्रेक के उस पार मैं मिलूंगी आपसे हेलो एफएम में, और आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0522-223-8852 पर, या फिर 0522-223-8845 पर, या इनकी एक बार फिर से मैं आपको बता दूं 0522, उसके बाद आपको डायल करना है 2238852, या फिर 2238845, और इन नंबर्स को डायल करने के बाद आप कॉल लगा सकते हैं मुझे और अपने पसंद की अपने पसंद के गाने की फरमाइश भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे न्यूज़ ब्रेक के उस पार ऑन हेलो एफएम।

नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। अब सुनिए यूपी की टॉप 10 खबरें। जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि समर्पित करने वाले किसानों का आज लखनऊ पहुंचने पर सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार किसानों का हक देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 trillion की इकोनॉमी बनाने का एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने सुल्तानपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए पूरी तैयारी से जुटने को कहा। इटावा पहुंची प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने केंद्र में एनडीए सरकार की 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर देवरियान में जन कल्याण मेला व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए विभाग द्वारा लगाया गया स्टॉलों पर अवलोकन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 15 से 21 जून तक चलने वाली योग सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के तीसरे दिन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लगभग 90% निर्माण कार्य पूरा कर ट्रस्ट को हैंडओवर किया जा चुका है। प्रदेश ने भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित विंड प्रोक्योरमेंट चैंपियन सम्मान प्राप्त किया है। यह सम्मान आज गोवा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के ग्लोबल विंड डे 2026 कार्यक्रम में पवन ऊर्जा की खरीद एवं उसके प्रोत्साहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया। ज्येष्ठ अधिक मास के सोमावती अमावस्या पर आज प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और घाटों पर दान पुण्य किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा।

दोस्तों, 7:03 हो चुके हैं। 05 22 22 3 8 8 5 2 या 2 2 3 8 8 4 5 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं हेलो एफएम नाम के इस शो में और अपनी पसंद के गाने रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके कॉल्स का इंतजार कर रही हूँ, तब तक सुनते हैं ये बढ़िया सा गाना।

0: लगता है जी दोस्तों, वक्त तो लगता है 6 बजे।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: हेलो हेलो हेलो
2: हेलो दीदी नमस्कार।
0: जी आपकी आवाज अब फाइनली आ चुकी है। कौन बोल रहे हैं?
2: राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: अच्छा जी सर, भगवान सिंह परमार जी बोल रहे हैं हमारे साथ, जुड़ चुके हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप
2: दीदी? फिल्म का नाम है मोहरा और गाने के बोले ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, और आपको डेलिकेट रहेगा दीदी। और आपके यहाँ से जो आरजे हैं, सालनी दीदी है, चंद्रकला दीदी है, मोना दीदी है, अलका दीदी है, प्रीति दीदी है, तरन्नुम दीदी है, शिल्पी दीदी है, और हमारे मित्र हैं राजन गंगवार जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, सारून अंसारी जी है, अविनाश तेली जी है, मिंटू तिवारी है, और विनीत कुमार, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी। मोनू राजवंशी है
0: जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे ये डेडिकेट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आपने बहुत हमारी इतनी सारी आरजे फैमिली को डेडिकेट किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप कि आप इस गाने को अपने सभी डेडिकेटेड जितने भी आपके दोस्त और फैमिली मेंबर्स हैं उन सबके साथ इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों मोहरा फिल्म से आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है ये बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना बहुत ही पॉपुलर गाना, तो चलिए सुनते हैं, चलिए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: जी दोस्तों, ये बड़ा ही प्यारा सा गाना अभी अभी हम लोग एंजॉय कर रहे थे। 7:13 हो रहे हैं और हमारे साथ फिर से लाइट पर कोई जुड़ चुका है, तो देखते हैं कौन है अब इस बार हमारे साथ। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, कौन बोल रहा है?
1: मैं रामू बोल रहा हूँ मैम।
0: रामू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो एफएम में। आज आप
1: और
0: कौन सा
1: रामू जी
0: गाना
1: को
0: सुनना
1: फोन किया
0: चाहेंगे?
1: आपने? अरे मैम, दिलवाले मूवी से सुना दीजिए मुझे गाना कोई।
0: अच्छा, दिलवाला, दिलवाले मूवी बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक, बहुत ही ज्यादा जानी मानी मूवी है शाहरुख खान जी की। उसमें तो मुझे भी बहुत सारे गाने पसंद है। आज आप इस प्यारे से गाने को किसको किसको डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: सबसे पहले आपको मैम,
0: थैंक यू सो मच रामू जी।
1: और रिंकी पिंकी है हमारी बहने दो,
0: अच्छा, रिंकी पिंकी जी को।
1: सुरभि सिंह है मैम।
0: जी धन्यवाद, आपका इतना प्यारा गाना आपने रिक्वेस्ट किया। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गाने को। ये है फ्रॉम द फिल्म दिलवाले, अरिजीत सिंह जी की आवाज में, जिसका नाम है गेरुआ।

से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज सुबह शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र, 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह, प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जन भागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे

0: बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक, अब समाचार विस्तार से। गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह में कहा कि इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देशभर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के विजन का नतीजा है। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट घरेलू संचालन का हब बनेगा,
1: ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए हब बनेगा और खास तौर पे यहाँ एरोट्रोपोलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाते हुए बहुत ही संभावना यहाँ पे है, नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
0: इस पहली उड़ान से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 170 किसानों को स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ लखनऊ भेजा गया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद करते हुए सरकार अन्नदाताओं को समुचित हक दिलाने के प्रतिबद्ध है और इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।
2: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद और अमृतसर के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। 1 जुलाई के बाद 16 शहरों के लिए नियमित उड़ानें संचालित होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। सोशल मीडिया क्रिएटर्स से संवाद करते हुए श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे समाज के सभी पक्षों को जोड़कर एक जन आंदोलन बनाकर ही सफल बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में रामभाव महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने आयोजन के उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी। इस सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स एक साथ एक मंच पर जुटे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। केंद्र सरकार की इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक

0: हो गया है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम आकार ले रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को हवा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। 12 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से शुरू हुआ। श्री मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली। भारत की इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन और स्वस्थ जीवन शैली के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी।
3: मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य जो अब ट्रस्ट को करना है, क्योंकि 90% निर्माण कार्य अब हस्तांतरित हो गया है, ट्रस्ट को दे दिया गया, अभिलेख दे दिए गए, रिकॉर्ड दे दिए गए, तो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस मैं जरूर कहूंगा कि एक चुनौती है। ट्रस्ट जो राम कथा संग्रहालय है, हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा।
1: सोमवती अमावस्या आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में आस्था के साथ मनाई गई। प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। पेश है एक रिपोर्ट।
4: श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान सूर्य और भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण के साथ घाट पर जल अर्पित कर पूजन किया और जरूरतमंदों को अनाज और वस्त्र दान किया। सोमवार और अमावस्या का यह मेल स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। सनातन धर्मावलंबी महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए आज के दिन व्रत कर पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करके कच्चे सूत का फेरी देती हैं। अधिक मास का भी समापन सोमवार को पड़ने से आज बड़ी संख्या में शिव मंदिरों में श्रद्धालु जलाभिषेक किया। प्रवीण, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
1: इस अवसर पर अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मिर्जापुर सहित अन्य जिलों में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान के साथ ही प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र, 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जनभागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। Sweden will be

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: बिल्कुल, तो आज आपके लिए बहुत ही लकी डे है। आज कौन सा गाना सुनने वाले हैं आप?
5: हम तुमसा नहीं देखा इस मूवी का गीत सुनेंगे, मैंने सोच लिया, एक कुछ इस तरीका का गीत है, वही गीत हम सुनेंगे।
4: जी, तुमसे तुमसा नहीं देखा, अ लव स्टोरी, जो कि 2004 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का गाना आपने रिक्वेस्ट किया है, बहुत ही प्यारा गाना है। थैंक यू सो मच रिक्वेस्ट करने के लिए। किसे डेडिकेट करेंगे आप?
5: जी, हमारे भाई है मोहम्मद आसिफ अंसारी तेलंगाना हैदराबाद से, और मोहम्मद साबिर भाई है कानपुर से। सर जी, बस और बस ठीक है।
4: वाह वाह वाह, स्पेशल कुछ लोगों को आप डेडिकेट करना चाहेंगे? और
5: सभी सुनने वालों को।
4: सभी सुनने वाले तो है नहीं, ऑफ कोर्स उनको अगर आप नहीं डेडिकेट करोगे तो मैं डेडिकेट कर दूंगी।
5: बहुत अच्छा है, सभी लोग एंजॉय करें।
4: हाँ बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सा गाना मोहम्मद तालिब अंसारी जी ने हमें रिक्वेस्ट किया है, तो चलिए साथ में एंजॉय करते हैं। तुमसा नहीं देखा फिल्म से मैंने सोच लिया।

0: जी 7:40 हो रहे हैं। अभी अभी हम लोग सुन रहे थे, इंजॉय कर रहे थे ये बड़ा प्यारा सा गाना, मैंने सोच लिया, लेकिन अब सिर्फ सोचा ही नहीं, डायल कर दिया है एक बड़े ही प्यारे से लिसनर ने हमारे कॉल को और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। तो देखते हैं कि अब हमारे साथ लाइन पर कौन जुड़ चुका है। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है?
1: राम प्रसाद बोल रहे हैं।
0: राम प्रसाद जी, कैसे हैं आप और आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हम अच्छे हैं और गाना सुनना चाहते हैं कर्मा फिल्म का।
0: जी, कर्मा फिल्म का। ओके,
1: गाने के बोल हैं, मैं तुझे रब से मांग लिया।
0: जी, ओके ओके ओके, कर्मा फिल्म से मैंने तुझे रब से मांग लिया, बड़ा ही प्यारा सा गाना आपने रिक्वेस्ट किया है। और मुझे ये तो बता दीजिए कि आप इस गाने को क्या किसी को डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
1: सुनने वालों के लिए, आपके लिए भी।
0: ओह, धन्यवाद राम प्रसाद जी, हम सभी गानों को बहुत लगता है, इतने मेलोडियस सॉन्ग को हम सभी एंजॉय करेंगे। तो है मैंने रब से तुझे मांग लिया, जो कि है कर्मा फिल्म से। और राम प्रसाद जी, धन्यवाद हमारे साथ लाइन पर जुड़ने के लिए। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गाने को।

7:52 हो चुके हैं और हमारे साथ फिर से शायद लाइन पर कोई जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद हमारे साथ जो लाइन पर जुड़े हुए थे उन तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है, शायद उनका फोन कट गया है, मगर कोई बात नहीं, उनकी पसंद का गाना हम लोग जरूर इंजॉय कर लेते हैं। उन्होंने एक बड़ा ही प्यारा सा गाना रिक्वेस्ट किया था, तो चलिए उनकी पसंद का गाना ही सुन लेते हैं।

सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। जी दोस्तों, तो 7:58 हो चुके हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और रोज। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। नेक्स्ट शो न्यूज ब्रेक के उस पार आप सुनेंगे आप शार, तो सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, फिर मिलेंगे चलते चलते।

नमस्कार, 8 बज चुके हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ऑटोमोबाइल

0: रेलवे उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत स्लोवाकिया संबंधों की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाया है। प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु ने आज राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय टूड़ियागंज लखनऊ के सभागार में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग दिवस हजारों वर्षों से प्रचलित है। भारत का योग पूरे विश्व में अपनी खास पहचान बना चुका है। आयुष मंत्री ने कहा कि आज की व्यस्ततम जीवन शैली में योग प्राणायाम के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को स्वस्थ रखा जा सकता है। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को गौशालाओं के अवस्थापना संबंधी कार्य अक्टूबर 2026 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्यों को पूर्ण किया जाए। बांदा जनपद के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आज मीडिया संवाद कर केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्षों के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से हर क्षेत्र में कार्य किया गया है, चाहे किसानों की सम्मान निधि की बात हो या फिर रोजगार। श्री सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ी है। आज किसान सम्मान निधि हो या और कोई योजना, पूरा पैसा सीधे खातों में पहुंचता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आज गोरखपुर हवाई अड्डे पर यात्री सुविधा दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान यात्रियों का पारंपरिक तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उन्हें पौधे भेंट किए गए। इस पहल का उद्देश्य पौधरोपण को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और हरित जीवन शैली अपनाने का संदेश देना है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

ये रोज रात को रेडियो कानों के बेहद करीब कर लेना। एतबार यही है ना, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला मिलना है, ढेर सारी उम्मीद जरा इंतजार यही है ना, इश्क की हर बात पर जो मुस्कुरा देते हैं उनसे मिलकर जाना। ये सब गमों की गर्मी खींच के सींच दे जो रूह तलक, वो आबशार यही है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के

0: सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: हम यहाँ जिंदगी से सारे खार हटाने आए हैं, हम यहाँ जिंदगी से सारे खार हटाने आए हैं, हम आपके सारे गम मेरे सरकार हटाने आए हैं। मिलो तो हंस के मिलो, खुशियों का ठिकाना न रहे। तपते सहरा में हम आबशार लुटाने आए हैं।

अच्छा, इतनी सी बात कही और कह के रह गए, वही दो लफ्जी हमला और हम सह के रह गए। मेरा गरूर, मेरा मैं, यही सरूर, यही वजह, बस इतनी ही उड़ान थी हवा में और यही कह के ढह गए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: उलझने ऐसी न थी कि सबसे साझा कर लेते, कर्ज चुकाने थे सो क्यों ना खुद को बेचने का वादा कर लेते। हाँ ऐसा न था हमारा रिश्ता तकिए से कभी भी, कि सर टिकाने से पहले सब बताने का इरादा कर लेते।

किसी की राय पर हम ख्वाबों को रोजगार का मुलाजिम छोड़ आए हैं। हम भलमन साहस से जो कमाया सब मुनज्जिम छोड़ आए हैं। तुम ही कहो कि रास्तों से मोहब्बत मंजिल तलक चलाए रखेगी ना। यही जिद थी, हम इसी पर सब मरासिम तोड़ आए हैं।

हाँ हमसे सबको उम्मीदें थीं, तो भी इतना तो न सहना था, इतना ही तो कहना था और बात पे टिक के रहना था। सबको पता था रात का सौदा दिन चोरी हो जाएगा, उनको जुल्मत करनी थी हमको सब चुप सहना था, उनको जुल्मत करनी थी हमको सब चुप सहना था।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक

0: रक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, एआई चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत एआई पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका,
0: जी धन्यवाद।

0: धन्यवाद अंकित, ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
1: एलएनजी कैरियर दिशा
2: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
0: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and its Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H, clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
4: हमने अपने संबंधों को

तो लिख के भेजिए कौन सा गाना आपके दिल में उतरा और कौन से गाने के साथ में आपने किया है जबरदस्त डांस, क्योंकि एक धांसू ट्रैक खत्म होता नहीं कि दूसरा सीधे आपके दिल में उतरने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तैयारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? पॉप टाइम में हमारा उसूल एकदम क्लियर है, म्यूजिक ऐसा जो सीधे ब्लड की रफ्तार को बढ़ा दे। अगला गाना उसी फास्ट लेन में सीधे आपके लिए, और कुछ लोग, आप में से कुछ लोग हमारे बचपन में पहुंच जाएंगे। आपकी उम्र पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, आप हमारी उम्र का अंदाजा लगा भेजिए हमें लिख के कि कितना लग रहा, कितने बूढ़े हैं हम।

प्रवीण लिखें कि हमारी आवाज से इनको लग रहा है कि हम शायद 50 के आसपास होंगे। कितना पास प्रवीण, पूरा लिखो। नहीं, ट्रिपल काम करने लगते हैं, बस आंधी आ जाएगी। वैसे भी मौसम उसी तरह का बना हुआ है। मेरे दोनों भाई नाम ले लीजिएगा, आसिफ अंसारी हैदराबाद से, तालिब अंसारी राजा कटरा से, और ये मोहम्मद साबिर अंसारी ने हमें लिखा है चमनगंज कानपुर से। तो आंधी ना आए आप क्या, हम यही चाहेंगे। प्रोग्राम बहुत झकास लग रहा है, टॉप गर्दा उड़ा रहे हैं। काम के साथ साथ पॉप टाइम सुन रही हूँ। आपने उम्र पूछी है तो मैंने आपको देखा, तो देखा वाली उम्र थोड़ी ना बता सकते हैं, अंदाजा लगाना था आवाज से। रोशनी रावत नाम है इनका, बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हैं। बबीता राव, नीलू शर्मा दीदी, गुलाब शाह दीदी, शाजिया अंसारी जी, साहिबा जी को मेरा सलाम बोल दीजिए। तो आपका सलाम हमने पहुंचा दिया है। कमल लिखते हैं, कमल शंकर पांडे ग्राम मोहलिया कला चौराहा जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से मेल कर रहे हैं। मैं कार्यक्रम पॉप टाइम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। आप कार्यक्रम बहुत अच्छा प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए और कार्यक्रम में मेरा मेल शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा इन्होंने सुनील सर जी को लिखा है, तो सुनील सर जी तक आपकी बात पहुंच जाए हम यही चाहते हैं। श्री गणेशाय नमः। पॉप टाइम जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे। फरमाइश है कि ये वाला गाना बजा दीजिए। तो फरमाइश वाला गाना तो नहीं ना बजता है जी, यहाँ तो नहीं बज सकता है फरमाइश वाला गाना, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो फरमाइश वाला नहीं है। फिलवक्त आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना भेज रहे, जिसको जिसको पसंद आए लिख के भेजो।

भैया जी नमस्ते, कैसन है आप? हम तो बढ़िया बानी, आप बताई। उम्मीद है बहुत नेवक हुए हैं। नेवक? नेवक का मतलब प्रोग्राम अच्छा लगत बा और उम्दा लगत बा। मोनू सेठ, गुनगुन सेठ, परी सेठ, कालिसपुर उजगांव, BHEL अमेठी से बुजुर्गों को उपेक्षित न महसूस होने दें, बल्कि उन्हें ऐसा माहौल दें जिसमें वो खुशी और सुकून के साथ रह सकें। ये लिखकर भेजा है मोनू सेठ जी ने। आपकी बात हम तक पहुंच गई है। और जावेद अख्तर साहब, आप नई मेल लिख दीजिए, उसी मेल में सारा भेजते हैं। हम शुरू में पढ़ लेते किसी और का नाम। हाँ, गुड इवनिंग नितिन जी, आबशार प्रोग्राम में आपका शायराना अंदाज, सभी गजलें दिल को छू गई। पॉप टाइम में धमाकेदार शुरुआत, गीत जबरदस्त सुनने को मिल रहे हैं। हम तो आपकी आवाज के दीवाने और मतवाले हैं। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से लिख रहे हैं हमें शमसुल कमर राही और बेगम रुखसार के साथ में। तो ये जो मजेदार बात है, ये हमने आपको पढ़ के सुना दी है। भोजपुरिया तड़का जबरदस्त लगा साहिब जी। गीता सेठ जी ने हमें लिख के भेजा है। ब्रजेश सिंह जी हमको लिखते हैं, धमाकेदार प्रोग्राम का आगाज एकदम झक्कास लग रहा है। आपका प्यार सिर चढ़कर बोले बार बार, और आपका प्यार है बेशुमार। तो पोस्टर लगवा दीजिए हमारे नाम के, और क्या करेंगे। और

अभी सुनील भाई को नमस्ते जो आपने भेज दिया है लिख करके, हम कैसे पहुंचाए उनको, अब वो सुन रहे होंगे तो उन तक पहुंच गया है। पॉप टाइम में हम भी आ गए हैं झूमने, मिक्स तोड़का जबरदस्त जबरदस्त ये लिख के भेजा अभी सोनू परवाना जी ने। गुड इवनिंग प्रिय आरजे विनय यादव सर, कैसे हैं? तो विनय यादव सर तक अगर आपकी बात पहुंच रही होगी तो उन तक पहुंच जाएगी। प्रोग्राम बहुत सुपर हिट, बहुत अच्छे अच्छे गाने प्ले कर रहे हैं, कौन से प्रोग्राम का भेजे हो हैं? कोई बात नहीं अजय, मिस्टेक्स होती रहती हैं, दैट्स व्हाट लाइफ इज। कमल भांडे लिखते हैं आपकी उम्र 40 वर्ष है, कृपया कार्यक्रम के अंत में आप भी अपनी उम्र हम सभी को बता दीजिए जिससे हमको पता लगे कि हम लोगों ने जो उम्र बताई है वो सही है गलत। आप कार्यक्रम बहुत अच्छा प्रस्तुत कर रहे हैं जो बेहद पसंद आ रहा है, आपकी बात से मेरी हंसी जो है वो छूटने वाली थी पर हमने रोक ली है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बहुत नीक हुई है लिखे थे मोनू भैया। अच्छा जी, तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप नीक नेक लिखे हैं जी? हाँ जी, मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं, लखनऊ का दिल आरजे निखिल नहीं है इस समय यहाँ पे, लेकिन उन तक आपकी बात पहुंच जाएगी। और भी जो आरजेज आपको पसंद है, जिनके प्रोग्राम आपके दिल को छू जाते हैं, उन सबका नाम लिख के भेजिए। गुड इवनिंग सर जी, उम्मीद बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आपकी हंसी बहुत अच्छी है, ईमेल बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आपकी उम्र 36 होगी पक्का। राही फ्रॉम लखनऊ, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत जोर जोर से झूम रहे हैं। ये वाला तो आप पहले लिख के भेज चुकी हैं तो ये वाला पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, अब कुछ नया सोचिए, वही वाला कितने बार लिख के भेजेंगी हैं। तो अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उम्र बताने का ये सिलसिला जारी रहेगा। वैसे इन्होंने 36 लिखी थी हमारी उम्र, और इस वक्त 9:36 और 36 सेकेंड्स हो रहे, कोई आगे फोटो खींच लो।

नमस्ते सर, रेनबो लखनऊ पर पॉप टाइम कार्यक्रम जबरदस्त चल रहा है। हम सभी लोग एफएम रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम पसंद करते हैं। प्रोग्राम के कलेवर में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है जो काबिले तारीफ है। अरविंद, दीपा, तन्वी तिवारी, प्रतिमा प्रतिष्ठा, श्याम कुमारी, गोविंद दुबे, राम धर्मदेवा, जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से लिख रहे अरविंद दुबे जी के साथ में सब लोग एक साथ। मेरे मेल कहाँ गए नितिन भैया जी? मेल एड्रेस तो सही है, कई बार चेक किया पर आपने मेरा मेल पढ़ा ही नहीं। तालीम अंसारी, राजा, कटरा, बाराबंकी। अब आपका मेल पढ़े, आपके सब दोस्तों के नाम पढ़े, आप कहाँ थे उस वक्त हैं? मोहम्मद आसिफ अंसारी जी, तेलंगाना से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। उम्र 26 लग रही, कैसी बातें आप कर रहे हैं? कौन बोला है आपको ये सब बोलने को? आप सर अपना नाम बता दो, मैंने अभी ओपन किया। अच्छा जी, तो हमारा नाम नितिन है, आपने नाम पूछा इतनी मोहब्बत से, हमने आपको अपना नाम बता दिया है। प्रोग्राम एकदम झलझलुआ, ये नया शब्द हमारी, बल्कि शब्द युग्म है, फ्रेज हमारे डिक्शनरी में ऐड करने के लिए आंचल सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विकास, विकास लिखते हैं, जब तक भोजपुरी सॉन्ग नहीं मिलता है तब तक मजा नहीं आता है। तो हम तो भोजपुरी सॉन्ग तो बजाए थे, आप सुने नहीं हमको लग रहा है।

0: मुनेश कुमार राज गांव भानपुर हरौआ जिला लखीमपुर खीरी से लिखते नितिन सर को मुनेश कुमार राज का प्यार भरा नमस्कार। आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। सर आज उम्र पर बात उठी है तो आज उस पर जो सही आपकी उम्र बता दे उसे आप कार्यक्रम में विनर बना देना। हमारे हिसाब से तो आपकी उम्र 30 साल है। हमें एफएम रेडियो के दीवाने, आपकी आवाज में हमें हर कोई जाने, कुछ भी हो लेकिन आज आप कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब कर रहे हैं। कुछ भी क्या हो, प्रोग्राम हो और क्या हो, है ना। और हमारी जो उम्र आप लोग बता रहे हैं ना, बहुत ही गलत बता रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। वही जो 55 साल हमारी उम्र बताए हैं आज के प्रोग्राम के विनर तो वही हैं। भोजपुरी तड़का जबरदस्त लगा, एक और कोनो गाँव नहीं बजाए दो साहिब जी। तो फिर गीता जी अभी फरमाइशी प्रोग्राम तो है नहीं, तो फिर रहीमा कैसे बजाती है। ये मुझे बहुत पसंद आता है जब अवधि लिख करके आप भोजपुरी गाने की फरमाइश करते हैं और हम आपके लिए एक पंजाबी गाना बजा देते हैं।
1: सारे सुनो सुनो, स्टार्ट होने लग गया

ताली मुंसारी राजा कटरा बाराबंकी से लिखते उम्र आपकी बचपन है और दिल बचपन का नितिन भैया जी सही ना पाजी तू अड्डे नाल असी कोई सौदा करें खोटा हो जाए हो सकता है बिल्कुल सही है जी सोलह आने सही। अरे भैया भोजपुरी वाला बजायदा मजा नहीं आवत बता मजा ले खातिर तो शुरू से सुना करे ना बाबू जब बीचे में आओ बात कैसे चले आपकी उज 32 साल है आपका प्रोग्राम बहुत ही झकास चल रहा है गाने हनहनुआ बज रहे हैं वेरी वेरी गुड नाइट अखिल जी। अजय निशा सिंह बंगला बाजार आशियाना इतना करीब से लिख रहे हो नाम गलत लिख रहे हो गलत कर रहे हो आप हैं। अहमद नवाब न्यू संडीला से लिख के भेजा हेलो गुड इवनिंग नितिन भाई कैसन है आप तो हम तो बढ़िया बानी आप बताएं पोस्टर तो आपका लगना चाहिए आप प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं जो लाइन साहब बोलते हैं उसमें आपकी मेहनत दिखती है पॉप टाइम और मुझे आपका आबशार बेहतरीन लगता है हमेशा ही और जो आप रजनीगंधा करते हैं और जब किसी पर स्पेशल होता है तो आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगती बाकी दिन नहीं अच्छी लगती। अब आते हैं आपकी उम्र पर अगर आपकी आवाज से गेस करें तो 24, 25, 26 और अगर चेहरे से देख कर खूब दाढ़ी से बताएं तो आप हमारी दाढ़ी की उम्र बता रही हैं बहुत ही गलत कर रही हैं आप। अब सही उम्र तो आपको ही पता होगी इन्होंने हमारी उम्र लिखी 35, 38, 40 तीनों उम्र लिख दी मतलब टोटल 6 उम्र लिख दी है। अहमद नवाब संडीला से बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी प्यारी सी मेल भेजने के लिए और आप सब लोग जो शिकायतें कर रहे हैं हमसे कि भोजपुरी गाना नहीं बजाए हम बजाए भोजपुरी गाना आप हमारा प्रोग्राम पूरा नहीं सुने हमको बहुत दुख हुआ इस बात का है जी। हाँ जी बाकी सारी मेड इन इंडिया लैंग्वेजेस में गाना बजाते ही हम

अर्चना बालजी कुमारगंज अयोध्या प्रेजेंट टाइम में लखनऊ से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। सर जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको फर्स्ट टाइम ईमेल कर रही हूँ। मेरी दोस्त भी आपको सुन रही है, बबीता राव, रोशनी रावत दी, सीमा पाल, रीना पाल, अर्चना पाल। थैंक यू सर जी। तो थैंक यू अर्चना जी आज के प्रोग्राम का अंतिम मेल करने के लिए और हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, और आप सब ने हमारे इस छोटे से गेम में इतनी मोहब्बत से हिस्सा लिया, इसलिए बहुत बहुत बहुत सारा थैंक यू। तालिब जी, आपकी मेल अभी हमें मिली है ना। ये प्रोग्राम सच में एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। जब भी सुनो ये प्रोग्राम तो एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं सब लोग, सारे गी मस्त, हम भी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। नितिन सर जी, वेल डन। तालिब अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया ये प्यारी सी मेल करने के लिए। और अगर आप में से किसी की मेल गलती से छूट गई है तो आपसे माजरत। बाकी आपने हमारे प्यारे से छोटे से नन्हे से गेम में हिस्सा लिया, हमारी उम्र बढ़ा चढ़ा के और काफी बार बहुत कम करके भी बताई, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारे हैं आप लोग, इसी तरह से मेल करते रहिए, और सिर्फ हमारी नहीं, सारे आरजीस की, जिनको जिनको आप पसंद करते हैं, प्रोग्राम की तारीफ करते रहिए। और थैंक यू सो मच। अभी पॉप टाइम से हम आपको कहते हैं थैंक यू। एक प्यारा सा गाना, समाचार उस पार कुछ खास है, तो ठहरिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि यह है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब सुनिए एफएम समाचार। हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रिजघाट पर सोमवती अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। लोगों ने बढ़ चढ़कर गंगा में स्नान कर पितरों को तर्पण किया। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रिजघाट में सुबह से ही गंगा के जल में स्नान करने का सिलसिला शुरू हुआ और लगातार स्नान जारी है। हापुड़ सहित दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए हापुड़ पहुंच रहे हैं, तो वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की हुई है। मैनपुरी में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज योग सप्ताह का शुभारंभ किया गया। लोहिया पार्क में आयोजित योग शिविर में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने योग संकल्प, योग प्रार्थना और सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है और नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। उन्होंने लोगों से अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करने का आह्वान करते हुए कहा कि कपाल भाती, अनुलोम विलोम, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार जैसी योग क्रियाएं अनेक बीमारियों से बचाव में सहायक हैं। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आज वाराणसी में नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने नगर निकायों एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को जन सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। नगर विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री श्री शर्मा ने आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए नालियों एवं जल निकासी तंत्र की व्यापक सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान जलभराव की समस्या किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सभी नगर निकाय पूर्व तैयारियां समय रहते पूरी कर लें। मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों को चित्रित करती हुई एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 19 जून 2026 को कार्यालय क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी 27 अशोक मार्ग लखनऊ में प्रातः 10:30 बजे से किया जा रहा है। प्रतियोगिता पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें किसी भी आयु वर्ग के छात्र छात्राओं, पुरुष महिलाओं के प्रतिभाग करने के लिए आजादी है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी अपना पंजीकरण दिनांक 18 जून 2026 को सायंकाल या फिर 19 जून को 9 बजे के पहले करा सकते हैं। प्रतियोगिता हेतु पोस्टर, चार्ट पेपर प्रतियोगिता स्थल पर निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे तथा पोस्टर बनाने संबंधी अन्य आवश्यक सामग्री प्रतिभागी स्वयं

वो रुपहले पर्दे पर अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ जब प्रकट होती तो श्रृंगार रस में पगे हुए दर्शक अपने मन के चांद को उनके रूप की चांदनी के साथ जोड़कर बेतहाशा गुनगुनाने लगते। वो कैमरे के लेंस की ओर देखकर मुस्कुराती और हिंदुस्तानी सिनेमा से जुड़ी लाखों जोड़ी आंखें उनकी शोखियों पर जानिसार हो जाती हैं। 1936 से 1963 तक का एक दौर था जब वो मलिकाए हुस्न मलिकाए अदाकारी के नाम से हिंदुस्तानी सिनेमा के मुखलिसों के दिलों पर तख्त नशी रही थी। वो गजाला आंखें जिनमें हर भाव अपने लिए एक कोना तलाश कर बस ठहर ही तो जाना चाहता था। वो खूबसूरत सरापा के इस्मत आपा उन्हें महबूबाए आलम यानी यूनिवर्स की प्रेमिका कहा करती थी। कौन थी वो और आज उनका तस्किरा क्यों? आपके सब सवालों के जवाब देंगे, मगर पहले उनकी आवाज में एक नगमा। बाकी उनसे आपकी जान पहचान का, आपके दिलों की आशनाई का जिम्मा आज हमारा। क्यों? क्योंकि ये है सुरों की महफिल का सबसे सुरीला हमसफर, रजनीगंधा। और कहां, बस यहां, यह 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

सुरैया जमाल शेख। एक ज़माना था जब हिंदुस्तानी फिल्मों में काम करने के लिए गाना गाने में महारत की भी बहुत ज़रूरत होती थी। उस ज़माने में हीरो हीरोइंस न केवल उम्दा अदाकारी करते थे बल्कि अपने गीत नगमे गज़लें खुद ही गाया करते थे। ऐसे ही दौर की एक बड़ी अजीम अदाकारा और गायिका थीं सुरैया जमाल शेख। आज से कोई 97 बरस पहले आज ही की तारीख थी जब लाहौर में अजीज जमाल शेख और मुमताज शेख साहिबा के घर में जन्मी सुरैया। तो जब एक बरस की हुई तभी परिवार बंबई आ गया तालीम के लिए। स्कूल जाने लगी तो जिस स्कूल में उनका दाखिला कराया गया वहीं आगे चलकर हिंदुस्तानी फिल्म उद्योग में बहुत नाम कमाने वाले दो लोगों से उनकी दोस्ती हुई

किसी एक जगह से दूसरी जगह उठकर चले जाना भर इंसान के दिल में कैसे किसी नश्तर की तरह पैवस्त हो सकता है और उसकी जिंदगी में कितना दर्द उतर सकता है, ये अक्सर हमें अंदाजा भी नहीं होता। सुरैया लाहौर से बंबई आ गई थी और इस वक्त उस स्कूल में पढ़ रही थी जहां राज कपूर पढ़ा करते थे और वहीं पढ़ा करते थे मदन मोहन भी। सुरैया की स्कूल के वक्त से ही इनसे गहरी दोस्ती हो गई। मदन मोहन जी के साथ तो सुरैया ने अपने बचपन में आकाशवाणी के बच्चों के प्रोग्राम में गीत भी गुनगुनाए थे। राज कपूर और मदन मोहन उन दिनों आकाशवाणी में बच्चों के प्रोग्राम में उद्घोषणा यानी अनाउंसमेंट किया करते थे और शायद इसी जुगलबंदी का नतीजा था कि अपने 27 बरस के फिल्मी करियर में सुरैया ने 67 फिल्मों में अभिनय किया और 338 गाने गाए।

सुरैया ने पहली बार कैमरे के सामने जब अभिनय किया तो वो साल था 1936 और उनकी उम्र थी महज 7 बरस और फिल्म थी मदाम फैशन। फिल्म की डायरेक्टर थी जद्दनबाई, जिनकी बिटिया नरगिस ने आगे चलकर हिंदुस्तानी सिनेमा पर राज किया था। पहली फिल्म के साथ ही सुरैया को कैमरे ने और कैमरे को सुरैया ने अपना दोस्त बना लिया था और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आने वाली जिंदगी में हिंदुस्तानी आवाम का दिल बगैर बताए चोरी करने वाले थे।

तुमको चोर तो बोलो क्या करोगी, तो बोलो क्या करोगी, और अभी मचा दूं शोर तो बोलो

0: 1942 में ही आई स्टेशन मास्टर में सुरैया ने चाइल्ड आर्टिस्ट का काम भी किया था और गीत भी खुद ही गुनगुनाए थे।
1: इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आता।

हिंदुस्तानी सिनेमा पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर के मोहब्बत की कहानियों को पर्दे पर उतारने में जुट पड़ा था। साल 1942 की बात है, सुरैया ने एक और फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम था ताजमहल और सुरैया इसमें मुमताज महल के मेन लीड रोल में थी। दरअसल हुआ यूं कि सुरैया के एक मामा हुआ करते थे एम जहूर, जो उस दौर की फिल्मों के मशहूर विलेन थे। एम जहूर ये नाम याद रखिएगा, आगे चलकर जब ये सुरैया की जिंदगी में बहुत बड़े विलेन बनेंगे तो आपको थोड़ी सी सहूलियत होगी। लेकिन उस रोज तो जहूर मामू के साथ सुरैया एक शूट देखने पहुंची और डायरेक्टर ने 12 बरस की सुरैया को देखा और उनकी जिंदगी का उस वक्त का सबसे बड़ा सरप्राइज ही उनके हाथों में सौंप दिया। और ऐसे में किसका मन का मोर मतवाला ना हो जाए भला।

उस रोज स्कूल की छुट्टियों का वक्फा था और सुरैया के मामू उन्हें लेकर शूट पर पहुंचे मोहन स्टूडियोज। डायरेक्टर नानू भाई वकील वहां पर अपनी फिल्म ताजमहल की शूटिंग कर रहे थे। नानू भाई ने सुरैया को देखा और उनके जहन में आया कि ये तो मुमताज महल है। बस फिर क्या था, बात हुई और सुरैया ताजमहल में काम कर रही थी। हालांकि इस फिल्म में सुरैया ने कोई नगमा अपनी आवाज में नहीं गाया था,

सुरैया का फिल्मी करियर ताजमहल फिल्म से शुरू हो गया। उसी दौर में एक और शख्स थे जो अपने करियर की शुरुआती सीढ़ियां चढ़ रहे थे। फिर 1942 का साल आया और शहर लखनऊ की शान नौशाद साहब ने सुरैया को गाना गाते हुए सुना। उस समय नौशाद साहब एक फिल्म में म्यूजिक दे रहे थे जिसका नाम था शारदा और उस फिल्म में हीरोइन थी मेहताब। इसी के साथ सुरैया के गायकी के करियर का भी एक बेहद खूबसूरत आगाज हो गया। हालांकि बाद के वक्त में जब सुरैया एस्टैब्लिश्ड स्टार हो गई तब उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही गाने गाए, बाकी हीरोइंस के लिए गाना गाने में एक तरह का उन्होंने परहेज ही रखा।

नौशाद साहब सुरैया के पहले और शायद इकलौते उस्ताद बन गए। दरअसल सुरैया ने कभी गाना शाना बसाना उस्ताद के साथ बैठकर नहीं सीखा था। उन्हें खुदादाद एक बेहतरीन आवाज मिली थी और वो गा लेती थी। सुरैया ने अपने फिल्मी करियर के सबसे बेहतरीन नगमे नौशाद साहब की मौसिकी पर सजाए। उन्होंने अनमोल घड़ी में 1946 में, दर्द में 1947 में, दिल्लगी में 1949 में और दास्तान में 1950 में सुपरहिट नगमे गाए। दूसरी ओर उनकी अदाकारी का करियर भी आगे बढ़ रहा था। उन्होंने शुरुआत एज अ चाइल्ड एक्टर की थी, फिर सेकेंड लीड के रोल्स किए और फिर वो लीड रोल्स करने लगी। उस जमाने में एक हीरो हुआ करते थे रहमान, जो बाद में कैरेक्टर रोल्स करने लगे। उनके साथ सुरैया की एक फिल्म आई, प्यार की जीत। साल था 1948। सुरैया को लोगों ने इतना पसंद किया कि उनके घर को ही उनके मुरीदों ने घेर लिया था। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो गई थी, पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा था। कैसे वक्त तुरंत बदल जाता है।

मानो सब दुआएं कबूल हो रही थीं। प्यार की जीत की अपार सफलता के बाद 1949 में सुरैया और रहमान की एक और फिल्म आई, बड़ी बहन। और इस फिल्म की सफलता का आलम कुछ ऐसा था कि इसके प्रीमियर में पहुंची सुरैया को लोगों ने इस कदर घेर लिया कि भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस पहुंची, लाठियां भांची। सुरैया ने इसके बाद प्रीमियर्स पर जाना ही बंद कर दिया। मगर सुरैया की फिल्मों ने लगातार बेहतरीन कारोबार किया। उनकी फिल्मों में उनकी अदाकारी और गायकी इस कदर जलवा अफरोज थी कि उन्हें मलिकाए हुस्न और मलिकाए अदाकारी के मोनिकर्स से, नामों से नवाजा गया था। एक बहुत ही अजीब सा किस्सा भी उनकी जिंदगी में घटा था, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको एक बहुत ही प्यारा सा नगमा सुनाएंगे, क्योंकि इस गाने को सुनने के बाद आप इस गाने के साथ जरूर गुनगुनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सुरैया के लिए बस उन दिनों यही गुनगुनाते रहते थे।

सुरैया बहुत बड़ी सुपरस्टार बन चुकी थी और एक रोज उन्हें कहीं से शादी की शहनाइयों की आवाज सुनाई दी। उनको लगा कि रेडियो पर किसी नाटक में

शहनाई बज रही होगी, लेकिन धीरे धीरे खरामा खरामा वो आवाज उनके बिल्कुल नजदीक आती चली गई। और फिर अचानक उनके घर के सामने एक बारात रुकी और उसमें लोग नाच रहे थे और शहनाइयां ढोल ताशे बज रहे थे। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला गया और पूछा गया कि आप कौन? उन्होंने कहा हम तो दूल्हे हैं। तो उन्होंने पूछा पलट करके कि यहां क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा हम दूल्हे हैं और दुल्हन हमारी सुरैया है, हम ब्याह करने आए हैं उनसे। अब सुरैया के घर वालों के काटो तो खून नहीं। सुरैया ने तो खुद को भाग करके जल्दी से कमरे में बंद कर लिया। बाहर पूरी बारात सजी हुई, ढोल ताशे बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं और दूल्हा दरवाजे पर दस्तक देकर के कह रहा है कि मैं दूल्हा हूं और ब्याह करने आया हूं। जरा तसव्वुर कीजिए कि 1950-52 की बात है, उस वक्त किस कदर हंगामा खेज हो गई होगी ये बात। किसी तरह से पुलिस को फोन किया गया, उन्हें बुलाया गया और पुलिस पूरी बारात को पकड़ करके ले गई। वैसे पुलिस वाले ने एक बड़ा मासूमाना सवाल सुरैया की मां से पूछा। उन्होंने कहा ये आपके ही घर पे सारा हंगामा क्यों होता रहता है अक्सर? वो गुस्सा करके उससे बोली तो क्या हम करवाते हैं ये हंगामा? लेकिन सुरैया की लियाकत थी कि किसी को उनसे पर्दे पर श्रृंगार रस को उनके थ्रू महसूस करते हुए इस कदर मोहब्बत हो गई थी कि उसने मन ही मन में उन्हें अपनी शरीके हयात कबूल कर लिया था और वो पहुंच गया था उनसे ये कहने कि हमसे विवाह कर लीजिए। तो कई बार उनके जीवन में इस तरह की भी हरकतें लोग करते थे जिन्हें वो प्यार से फैंस या मुरीद या प्रशंसक कहती थी। लेकिन हाल ये हो गया था कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, शॉपिंग करने से उन्हें गुरेज होने लगा था, प्रीमियर्स पर जाना बंद हो गया था और घर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई थी ताकि फिर से एक बार कोई दीवाना उनसे मोहब्बत का इजहार करने उनके घर न पहुंच जाए। सुरैया की जिंदगी का ये तस्किरा आज रजनीगंधा में यूं ही जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत। यह है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

सुरैया बहुत छोटी सी थी, सिर्फ 7 बरस की, जब उन्होंने सिनेमा में पहली बार एज चाइल्ड आर्टिस्ट जद्दन बाई के निर्देशन में काम किया। फिर मामू मोहम्मद जहूर के साथ वो फिल्म सेट पर घूमने गई थी और डायरेक्टर को लगा कि अरे ये तो मुमताज महल है, और ताजमहल फिल्म में वो हीरोइन बन के मुमताज महल यानी नायिका के रोल में आ गई। सुरैया ने एक बार एस्टेब्लिश होने के बाद सिर्फ अपने लिए ही गाने गाए, लेकिन उनके गायकी के करियर की शुरुआत अपने लिए गाकर नहीं हुई थी। उन्होंने मेहताब के लिए गाने गाए थे नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में, और उसके बाद एक बार वो एस्टेब्लिश हो गई तो लगातार अपने लिए गीत गाती रहीं, गुनगुनाती रहीं। मलिकाए हुस्न, मलिकाए अदाकारी के मोनिकर से नवाजी जाती रहीं। रहमान के साथ उनकी फिल्में कुछ इस कदर कामयाब हुई कि फिल्म के प्रीमियर पर लाठियां तक चली। उन्होंने प्रीमियर्स पर जाना छोड़ दिया तो लोग बारात लेकर के घर पहुंचने लगे, लेकिन सब कुछ हमेशा इतना स्मूथ नहीं चलता है। बहुत छुटपन में काम शुरू किया था, इसलिए अभी वो टीनेजर ही थी कि हिंदुस्तानी अवाम के दिलों पर राज करने लगी थी। वो तख्त नशी हुई थी तो किसी भी तख्त के साथ आने वाला ताज भी उनके सर पर चढ़ा, और ताज अक्सर कांटों का ताज बन जाता है। कुछ ऐसा ही उनके साथ भी होने वाला था। वो अपने घर की इकलौती कमाऊ फर्द थी, नानी अम्मी यानी उनकी नानी भी उनके साथ रहा करती थी, और उनके पूरे करियर पर उनकी नानी की बहुत गहरी छाप थी। माँ के साथ तो उनका रिश्ता बहुत प्यारा था, माँ उनकी हर बात से मुतासिर हो जाती और उन्हें बेहद शफकत के साथ पलकों के भीतर आंखों की पुतलियों की तरह छिपा कर रखती थी। लेकिन नानी मैट्रियार्क थी, वो सुरैया की हर हरकत पर नजर रखती, शूट पर उनके ढेर सारी पाबंदियों के बीच सुरैया एक्ट करती। किसी को स्टार से थोड़ी देर ज्यादा बात कर लेती तो बहुत डांट पड़ती थी, और ये सब अपने उरूज पर बहुत जल्दी पहुंचने वाला था, क्योंकि सुरैया की जिंदगी में गुरदासपुर का एक पंजाबी मुंडा आने वाला था। क्या होगा जब सुरैया की जिंदगी में वो लड़का आ जाएगा? क्या नानी इतनी आजादी से सुरैया को उस लड़के के साथ जाने देंगी, या बीच में कुछ और हो जाएगा? ये सारा तस्करा हम तब करेंगे जब वापस आपके साथ जुड़ेंगे एक नगमे और समाज सुरैया की जिंदगी से। आपको उस वक्त के हिंदुस्तान का एक अक्स भी मिलेगा, और हो सकता है अपनी जिंदगी के लिए कुछ मॉरल वैल्यूज भी आपके हाथ लगें। हम वादा नहीं करते, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं, मगर हम लौटेंगे और आपको ये किस्सा तब तक सुनाएंगे जब तक सैया के साथ आपकी आशनाई, आपकी जान पहचान ना हो जाए। रजनीगंधा यूं ही चलता रहेगा। यह है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, 11 बज चुके हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग एवं जिला प्रशासन भदोही के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन ज्ञानपुर में योग सप्ताह का भव्य शुभारंभ किया गया। 15 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित होने वाले 7 दिवसीय योग सप्ताह का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष चक तथा अन्य अधिकारियों द्वारा भगवान धन्वंतरि के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। संत कबीर अकादमी मगहर संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कबीर जयंती के पावन अवसर पर 27 से 29 जून 2026 तक निर्गुण त्रिधारा भक्ति उत्सव का आयोजन विभिन्न स्थलों पर किया जा रहा है। इस त्रिदिवसीय उत्सव का

नमस्कार, 11 बज चुके हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग एवं जिला प्रशासन भदोही के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन ज्ञानपुर में योग सप्ताह का भव्य शुभारंभ किया गया। 15 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित होने वाले 7 दिवसीय योग सप्ताह का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष चक तथा अन्य अधिकारियों द्वारा भगवान धन्वंतरि के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। संत कबीर अकादमी मगहर संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कबीर जयंती के पावन अवसर पर 27 से 29 जून 2026 तक निर्गुण त्रिधारा भक्ति उत्सव का आयोजन विभिन्न स्थलों पर किया जा रहा है। इस त्रिदिवसीय उत्सव का